सुप्रभातम। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून 2026। सुबह के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रसारण सभा।

0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है डॉक्टर विनोद कुमार की वार्ता। विषय है लत्तीदार सब्जियों की प्रजातियां।
1: जनता शाकाहारी है, शाकाहारी बनाने में सब्जियों का विशेष महत्व है। साग सब्जियां हमें उत्तम स्वास्थ्य, दीप्तमान शरीर, चमकीली आंखें तथा दीर्घायु जीवन प्रदान करती हैं, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में भोजन के पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, लवण तथा रेशे पाए जाते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की अनुशंसा के हिसाब से प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। बिहार में सब्जी की खेती लगभग 5.11 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है, जिससे लगभग 53.20 लाख टन सब्जी उपजती है। वैसे बिहार के जनसंख्या के लिए लगभग 73 लाख टन सब्जी की आवश्यकता है, इसलिए सब्जियों की उन्नत किस्में लगाकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। खरीफ यानी बरसाती मौसम में कद्दू, जिसे लौकी कहते हैं, करेला, नेनुआ, झींगनी, खीरा, ग्वारफली, बोड़ा, बैंगन, मिर्च, भिंडी, सेम, साग इत्यादि इनकी उन्नत प्रजातियां, जैसे कद्दू की पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, ढोली सफ़ेद, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत। करेला की हैं पूसा दो मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग, अर्का हरित, मिथिला पसंद एक। नेनुआ की पूसा चिकनी, डीएल एक, राजेंद्र नेनुआ एक। झिंगनी की है पूसा नसदार, सतपुतिया एवं स्थानीय। खीरा की बालम खीरा, स्टेट 8, जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूना खीरा, पूसा संयोग। बोरा, जिसे लोबिया कहते हैं, कि पूसा बरसाती, पूसा कोमल, पूसा दो फसली। देसी सेम में पूसा अली प्रोलिफिक, सफ़ेद चपटा, JDL 77, रजनी, ग्वारफली में है पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, पूसा मौसमी। तो आपने खरीफ में उगने वाली सब्जियों तथा उन्नत प्रभेदों के बारे में जान गए होंगे। इसके बाद कुछ मुख्य सब्जियों के उन्नत प्रभेदों के विशेष गुणों तथा उपज के बारे में जान लें। कद्दू की समर प्रोलिफिक लॉन्ग इस किस्म के लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 20 से 25 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। फलों का रंग हल्का पीला होता है। यह किस्म गर्मी तथा बरसात दोनों ही मौसम के लिए उपलब्ध रहती है। इसकी औसत उपज लगभग 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। ढोली सफ़ेद, ढोली परिषद से इसे किस्म को सन 1970 ईस्वी में स्थानीय किस्म के चयन विधि द्वारा विकसित किया गया था। इस प्रजाति के फल काफ़ी लंबे सफ़ेद रंग के होते हैं। यह प्रजाति खरीफ के लिए सर्वोत्तम है। करेला पूसा दो मौसमी, यह प्रजाति भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित की गई। इसका फल मध्यम आकार के तथा हरे रंग के होती है। यह किस्म गर्मी तथा बरसात दोनों ही मौसम में उगाई जा सकती है। इसकी औसत उपज लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कोयम्बटूर लॉन्ग, इस प्रजाति के पौधे अधिक फैलते हैं तथा फलत भी अधिक होती है। खरीफ के मौसम में इससे यह एक अच्छी प्रजाति है। इसकी उपज लगभग 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मिथिला पसंद, इस किस्म का विकास ढोली परिषद से सन 1970 में सिवान जिले के स्थानीय किस्म से किया गया था। इस प्रजाति के फल हरे रंग के लंबे तथा मोटे होते हैं। फलों की औसत लंबाई 20 से 22 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। यह गर्मी तथा बरसात दोनों मौसम के लिए उपयोगी है। सेम पूसा अली प्रोलिफिक, यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली गई अगेती प्रजाति है। यह प्रजाति काफी लोकप्रिय है। इसकी फलियां पतली, लंबी और मुलायम होती हैं। फलियां अधिक और गुच्छों में लगती हैं। यह प्रजाति ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु दोनों ही मौसम में उगाई जा सकती है। रजनी, यह प्रजाति सब्जी अनुसंधान केंद्र कल्याणपुर द्वारा निकाली गई मध्यम पछेती प्रजाति है। इसकी फलियां गहरे हरे रंग की होती हैं और गुच्छों में फल लगते हैं।
0: लत्तीदार सब्जियों की प्रजातियां खेत खलिहान में अभी किसान भाई डॉक्टर विनोद कुमार की ये वार्ता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जिगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन मनन।
3: स्वामी विवेकानंद बनारस की एक गली से गुजर रहे थे। बनारस की अधिकांश गलियां संकरी होती हैं। जिस गली से स्वामी जी गुजर रहे थे वह भी एक संकरी गली थी। स्वामी जी के पीछे बंदरों का एक दल लग गया। बनारस के लाल मुंह के बंदर बहुत उत्पाती और निर्भीक होते हैं। जब स्वामी जी ने बंदरों के दल को उनका पीछा करते देखा तो उन्होंने अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए अपनी चाल तेज कर दी। बंदरों का समूह भी उसी तेज चाल से उनका पीछा करने लगा। ऐसा करते देख स्वामी जी उन बंदरों से छुटकारा पाने के लिए तेजी से दौड़ने लगे। वे बड़े परेशान थे कि इन शैतान बंदरों से किस तरह उन्हें छुटकारा मिले। इतने में उन्हें लगा कि कोई उन्हें पुकार कर कह रहा है, स्वामी जी भागिए नहीं, मुकाबला कीजिए। स्वामी जी रुक गए और पीछे की ओर मुड़े। स्वामी जी को मुड़ते देख पीछा कर रहा बंदर का समूह ठिठक कर रुक गया। स्वामी जी ने हिम्मत कर उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। ज्यों ज्यों स्वामी जी उन बंदरों की ओर बढ़ते बंदरों का समूह उसी रफ्तार से पीछे होता गया और धीरे धीरे वे सभी गायब हो गए। स्वामी जी को ये बात समझ में आ गई कि जीवन में समस्याओं से भागने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुकाबला करने से ही सफलता मिलती है, समस्याओं का समाधान होता है। हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई समस्या पैदा होती रहती है और उन समस्याओं का निदान समस्याओं से भागने से नहीं बल्कि हिम्मत कर उनका मुकाबला करने से ही हो सकता है। समस्याओं से भागने का अर्थ कायरपन है, उसे पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता है। एक कहावत भी है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जिसमें हिम्मत है। डर तो कायरता की निशानी है। जो कायर होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब मिसाइल विकसित कर रहे थे तब उसके परीक्षण के दौरान उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन उस असफलता ने उनका उत्साह कम नहीं किया। उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि हार के पीछे ही हमारी जीत छिपी हुई है। उनकी कोशिशें जारी रहीं और एक दिन ऐसा आया कि वे अपने तीसरे प्रयास में अग्नि मिसाइल के परीक्षण में सफल हो गए। इसलिए कहा गया है कि अगर पहले प्रयास में सफलता नहीं मिले तब लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी जरूर। एक बात और, सफलता का रास्ता मुसीबतों और विपत्तियों के बीच होकर जाता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में वे क्षण अवश्य आए हैं जब उसे विपत्तियों, मुसीबतों और संकटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मनुष्य इन कठिनाइयों, विपत्तियों और समस्याओं की कसौटी पर खरा उतर जाता है तब उसे सफलता मिलनी निश्चित है। हमें सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि कभी कभी विपत्तियां हमें अधिक बल प्रदान करने, अधिक शक्ति देने, अधिक ऊर्जावान बनाने, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने और अधिक सफलता दिलाने का कारण बन जाती हैं। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि हम समस्याओं से, विपत्तियों से भागे नहीं, मुकाबला करें। मन में ये दृढ़ विचार रखें, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आत्मविश्वास से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये आत्मविश्वास हमें संदेश देता है कि हमें कठिनाइयों से विचलित नहीं होना है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रेरक कविता में लिखा है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम कर

साथियों, कहते हैं शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते तस्माद् राष्ट्रम सदा रक्षम सर्वैरपि प्रयत्नतः।

साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा बलम शक्तानाम, शक्तानाम भूषणम क्षमा, क्षमा वशीकृते लोके, क्षमायाः किं न सिध्यते। अर्थात क्षमा कमजोरों की शक्ति है, क्षमा बलवानों का आभूषण है। यदि क्षमा से संसार को जीता जा सकता है तो क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में क्षमा का स्थान अत्यंत पवित्र है। यह केवल हमें सामाजिक शिष्टाचार नहीं बल्कि हमारी आत्मा को सामाजिक शिष्टाचार ही नहीं सिखाता बल्कि हमारी आत्मा को परिष्कृत करने वाला एक साधन है। क्षमा से हमारी चेतना में प्रवेश करते ही हमारी

हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का राग द्वेष क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला शिथिल हो जाती है। हमारे भीतर से एक तृप्ति का आभास आता है। क्षमा का अर्थ है स्वयं को हल्का करना, आक्रोश से अपने आप को मुक्त करना, अपने भीतर की करुणा को जागृत करना। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा द्वार है जहाँ से हमारी आत्मा शांति और परम आनंद की ओर अग्रसर होती है। जब हम क्षमा करते हैं तो वस्तुतः हम दूसरों से अधिक स्वयं को मुक्त करते हैं। द्वेष और कटु स्मृतियाँ हमारे मन पर बोझ बनकर बैठती है और क्षमा उस बोझ को उतारने की एक कला है। संतों ने कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम्, अर्थात दुर्बल का यह सहारा नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का परिचायक है। क्षमा में साहस है क्योंकि इसमें अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सारे देवी देवता भी हमें अहंकार रहित होने की सीख देते हैं। जैसे हमारे भोले भंडारी विष भी अमृत के को मानकर, विष को भी अमृत मानकर पी जाते हैं और सब पर एक जैसी दया का भाव रखते हैं। हमारी सारी भूलों को वो माफ़ कर देते हैं। तभी तो शिव गुरु हैं, शिव देवों के देव हैं।

0: भिखारी सुन बम बम बम मेरे भोले भंडारी बम बम बम मेरे भोले भंडारी।
1: साथियों, हमारे धर्म में धर्म का अर्थ पूजा पाठ या कर्मकांड को नहीं बल्कि व्यक्तिगत आचरण और जीवन मूल्यों से है। जहाँ तक धर्म ग्रंथों की बात है, हमारे धर्म ग्रंथ में धर्म के मुख्यतः 10 लक्षण बताए गए हैं। उसमें पहला है धृति यानी धैर्य, दूसरा है क्षमा क्षमाशीलता, दम यानी आत्मसंयम, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर नियंत्रण, धी अर्थात बुद्धि व विवेक, आठवां विद्या है, नौवां सत्य है और दसवां है अक्रोध, क्रोध का अभाव। जी हाँ दोस्तों, ये 10 आचरण अगर हम जीवन में अपना लेते हैं तो हम अपने आप को खुद ही परिष्कृत और परिमार्जित कर लेते हैं। कहते हैं दोस्तों, क्षमा बड़न को शोभते छोटन को अपराध, अर्थात हमारा बड़प्पन तभी होता है जब हम लोगों की छोटी छोटी भूलों को नज़रअंदाज करके जीवन के पाथेय पर आगे बढ़ते चलें। प्रत्येक प्राणी अपने अज्ञान और मोहवश भूल करता है। जैसे अंधेरी में ठोकर लगना स्वाभाविक है, वैसे ही मोहांध व्यक्ति भी त्रुटि करता रहता है। जब समझ जागती है तब क्रोध की जड़ें सूखने लगती हैं। क्षमा साधना का मार्ग 4 सूत्रों पर आधारित है। पहला, यह मान लेना कि कोई भी पूर्ण नहीं है, सबसे भूल होती है। दूसरा, कि दूसरों का आचरण उसके संस्कार और उसकी परिस्थितियों से संचालित होता है और वह जो कोई भी भूल कर रहा है वह अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होकर करता है। कभी कभी तत्कालिक प्रभाव भी उस पर काम करता है। तीसरा भाव है कि जैसे हम अपने लिए सहानुभूति चाहते हैं औरों से, वैसे ही दूसरों को भी अपनी सहानुभूति दें। और सबसे अंतिम है दोस्तों, क्रोध और द्वेष को छोड़कर अपनी आत्मा को हल्का करना। और जब हम छोटी छोटी क्षुद्र बातों से अपने को ऊपर कर लेते हैं तो हमारा मन प्राण आत्मा सब परिष्कृत हो जाता है और फिर हम मगन होकर के प्रभु का नाम लेते हैं। हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु में हमें ईश्वर का निवास दिखाई देता है।

साथियों, क्षमा का भाव हमें ये सिखाता है कि हम राग द्वेष में जीना आत्मा पर बोझ के समान है और राग द्वेष से ऊपर उठकर क्षमा की भावना को अपने अंदर में अगर हम स्थान देते हैं तो वह हमारी आत्मा को निर्मलता, शांति और स्वाध्याय से जोड़ती है। यह हमारे अंतर में प्रकाश फैलाती है और हमें दिव्य ऊर्जा से भर देती है। क्षमा केवल एक व्यावहारिक गुण ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा का एक शुद्धतम आभूषण है, सबसे बड़ा श्रृंगार है और यही क्षमा का भाव हम अपने अंदर में अगर रखते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर का निवास होता है और हमसे भी अनेक भूलें होती हैं। अगर हम अपनी भूलों को लेकर प्रभु के दर पर जाते हैं और प्रभु से क्षमा याचना करते हैं तो ईश्वर भी हम पर कृपालु होते हैं और हमारे अहर्निश किए गए भूलों को क्षमा करते हैं और हमें अपने शरण में स्थान देते हैं।

0: जी हाँ साथियों, समय अभाव के कारण ये भक्ति गीत हम आपको पूरी तरह नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। वंदना में आज आपने जिन कलाकारों को सुना वे थे हरिओम शरण, विपिन सचदेवा और अनूप जलोटा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वैद्य श्री विनोद कुमार की वार्ता, विषय है पेट के रोगों का आयुर्वेदिक इलाज।
1: तो मन प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न हो तो तन स्वस्थ रहता है, तन और मन दोनों स्वस्थ हो तो शरीर निरोग रहता है। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर में कोई रोग हो, कोई कष्ट हो तो बाकी सब सुख बेकार लगते हैं, सारी सुविधाएं व्यर्थ लगती है। सुख सुविधाओं को भोगने के लिए शरीर का स्वस्थ और निरोग होना अति आवश्यक। आजकल भागम भाग की जिंदगी में लोगों ने प्राकृतिक सरल जीवन जीना छोड़ दिया है। शारीरिक श्रम को त्याग कर लोग आराम तलब अधिक होने लगे। व्यस्त, क्षुब्ध, अशांत और तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करने वालों को अक्सर पेट के रोग सताते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में रोगों की उत्पत्ति का कारण अनियमित और प्रकृति विरुद्ध आहार विहार बताया गया। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर वक्त बेवक्त बार बार भोजन करने, देर रात तक जागने, सुबह देर से जागने, भूख सहन करने, अनिद्रा, विषम आहार करने, मिलावटी भोजन पदार्थों का सेवन करने, बासी खट्टे विकृत भोज्य पदार्थों के सेवन से कब्ज, गैस, अपच, अम्लपित्त इत्यादि पेट के रोग उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम कब्ज के बारे में जानें। कब्ज कई रोग पैदा करने वाली जड़ है। आज अधिकांश स्त्री पुरुष कब्ज के रोगी पाए जा रहे हैं। पुरानी कब्ज के प्रभाव से मल सूख सूख कर मलाशय और आंतों में चिपक जाता है और गैस बनाना प्रारंभ कर देता है। कब्ज होने पर शरीर की चुस्ती फुर्ती गायब हो जाती है, मन खिन्न और उदास चिड़चिड़ा हो जाता है। कब्ज का इलाज करने के लिए प्राय रात में गर्म पानी का सेवन करना आवश्यक होता है। औषधियों में मृदु विरेचक का सेवन करने का परामर्श दिया जाता है। इसके लिए रात में सोते समय पंचसकार चूर्ण या त्रिफला चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ लेना हितकारी होता है। इसके अतिरिक्त पुरानी कब्ज में शुद्ध अरंड तेल गर्म दूध में मिलाकर पीने से बंधा मल टूट टूट कर सुबह दस्त साफ आता है। दूसरा है गैस। वास्तव में गैस उत्पन्न होने के 3 कारण हैं, हरी, करी और वरी। यानी जल्दी जल्दी भोजन करना, अधिक तेल मसाले युक्त चटपटे स्वादिष्ट पदार्थ सेवन करना और शोक, चिंता, क्रोध और तनाव आदि का बना रहना। गैस एक वायु प्रकोप, अपच और कब्ज की शिकायत होने पर गैस बनती है। हमेशा कुछ से कुछ खाते रहने से, गरिष्ठ और दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से अपच और कब्ज होती है, जिससे वायु प्रकुपित होकर गैस्ट्रिक को जन्म देता है। गैस्ट्रिक हो जाने पर छाती में जलन शुरू हो जाता है, भूख कम लगना, पेट फूलना, पेट में वायु का संचय, पतला दस्त होना इत्यादि प्रधान लक्षण देखे जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्रियों का मत है कि भोजन को पियो और पानी को चबाओ। यानी भोजन को खूब चबा चबा कर पीस डालना और भोजन के आधा या 1 घंटा बाद घूंट घूंट कर पानी पीना। आयुर्वेदिक इलाज के लिए हिंगवष्टक चूर्ण, हिंगवटी, हिंगोली, गैस हरवटी का सेवन करना लाभकारी होता है। तीसरा रोग है अम्लपित्त। अम्लपित्त दूषित अन्न, खट्टे रस, दूध, मछली आदि विषम आहार से दाहकार पदार्थ और पित्त को कुपित करने वाले भोजन पदार्थों से पेट में संचित हुआ पित्त विदग्ध होकर अम्लपित्त रोग की उत्पत्ति करता है। अम्लपित्त रोग होने पर खट्टी और कड़वी डकारें आती है, छाती और गले में जलन होती है, जी मिचलाना, घबराहट, शरीर में भारीपन, अरुचि और गलानी होती है। आयुर्वेदिक इलाज के लिए भोजन करने के बाद 1 लौंग और 1 इलायची चबा कर खाने से अम्लपित्त की शिकायत दूर हो जाती है, परंतु अविपत्तिकर चूर्ण के सेवन से अम्लपित्त जड़ मूल से ठीक हो जाता है। चूना जल भी फायदेमंद है। अंत में कहना है कि रात का भोजन हल्का और सुपाच्य हो, दही और छाछ का सेवन रात में न करें, प्रकृति के अनुसार आहार ग्रहण करें।
0: स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में आपने सुना वैद्य विनोद कुमार की वार्ता, पेट में होने वाले रोगों का आयुर्वेदिक इलाज। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी का प्रसारण। आज के कलाकार हैं वाणी जयराम और साथी

एक समय श्रीराम द्वारा रचित माया के वशीभूत होकर नारद मुनि ने विवाह करना चाहा था, किंतु प्रभु ने उन्हें विवाह करने से रोक दिया। तब से ही मुनि के मन में इसका कारण जानने की उत्कंठा बनी हुई थी। जब नारद जी ने प्रभु के समक्ष अपनी शंका प्रकट की, तो प्रभु ने युवती स्त्री के गुण अवगुणों की चर्चा करके उनकी शंका का समाधान किया। स्वामी के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इसी संदर्भ में प्रभु ने संतों के उन लक्षणों पर प्रकाश डाला जिनके कारण वह भक्तों के वश में रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। संत जन इन छह मानसिक तथा शारीरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे संसार के दुखों और संदेहों से सर्वथा मुक्त होते हैं। दूसरों को मान देना, अभिमान न करना, धैर्यवान होना, धर्म के ज्ञान और आचरण में निपुण होना उनके गुण हैं। वैराग्य, विवेक तथा परमात्मा के तत्व का ज्ञान संतों के लक्षण हैं।

वाणी जयराम और साथियों से अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। संगीत रचनाकार थे सतीश भाटिया। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज यानी 28 जून दिन रविवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा। दिन के 3:25 से शाम के 5 तक विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण किया जाएगा। रात 10 रविवासरीय संगीत सभा का अनुप्रसारण होगा। ये सभी कार्यक्रम हम आप तक दिल्ली केंद्र के सौजन्य से पहुंचाएंगे। प्रातः 7 पेश होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसी कार्यक्रम में हिंदी वार्ता के चंक में प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे अमित कुमार की वार्ता छायावादी कवि निराला की प्रगतिवादी चेतना। इसी कार्यक्रम में सुगम संगीत के चंकर रसरंग के आज के कलाकार होंगे राजीव कुमार झा। दिन के 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में आज आप सुनेंगे पंडित भजन सपोरी का सितार वादन। दिन के 3 सामुदायिक गान शिक्षा पाठ का प्रसारण किया जाएगा। देशभक्ति गीत का प्रसारण होता है प्रतिदिन हमारे केंद्र से दोपहर बाद 3:20 पर। संध्या 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी के आज के कलाकार होंगे श्यामानंद झा।

प्रातः 9:30 पर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पेश होगा। बाल मंजूषा प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री पार्वती के। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा बाल किलकारी। दिन के 12 बजे साप्ताहिक विज्ञानवाणी कार्यक्रम होगा, इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता। वर्तमान AI के दौर में ऊर्जा संकट, वार्ताकार होंगे नीलमणि सरोज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। दिन के 1:30 पर साप्ताहिक अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण का प्रसारण किया जाएगा, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। संध्या 5 बजे युवा साथी अपना प्रिय कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। लोकगीत कार्यक्रम में प्रातः 10:30 पर आज आप सुनेंगे गोपाल भगत के गाए कुछ लोकगीत। दिन के 1 बजे और 1:20 पर लोकरंग में आज आप सुनेंगे आशा देवी को। संध्या 7:10 पर लोकगीत कार्यक्रम में नूतन कुमारी के गाए कुछ लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। और साथियों, फिल्मी गाने लेकर हम हाजिर होंगे आज कुछ इस तरह। प्रातः 7:30 पर, संध्या 5:30 पर और रात्रि 9:30 पर आपके लिए पेश होंगे फिल्म संगीत। प्रातः 9:06 पर नगमे नए पुराने कार्यक्रम आपके लिए पेश खिदमत होंगे। दिन के 2:30 आपके मेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होगा। रात्रि 8 बजे अपनी खुशबू लेकर आएगी रजनीगंधा। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: आम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रीय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रीय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोष कैमन इत्यत्र राष्ट्रीय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतं उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह संपर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: साथियों, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भागलपुर के प्रसारण मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः के 7 बजे हैं और 45 सेकेंड हुए हैं। पेश है मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिजनों, अपने संगी साथियों, अपने समाज के लोगों के साथ अत्यंत ही सुकून भरा, आनंद भरा समय बिता रहे होंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपके लिए ढेर सारे नॉलेज हैं, ढेर सारे एंटरटेनमेंट हैं और बहुत सारी सूचनाएं हैं, और हम आपके लिए लेकर आएंगे मनोरंजन के साधन भी। सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे, साथ ही फिल्म संगीत का भी आनंद आप लेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आप तक आज पहुंचेगी एक बहुत ही जानकारियों से भरी हुई हिंदी वार्ता 7:20 पर। तो कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं दोस्तों एक अच्छी सी बात से। आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते, नियते सौ वृथा ये न प्रमादः सुमहान हो। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बला हमने पढ़ दी और इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, अर्थ ये सारे श्लोक हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं जो रत्न के समान है। इस श्लोक का अर्थ है कि जीवन का एक पल भी सारे रत्न यानी धन दौलत देकर भी हम वापस नहीं ला सकते। जो इंसान इस अमूल्य समय को व्यर्थ गंवाता है वह उसकी बहुत बड़ी लापरवाही और मूर्खता होती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, क्षणम त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। अर्थात एक एक पल का जीवन में बहुत अधिक महत्व है, और अगर हम व्यर्थ अपने समय को गुजारते हैं तो फिर हमें हमसे सफलता दूर हो जाती है, असफलता जैसे रूट सी जाती है। आज हम अपने जीवन में, अपने आसपास, अपने परिवार में, समाज में जिन लोगों को सफल देखते हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं तपे हुए होते हैं। उन्होंने अपने समय का सार्थक और सही सदुपयोग किया हुआ होता है, और तभी वो सफलता के मुकाम पर आढ़ूर होते हैं, सफलता के शिखर पर चढ़ते हैं। तो दोस्तों, जीवन में समय के महत्व को हमें समझना चाहिए। आज के दिन हम देखते हैं कि मोबाइल जो बहुत ही उपयोगी है, और मोबाइल के बिना अब जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारा समय बहुत बहुत बर्बाद करता है। इससे बचना चाहिए, मोबाइल की का सार्थक सदुपयोग हम करें। जितनी जानकारियां हमें चाहिए, फ़ोन कॉल्स चाहिए, लोगों से संपर्क करने का जो भी है वो सब तो अच्छा है, और सोशल मीडिया हमें बहुत तरह से हेल्प भी करता है, नई नई जानकारियां हम तक उपलब्ध करता है, हमें अपडेट रखता है हर एक तरह के नॉलेज से। दुनिया में हम संचार की इस क्रांति का स्वागत करते हैं तहे दिल से, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे समय को भी खाता है। तो इससे बचा जाए, अपने समय का सार्थक और सही ढंग से अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हम जीवन में हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं सुगम संगीत, आनंद लेते हैं सुगम संगीत का इस भक्ति संगीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए ना, तकनीक का ज़माना है, लेकिन तकनीक कभी कभी हमें धोखा दे जाते हैं, और यही हो रहा है। लगता है हम थोड़ी देर में आप तक सुगम संगीत पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों, हम और आप बने रहेंगे अभी 7:55 पर। नई नई जानकारियों के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियां, और आज का दिन क्या कहता है, यानी आज का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ द डे क्या है। तो दोस्तों देखिए, तकनीक ने अब साथ दे दिया है और हम आप तक पहुँचा रहे हैं ये खूबसूरत सा, ये बहुत ही आनंद देने वाला भजन। कलाकार हैं शैलेश कुमार,

जी हाँ साथियों, ये जीवन दो दिन का मेला ही है और हम सब एक रंग इस रंगमंच पर अपना अपना अभिनय प्रस्तुत करने आए हैं, तो ज़रूरी है कि हम सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करके यहाँ से जाएं, ताकि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखें। लीजिए सुनिए एक और भजन।

0: दोस्तों, इस समय हम सुगम संगीत का आनंद ले रहे हैं और सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा।
1: आने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: सुनो ना।
4: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।

0: चार दो
1: ओ 8700142 42 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142 42 पर।

सुगम संगीत के चंक में आज आनंद ले रहे हैं आप रंजीत कुमार पाठक के गाए कुछ गीत और भजन का। लीजिए सुनिए एक और गीत।

0: सुगम संगीत के चंक में आज आप सुन रहे थे रंजीत कुमार पाठक के गाए कुछ गीत और भजन। दोस्तों, कार्यक्रम में के अगले पड़ाव पर हम पहुंचने ही वाले हैं और ये पड़ाव है हिंदी वार्ता का। तो साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है दोस्तों, और साहित्य हमें दिशा निर्देश देता है। इंसान के जीवन का यही तो साज है, श्रृंगार है। कहते हैं ना, साहित्य संगीत कला भी है ना, साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न, अर्थात हम सब भी पशु के समान ही हैं, लेकिन साहित्य संगीत और कला हमें उनसे ऊपर उठाता है। तो आइए हिंदी वार्ता का ये आनंद हम लेते हैं, सुनते हैं ये जानकारी से भरी हुई ये वार्ता।
1: हिंदू संस्कृति में मकर संक्रांति का विशेष महत्व।
2: उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। 7 साल की अल्पायु में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। 15 वर्ष की उम्र में उनका पहला विवाह हुआ था। उनका दूसरा विवाह 1906 ईस्वी में शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। 16 वर्ष की उम्र में उनके पिता का भी देहांत हो गया था। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1919 ईस्वी में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से 23 जून को त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद लेखन को उन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस से हुए घाटे की भरपाई के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिंटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी के 1 वर्ष के अनुबंध को बीच में ही छोड़कर वे बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनका निधन हो गया। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ 1901 ईस्वी से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनका पहला उपलब्ध लेखन असरारे माबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका हिंदी रूपांतर देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतर प्रेमा नाम से 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली, और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी गई। इसके कारण इन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित। 1915 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 ईस्वी में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1922 ईस्वी में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926-27 ईस्वी के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना। उन्होंने 1930 ईस्वी में बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1932 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1934 ईस्वी में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने लिखी थी। 1920 से 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास व कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी नामक उनकी नाट्य रचना भी मिलती है। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियां, गोस्वार्दी के 3 नाटकों, चांदी की डिबिया और न्याय नाम से अनुवाद किया। उनका रतन नाम

0: सरसार के उर्दू उपन्यास फसाने आजाद का हिंदी अनुवाद आजाद कथा बहुत मशहूर हुआ। प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। सेवा सदन के दौर में वे यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उनका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। 1936 ईस्वी तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन जैसी रचनाएं अधिक यथार्थ परख हो गईं, किंतु उसमें समाधान नहीं सुझाया गया। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। इसके साथ ही प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौर से ही आकर्षित कर रही। प्रेमचंद की 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ सभापति के रूप में दिया संबोधन भाषण ही प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। प्रेमचंद की रचनाओं में उस दौर के समाज सुधारक आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, आधुनिकता, विधवा विवाह आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है और उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया।
1: जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा था, साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है। ख़ास तौर से कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए तो इनके साहित्य में हम अपने समाज को देखते हैं। तत्कालीन भारतीय समाज जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसे एक दिशा दिखाने के का काम मुंशी प्रेमचंद ने किया था। भारतीय समाज किसानों, गरीबों और सामाजिक कुरीतियों का सजीव चित्रण उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। लगभग 300 से अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी है, जो मानसरोवर नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है दोस्तों। और कुछ प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानियाँ उनकी हैं, ईदगाह, कफन, पूस की रात, नमक का दारोगा, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब हम सब ने पढ़ा है, देखा है। और कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आंसुओं में नहीं डूबा होगा उनकी रचनाओं को पढ़कर। तो दोस्तों, अच्छे साहित्यकार समाज के सबसे बड़े सुधारक होते हैं, सच्चे सेवक होते हैं। हमें उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, दूसरों की बुराई देखने से बेहतर होता है कि हम अपनी बुराई देखें, हम कहाँ स्थित हैं। और जब हम अपनी बुराई देखते हैं तो हमें अपनी बुराई अधिक नज़र आती है और दूसरों का कम हो जाता है दोष। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज न्यूज हेडलाइंस क्या कहती है। तो मुहर्रम के बारे में, जो कल पूरी तरह से परसों संपन्न हुआ, मुहर्रम की 11वीं तारीख पर शनिवार को शिया समुदाय के लोगों ने आसानंदपुर स्थित बड़ी इमामबाड़ा से आलम जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। उन्होंने नोहा पढ़ते और मातम मनाते हुए करबला के शहीदों को याद किया और माहौल अत्यंत गमगीन हो गई। आज से शुरू होगा 15 दिवसीय एक्टिंग वर्कशॉप। ये वर्कशॉप 13 जुलाई तक इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहर के रंगमंच और अभिनय में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए 28 जून से 15 दिवसीय अभिनय कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र भागलपुर एवं सांस्कृतिक संस्था आलय के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ और महादलित परिसंघ के संयुक्त तत्वावधान में अंबेडकर नगर जरलाही में एक बैठक आयोजित की जा रही है और उसमें समस्याओं के निदान की होगी पहल। शिवाजी के राज्याभिषेक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय प्रगति शिक्षण संस्थान मंदरोजा में छत्रपति शिवाजी महाराज का 352वां राज्याभिषेक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बरहपुरा में कन्हैयालाल कपूर की जयंती मनाई गई। अंजुमन बाग व बहार के बैनर तले उर्दू के चर्चित व्यंग हास्य लेखक कन्हैयालाल कपूर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथियों, MSME दिवस पर 27 उद्यमी सम्मानित किए गए। विकसित बिहार 2047 के लक्ष्य पर जोर दिया गया। MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस के अवसर पर शनिवार को लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत DM आवास के समीप एक होटल में ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। भागलपुर में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, ऐसा कहा डॉक्टर पवन पुद्दार ने। ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से शनिवार को एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में ये बातें कही गई और इसमें मुख्य अतिथि थे विनोबा भावे विश्वविद्यालय एवं BBM कोयलांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर पवन पोद्दार।

आगे न्यूज हेडलाइंस में है साथियों की संस्कार के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं, ऐसा माधवेंद्र ने कहा। सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में शनिवार को विभागीय स्तरीय प्रचार प्रसार संवाददाता एवं सोशल मीडिया बैठक आयोजित की गई थी और इसमें ये बातें उन्होंने कही। 25 केंद्रों पर आज सिपाही भर्ती परीक्षा होगी, 11,142 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 10 जुलाई तक फॉर्म भरने का दिन है और शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र व स्व नामांकन शुरू कर दिया है। गेस्ट फैकल्टी बहाली में जांच कमेटी बनी। SBI के 1584 पदों पर भर्ती जल्द ही होने वाला है। सर्वाधिक पद PO के लॉ ग्रेजुएट और डॉक्टर्स के लिए भी अवसर है, तो जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो सजग हो जाए। BPSC परीक्षा में सफल उत्तम कुमार का विद्यालय में सम्मान किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले भागलपुर के उत्तम कुमार का आनंद राम ढांढानिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्मान किया गया। निवेश की सही समय से सुरक्षित होगा भविष्य, ऐसा कहा है दैनिक भास्कर व आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कंपनी के अमीर सुलेमान एवं पैनल डिस्कशन में शामिल अमित कुमार ने ऐसी बातें कही है। और जागरूक होना जरूरी, लालच से बचें, ऐसा कनिष्क ने कहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान साइबर DSP कनिष्क श्रीवास्तव ने लोगों को निवेश के दौरान साइबर ठगी से बचने का के लिए कहा है और सतर्क रहकर कहीं भी निवेश करने की बातें कही हैं। और साथियों, अब हम आपको मौसम की थोड़ी जानकारियां दे दें, थोड़ी सी सूचनाएं मौसम से संबंधित हो जाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं मौसम कूल सा है। भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को दिन भर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। दोपहर के बाद 3 बजे से मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए और मेघ गर्जन शुरू हो गया, जिससे लोगों ने गर्मी और उमस से थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली। दिन का अधिकतम तापमान हम देखें तो दोस्तों 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक रहा, इसीलिए गर्मी से लोग बेचैन हो उठे थे। लेकिन धीरे धीरे मौसम ने करवट ली और शाम तक मौसम बिल्कुल कूल सा हो गया, बिल्कुल ऐसे।

जी हाँ दोस्तों, जब मौसम इस तरह है, दिलकश है, तो हम भी सफ़र पर क्यों ना निकल पड़ें। और तो दोस्तों, सफ़र पर निकलने से पहले जानना पड़ेगा रेलगाड़ियों की रफ़्तार आज क्या कह रही है। तो दोस्तों, जानते हैं रेलवे परिचालन से संबंधित सूचना। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, ये गाड़ी बिल्कुल नियत समय पर चलने की सूचना है। ये गाड़ी 7:50 चलती है दोस्तों। अब से ठीक 5 मिनट बाद ये यहाँ से प्रस्थान कर जाएगी और इसका नंबर है 1553 और 13016 हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस। ये गाड़ी 7:45 पर चलती है। तो दोस्तों, ये गाड़ी अब अपने समय पर प्रस्थान कर चुकी होगी। आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला की बात करें तो दोस्तों, ये गाड़ी अपने ऑन टाइम आ रही है। 8:15 पर ये गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी का नंबर है 12368। जहाँ तक बात है ब्रह्मपुत्र मेल की, जिसका नंबर है 15658, ये गाड़ी भी अपने नियत समय 8:05 पर चलने की सूचना है दोस्तों। और 8:37 पर अपने सही समय पर ही चलने की सूचना है जमालपुर साहबगंज पैसेंजर, जिसका नंबर है 53416 और अपने नियत समय पर आज साप्ताहिक गोड्डा लोकमान तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8:35 पर यहाँ से प्रस्थान करेगी और इसका नंबर है दोस्तों 22311 और अपने नियत समय पर ही चल रही है प्रातः ठीक 9 बजे रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस और इसका नंबर है 13403। ये अपने नियत समय पर यहाँ आ रही है दोस्तों। और यशवंत फिर से सुन लीजिए, 63431 साहबगंज जमालपुर मेमू, ये गाड़ी भी अपने निर्धारित समय 9:05 पर चलने की सूचना है और राइट टाइम पर ही चल रही है मालदा क्यूल इंटरसिटी, जिसका नंबर है 13409 और इसका टाइम है दोस्तों 9:35। बाका राजेंद्र इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी भी अपने नियत समय पर यहाँ से प्रस्थान करने वाली है और इसका टाइम है 10:15 दोस्तों और इसका नंबर है 13241। अपने निर्धारित समय पर ही हम सबको अतिशय आनंद देती हुई भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस 11:55 पर हमारे अपनों को लेकर यहाँ से प्रस्थान करने वाली है, जिसका नंबर है 12367। तो मौसम के इस मिजाज में सफ़र का आनंद दुगुना हो जाता है ना दोस्तों।

0: जी हाँ दोस्तों, जीवन में थोड़ी मस्ती, थोड़ा आनंद तो होना ही चाहिए, तभी हम कठिन डगर पर चल पाएंगे दोस्तों। क्योंकि अकड़ करके मुर्दे चला करते हैं, तो हमारे जीवन में साहित्य, संगीत और कला हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने में का हौसला देते हैं, साथ ही साथ आनंद देते हैं कि कठिन रास्ते पर हम सुगम ढंग से चल सकें। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में भी हम आनंद के क्षणों को अपने अंदर समाते हुए आगे बढ़ेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार हम करेंगे बातें आज के इतिहास पर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
2: जी
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ दोस्तों, सूचना क्रांति के इस दौर में हमें बेहद बेहद बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपनों की आवाज़ में लोग हमें फ़ोन करते हैं और पैसे उधार मांग लेते हैं, और हम बिना कुछ सोचे समझे उन्हें दे देते हैं, और वो भी एक फ्रॉड है दोस्तों। फ्रॉड के कई रास्ते अपना रखे हैं ऐसे लोगों ने जो चीटर हैं, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। बात करेंगे आज के दिन के इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कहता है। आज ही के दिन यानी 28 जून 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया के राजकुमार शुरुआत हुई थी दोस्तों। 1919 ईस्वी में आज ही के दिन वर्सा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने आधिकारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया था। आज ही के दिन 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार और प्रेस और मीडिया पर सबसे सख्त सेंसरशिप लगाया गया था। आज ही के दिन यानी 28 जून 1996 को यूक्रेन के संविधान को आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिली थी, जिसके उपलक्ष्य में वहां हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल डिवाइस आईफोन लॉन्च किया था। दोस्तों बात करेंगे आज के दिन जन्मे कुछ महान शख्सियतों के बारे में। आज ही के दिन 28 जून 1995 को एम टी मरियप्पन थंगावेलू, जो भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, का जन्म हुआ था। 1960 ईस्वी में आज ही के दिन प्रहलाद सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, का जन्म हुआ है। और 1883 ईस्वी में शिव प्रसाद गुप्त, हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी, का जन्म हुआ था। और दोस्तों आज के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म भी हुआ है। इनके बारे में हम आगे चंद बातें करेंगे। और बात करें 28 जून को किन महान लोगों का डेथ हुआ है, तो दोस्तों इसमें 2012 में अमर गोस्वामी, भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार, का डेथ आज ही के दिन हुआ है। और 1972 ईस्वी में पीसी महालोन विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद का भी आज ही के दिन निधन हुआ था। और 28 जून को आज ही के दिन गरीब दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव, भारतीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन दोस्तों। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका पूरा नाम पामुल पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव था। 28 जून 1921 ईस्वी को आपका जन्म हुआ था। वे 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने उदारीकरण की शुरुआत की थी। और बात करें इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की, तो 28 जून 1921 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य के करीम नगर जिले के लकनेपल्ली गांव में आपका जन्म हुआ था। और आपने उच्च शिक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से प्राप्त की थी। मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने आगे की शिक्षा पूरी की थी। वे कानून में भी स्नातक थे। और दोस्तों, वो बहुभाषी थे, उन्हें कई भारतीय और विदेशी भाषाओं का गहरा ज्ञान था। राजनीतिक जीवन की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के वे एक सिपाही थे, वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हैदराबाद मुक्ति संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 1971 ईस्वी से 1973 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश के आप मुख्यमंत्री भी रहे। बात करें दोस्तों केंद्रीय मंत्री के रूप में, तो केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को उन्होंने संभाला था और उनको मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों, उन्होंने आर्थिक दिशा और दशा दी और हमें ये सिखाया कि पौराणिक बातों से ऊपर उठ करके आर्थिक क्रांति के लिए कुछ रिस्क भी लिया जा सकता है। और आर्थिक उत्थान के लिए उन्होंने बहुत तेरे काम किए, बहुत तेरे प्रयास किए, उनको हम नमन करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, हम सबों के प्रयास से ही भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। और अपने छोटे छोटे योगदान अगर हम देंगे, राष्ट्र हित में अपना कदम उठाएंगे, तो हमारा देश सच में विश्व गुरु बनेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबों को फिर से हमारा एक बार प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों फिर मिलते हैं।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

जी हाँ दोस्तों, योग हमारी धरोहर है और ये विश्व को दिशा और दशा देने वाला है। तो दोस्तों, अपने जीवन में सुधार के लिए हमें योग अपनाना चाहिए। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार में आप सुनेंगे समाचार प्रभात
1: प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
3: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने
6: टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जांच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
8: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
9: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
10: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
11: हमारे यहाँ रोड टू कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के 1-1 गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
12: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज।

0: नहीं।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है।

0: तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रही है। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राजस्व सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड की टेटिया पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत समेत सुशासन युक्त पंचायत का लक्ष्य हासिल करना भी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण भी सुना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। श्रद्धालुओं को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका टूर ऑपरेटर पूरी तरह पंजीकृत और अधिकृत हो। इस बीच 20 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था नाथुला दर्रे पर भारत चीन सीमा के रास्ते चीन में प्रवेश कर गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां बांटने का निर्देश दिया है। उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे निर्देश में कहा है कि डिग्री की छपाई और उनके वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लंबित डिग्रियों को अभियान चलाकर वितरित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी लंबित डिग्रियों को छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाए। राज्य सरकार ने जमीन मापी की नई दर तय की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मापी के लिए प्रति खेसरा ₹1,000 तथा अधिकतम ₹4,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹2,000 और अधिकतम ₹8,000 शुल्क देना होगा। विभाग ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सामान्य मापी का शुल्क प्रति खेसरा ₹2,000 तथा अधिकतम ₹8,000 तय किया गया है। वहीं तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹4,000 और अधिकतम ₹18,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही अमीन को आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर मापी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमआई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एमएसएमआई क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। इस अवसर पर एमएसएमआई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से एमएसएमआई क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
1: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमआई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और पुस्तकों का भी विमोचन किया। बिहार पुलिस ने स्पेशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट अपलोड करने वाले 128 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 महीनों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 सोशल मीडिया हैंडल, आईडी और चैनलों को हटाया गया है। पुलिस ने कहा है कि आम जनता की जागरूकता और सहभागिता से फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: स्कोर पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में 544 केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 993 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। परिषद ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ई प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा विशेष ट्रेन चला रहा है। गन्ना विकास मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
1: मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा। आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
0: राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों पर अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अपार आईडी के बिना परीक्षा के लिए निबंधन नहीं कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि अपार आईडी छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक पहचान है, जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाती है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति नियमित बनी रहेगी। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सिवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मधेपुरा के पुरैनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थान पर हल्की बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हाट सरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बेतिया एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र के भाग कोहलिया गांव में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 31 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक 11,25,606 सोलर लाइट लगाई जा चुकी है। पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लक्ष्य का लगभग 96% है। पटना जंक्शन से रेलवे पुलिस ने यात्रियों से ठगी करने वाले अंतर राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग नकली नोटों का बंडल दिखाकर यात्रियों को ठगते थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से दरभंगा के रहने वाले कृष्णा राय उर्फ शान को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे शहजाद भट्टी को संवेदनशील जानकारी भेजता था। वो पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से शहजाद भट्टी के संपर्क में था। कृष्णा राय के खिलाफ 24 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। गौरतलब है कि आज के मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम 11 में जगह मिलने की उम्मीद है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्र

0: उन्होंने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना का मिलर स्कूल प्रेरणा का मॉडल बनेगा। दैनिक जागरण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर लिखा है कि अटकलों पर विराम, चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार के परीक्षा माफिया ने अब महाराष्ट्र टीआईटी के पेपर लीक कराया, 3 गिरफ्तार। प्रभात खबर ने बिजली से जुड़ी खबर पर लिखा है, 6 जिलों में बिना ग्रिड मिलेगी निर्बाध बिजली। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, पीएमसीएच प्राचार्य हटाए जाने के मामले की होगी हाई लेवल जांच, पूर्व प्राचार्य की प्रेस वार्ता से स्वास्थ्य विभाग नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey girls,
2: hey, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: hey, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर और अपने एंड्रॉयड मोबाइल सेट पर आपने ट्यून किया है इस समय आकाशवाणी भागलपुर मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। पेशे खदमत है फिल्मी गानों का हमारा कार्यक्रम नगमे नए पुराने।

कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म दिल से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, एमजी श्री कुमार और साथियों का। रचना गुलजार की है और इसे सुरों में पिरोया है ए आर रहमान ने।

0: आप सुन रहे थे सोहनी महिवाल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार अनु मलिक। अगले गाने के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम नगमे नए पुराने में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको बेहद ही खूबसूरत सा ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम गीत से। जी साथियों, इस गीत के लिए आवाज़ें हैं सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल की, रचना इंदिवर की है और संगीत से संवारा है जगजीत सिंह ने।

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम, लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम नगमे नए पुराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंजूषा।

जय हिंद बच्चों, बाल मंजूषा के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी रागिनी। कार्यक्रम की शुरुआत हम अमृतवाणी से करते हैं। बच्चों,

किसी महापुरुष ने कहा है कि जिस दिन आप बुरे विचारों के ऊपर अपने अच्छे विचारों को रख देंगे, उस दिन जिंदगी खुद ब खुद और बेहतरीन हो जाएगी। बच्चों, हमारा मस्तिष्क एक बगीचा है। हम इनमें जैसे विचारों के बीज बोएंगे, उसका परिणाम भी हमें वैसा ही मिलेगा। यदि हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होंगे। यदि नकारात्मक विचारों को अपने भीतर प्रवेश देंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे बीज बोने के बावजूद भी फसलों के साथ खरपतवार निकल आते हैं, जिसे किसान समय समय पर साफ करते रहते हैं ताकि फसलों को विकसित होने का मौका मिले। इसी तरह हमारे सकारात्मक विचारों के साथ साथ कभी कभी अन्य अवांछित विचार भी हमारे मन पर अधिकार करने लगते हैं। ऐसे विचारों को हमें तुरंत निकाल कर केवल सकारात्मकता को ही प्रश्रय देना चाहिए। कहा भी गया है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए बच्चों, सदैव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, निश्चित ही आप लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होंगे। बच्चों, हमारा पर्यावरण प्रकृति की वो अमूल्य धरोहर है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है, वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत, नदियाँ और मानव समाज, सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। हमारा जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर ही निर्भर है। शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संसाधन हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। पर्यावरण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति प्रदत्त वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियाँ, जीव जंतु आदि शामिल हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में हमारे द्वारा निर्मित भवन, सड़कें, उद्योग, बांध, पुल, परिवहन व्यवस्था आदि शामिल हैं। अगर हम पर्यावरण के महत्व की बात करें तो ये हमारे जीवन का आधार है। बच्चों, इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवित रहने के लिए आवश्यक वायु, जल और भोजन हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। वन, नदियाँ और महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं, साथ ही वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। हमारा पर्यावरण लाखों प्रकार के जीवों और वनस्पतियों का घर है। प्रत्येक जीव प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि, उद्योग, मत्स्य पालन, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ पर्यावरणीय संसाधनों पर ही निर्भर करती है। हमारे पर्यावरण के समक्ष कई तरह की चुनौतियाँ हैं जिससे इसका संरक्षण आवश्यक है। इन चुनौतियों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण आदि शामिल हैं। ये कारक अलग अलग तरीके से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। वाहनों, कारखानों और ईंधन के अत्यधिक प्रयोग से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे अनेक श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो रहे हैं। बच्चों, नदियों और जलाशयों में औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थों के प्रवाह से जल प्रदूषित हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई हो रही है, जिनसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है। एकल उपयोग प्लास्टिक पर्यावरण के लिए चुनौती बन चुका है। ये मिट्टी, जल और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों, हमारे पर्यावरण का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदत को अपनाएं तो पर्यावरण संरक्षण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। हमारी छोटी छोटी पहल जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना, पेड़ लगाना और स्वच्छता बनाए रखना हमारे पर्यावरण को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकता है। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं बच्चों और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, अब हम जल संरक्षण के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संसार के सभी जीवों के जीवन का आधार जल है। जल हमें समुद्र, नदियों, तालाबों, झीलों, वर्षा और भूजल के माध्यम से मिलता है। गर्म हवाओं के चलने से इन जल स्रोतों का जल वाष्पित होकर ठंडे स्थानों की ओर चलता है, जहाँ पर न्यूनतम तापमान के कारण संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जबकि पहाड़ों पर

0: और कम तापमान होने के कारण जल बर्फ के रूप में जम जाता है, जो गर्मी के दिनों में पिघलकर नदियों में चला जाता है। हम अपने स्वास्थ्य, सुविधा और विलासिता के लिए अमूल्य जल को बर्बाद करते हैं। पानी का इस्तेमाल करते समय हम इसकी बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते। परिणाम स्वरूप बच्चों, अधिकांश जगहों पर जल का संकट बना हुआ है। यदि हम अपनी आदतों में थोड़ा सा भी बदलाव कर लें तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जल तो हमारा भविष्य है। यदि हम इसकी बचत करते हैं तो ये भी जल संग्रह का ही रूप है। आपको जानकर हैरानी होगी बच्चों कि एक अध्ययन से पता चला है कि यदि हम मानव अपनी आदतों में बदलाव लाएं तो 80% से भी अधिक पानी की बचत हो सकती है। बच्चों, जल संरक्षण का अर्थ उसकी बर्बादी और उसे प्रदूषित होने से बचाना है। पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं में उपलब्ध होता है। पहला है तरल जल, जो हमें समुद्र, नदियों, झरने, तालाब, कुएं आदि से मिलता है। दूसरा है ठोस जल यानी बर्फ, जो पहाड़ों और ध्रुवों पर जमी बर्फ के रूप में उपलब्ध है। और तीसरा है वाष्प, जो बादलों के रूप में है, जिससे वर्षा होती है। यदि हमारे देश में वर्षा के रूप में प्राप्त जल का पर्याप्त संग्रहण और संरक्षण किया जाए तो यहाँ जल संकट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हमारे देश की अधिकांश नदियों में पानी की मात्रा की कमी हो गई है। इनमें कावेरी, कृष्णा, गंगा, पेन्नार, साबरमती, गोदावरी आदि प्रमुख हैं। बच्चों, जल संरक्षण के लिए हर स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। यदि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाए तो जल संरक्षण सुगम हो सकता है। जैसे प्रत्येक गांव या बस्ती में एक तालाब होना आवश्यक है, जिसमें जल संग्रह हो सके और आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जा सके। नदियों पर छोटे छोटे बांध और जलाशय बनाए जाएं, ताकि बांध में पानी एकत्र हो सके। नदियों में प्रदूषित जल को प्रवाहित करने से पहले उसे साफ करना जरूरी है, ताकि नदियों का जल साफ सुथरा बना रहे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ताकि ये वृक्ष एक तरफ से तो पर्यावरण को नमी पहुंचाएं और दूसरी ओर वर्षा करने में सहयोग करें। भवनों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों में जल संरक्षण के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। घर की छत पर वर्षा जल का भंडारण करके इसे काम में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी दैनिक आदतें भी पानी बचाने में हमारी मदद कर सकती हैं। जैसे नहाते समय, ब्रश करते समय यदि हम पानी का उपयोग नहीं कर रहे तो उस समय नल बंद कर दें। नलों और पाइपों से यदि पानी रिस रहा है तो उसकी मरम्मत करवाएं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम जल संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बच्चों, अब कार्यक्रम में हम सुनते हैं स्वामी विवेकानंद से जुड़े प्रेरक प्रसंग। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये हमारे देश के महान संत, विचारक और युवा प्रेरणा के स्रोत थे। ये सदैव युवाओं को आत्मविश्वास और साहस का संदेश देते थे। एक बार की बात है, एक युवक उनके पास आया। वो जीवन की असफलताओं से निराश था और स्वयं को कमजोर समझता था। उसने स्वामी जी से कहा, मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। अब मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। स्वामी जी ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर उसे पास के एक मैदान में ले गए। वहाँ एक बड़ा वृक्ष खड़ा था। स्वामी जी ने कहा, क्या तुम इस वृक्ष को देख रहे हो? ये भी कभी एक छोटा सा बीज था। यदि इसने ये सोच लिया होता कि मैं इतना विशाल कभी नहीं बन सकता, तो क्या आज ये वृक्ष बन पाता? फिर उन्होंने युवक से कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वही कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। संसार का इतिहास उन्हीं लोगों की सफलताओं से भरा है जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा। स्वामी जी के शब्दों ने युवक के मन में नई ऊर्जा भर दी। उसने निश्चय किया कि वह कभी निराश नहीं होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करेगा। कुछ वर्षों बाद वो अपने क्षेत्र का एक सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। बच्चों, ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अब आती है आप बच्चों की बारी, यानी बच्चों की प्रस्तुति की। तो आइए सुनते हैं बच्चों की प्रस्तुति।
1: मेरा नाम है निधि कुमारी, मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली, इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर, क्यों गई है बखेर यूं मोती, पेड़ क्यों हैं हरे भरे इतने, किस लिए फूल हैं बहुत फूले, इस तरह किस लिए खिली कलियां, भौर है किस उमंग में भूले, क्यों हवा है समल समल चलती, किस लिए है जहां तहां थमती, सब जगह एक एक कोने में, क्यों मक है पसारती फिरती, लाल नीले सफ़ेद पत्तों में भर गए फूल बेली बल्ली, क्यों झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहली, क्यों किस लिए ठाट बाट है ऐसा, जी जिसे देखकर नहीं भरता, किस लिए एक एक थल सचकर स्वर्ग की है बराबरी करता, किस लिए है चाल पाल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज दिन किसकी, आरती है उतारने आई, देखते हैं राह थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें ना पाते हैं, अगर आज आ रहा है तू हम पलक पावड़े बिछाते।
2: मेरा नाम पलक, मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों का नाम लिखाएंगे, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है, उनको गले लगाएंगे, उनको सुखी बनाएंगे, जो लोग हार कर बैठे उम्मीद मार कर बैठे, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे।
3: मेरा नाम प्रतीक्षा कुमारी है, आज मैं कविता सुनाने जा रही हूँ। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीर में, पंखों के सुख में चिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवजट, चूर नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुने थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तमने था मंडप ताना, कुक उठी सासा तरु वासिनी गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना।
4: मेरा नाम त्रिशा तेजस्विनी है, मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम दीपक बन जाए है। जहाँ जहाँ भी अंधियारा हो, पहुँचा अभी नवजियारा हो, आओ हम दीपक बन जाए, घर का दीपक कहलाने से उजियारा घर तक रहता है, सबके लिए दीप जो होता जग उनको सूरज कहता है, किरणों का संसार बसाए, फिर से नई रोशनी ला, दीपों का त्यौहार मनाए, आओ हम दीपक बन जाए, जितनी दूर उजाला चलता पांव पर तक चल सकता है, राह तक जाती है लेकिन मन का लक्ष्य नहीं थकता है, मंजिल तक दीपक रख आए, दूर दूर तक अलख जगाए, हम सब उजला पथ अपनाए, आओ हम दीपक बन जाए।
5: मैं हर्ष कुमार परियों ने कहा कविता सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन सारी परिया आ निकली दूर गगन में, धरती पर वे पहुंच गई सुंदर एक उपवन में, सोचा उपवन से बाहर जाकर भी कुछ देखे, धरती की सुंदरता पर हम भी तो कुछ रीझे, पर देखा जो बाहर बहुत गंदगी पाई, गंदे गंदे बच्चे देखी देखी खूब लड़ाई, कोई पढ़ाई से बचता तो झूठ बोलता कोई, धरती की हालत देखकर सारी परिया रो, उन बच्चों को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, साफ सफाई प्यार पढ़ाई सच का पाठ पढ़ाया, जिन बच्चों ने परियों की यह सारी बात मानी, उन बच्चों की सूरत ही इस दुनिया ने पहचानी।
6: मैं अर्पिता ने कविता आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है तू जिंदा है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन, कवि तो होगी इस चमन पे भी वहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह और शाम के रंगे गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हजार फेस धर के आए मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन के पेट में पले अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, बुरे हैं आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।
7: मेरा नाम पूर्वी राज है, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, कदम का पेड़। या कदम का पेड़ अगर माँ होता या मनाती रे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती या कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊँचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ पे बड़े मजे में मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बासी के स्वर में तुम्हें बुलाता, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़ कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्ते में छिप कर कर फिर बांसुरी बजाता, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं नहीं उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर छिप जाता, एक बार माँ के पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नहीं उतर कर आता तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत तुम असल पसार कर, अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आँखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे ही छुप जाता, तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह खेला करते थे हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता जो मिला तीरे।
8: मेरा नाम उर्वी राज है, मैं कविता सुनाना चाहती हूँ, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो तर जाएगी, बाहर निकाल लो तो मर जाएगी, दो दिन रखो सर जाएगी, बिल्ली आकर काट खाएगी।
9: मेरा नाम वे शर्मा है, मैं कामना कविता सुनाना चाहता हूँ, नहीं चाहे धन की मुझको दिन दुखी को अपनाऊं, ईश सुमिति दो विद्या दंडो जन सेवा में लग जाऊं, खाना पीना मौज उड़ाना ऐसी मेरी चाह नहीं, कर उपकार सदैव करूं पर अपनी कुछ परवाह नहीं, छोड़ पड़ाए रहन सहन को निजी वस्तु को अपनाऊं, वीर जवाहर सुभाष बाबू गांधी जी सा बन जाऊं, छूछवात का भाव मिटा कर सबको गले लगाऊं, मैं ऊंच नीच का भेद भुलाकर समता को अपनाऊं, मैं नहीं चाहता जग वैभव में या धन दौलत को अपनाना, किंतु चाहता मेरे ईश्वर मातृभूमि पर बलि हो जाना।
10: मेरा नाम फ्रांसी शर्मा है, मैं श्लोक सुनाना चाहती हूँ।

0: ശിവരോഷന് ശങ്കര ശങ്കര
1: मेरा नाम विधि है। मेरी कविता का नाम इतने ऊंचे उठो, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस संसारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो, धारा क्षमता की भावष्टि से, जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जग में इतने शीतल बहो की जितना मले पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नई राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो की जितना स्वर्ण है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक, जिन शिन का मोह मृत्यु का ही दुदक है, तोड़ो बंधन रुको न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिंतन, धारा के सतत प्रभाव में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह नहीं हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं है को स्वर्ग इस धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सबके प्रतिपल साथ हमारे, तो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है।
2: धन्यवाद बच्चों इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपकी छोटी सी प्रस्तुति ने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी का, तो आइए सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: नया जोश, नया उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में। ढेर सारी मौज मस्ती और धमा चौकरी से आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं।
1: सुप्रभात बाल श्रोता सब, अपना सभ्य बाल श्रोता के बहुते बहुते स्वागत है अपनों के सुंदर आरो अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 307 मा। अपनों सभ्य बाल मित्र के तहे दिल सा स्वागत करे छी और आज के ही खास कार्यक्रम के साथ है हम छिके अपनों सभ्य के प्यारी रेडियो साथी स्वाति और अपनों के साथ है अपनों के रेडियो दोस्त
0: ऋषि। हेलो दोस्तों, आप सभी बाल श्रोताओं का आपका रेडियो साथी ऋषि की ओर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी रेडियो दोस्त मस्त तंदुरुस्त और मजे में होंगे और हमारे कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे।
1: हाँ भैया, कार्यक्रम के आनंद ता लेर ले होते श्रोता सब और आजकल के ई मौसम के आनंद भी लेर ले होते श्रोता सब। आजकल के मौसम देखो नी अपनो कितना रूप बदली रहलो छे। भोरे भोर कितना कड़कता धूप रहे छे भैया और शाम में आंधी तूफान आबी जाय छे आरो रात में एकदम गदगद झाड़ पड़े लगे छे।
0: हाँ स्वाति, बिल्कुल सही कहा तुमने। आजकल मौसम के भी अपने निराले रूप देखने को मिल रहे हैं, कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान तो कभी कड़कड़ाती धूप।
1: लेकिन भैया ऐनो कहना हो रो छे,
0: क्योंकि ये सब संकेत मौसम के बदलने का है, यानी कि मानसून आने वाली है।
1: अरे वाह, तब खूब बे मजा आए थे बारिश में।
0: हाँ, मानसून बस आने ही वाली है क्योंकि आद्रा का प्रवेश हो चुका है।
1: ये आद्रा की होय छे भैया?
0: आद्रा का मतलब होता है नमी या पानी और इस आद्रा नक्षत्र से बारिश होना

0: शुरू हो जाता है।
1: अच्छा, ऐसा वर्ष है भैया।
0: हाँ, वर्ष 2026 में सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश 21 जून को हुआ है और यह आद्रा 6 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि को ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर वर्षा ऋतु के आगमन के लिए। इस समय में अच्छी बारिश होने की संभावना होती है, जो खेती और मौसम के लिए शुभ मानी जाती है। बिहार में आद्रा नक्षत्र का आगमन एक बड़े पर्व और खुशी के अवसर के रूप में मनाया जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के आगमन और कृषि कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है।
1: अच्छा, यानी कि आद्रा में बारिश खूब होय छे।
0: हाँ स्वाति, आद्रा नक्षत्र के आगमन पर बिहार के घरों में

0: आद्रा नक्षत्र के आगमन पर बिहार के घरों में, खासकर गांवों और उत्तरी बिहार में विशेष पकवान बनाने की परंपरा है। सबसे प्रसिद्ध पकवान है खीर और दाल भरी पूरी। यह एक तरह का उत्सव भोजन होता है जो कि इस समय बिहार के हर घरों में बनाया जाता है। इन पकवानों के साथ आम खाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय आम पूरी तरह से पक जाते हैं और उन्हें बहुत ही आनंद के साथ खाया जाता है। तुम्हें पता है स्वाति, मिथिला क्षेत्र में घर की कुलदेवी की पूजा की जाती है और उन्हें खीर और आम चढ़ाए जाते हैं।
1: अच्छा भैया, ये सब भी होय छे?
0: हाँ, यह मान्यता है कि मानसून की पहली बारिश होते ही आद्रा पर्व मनाना शुरू कर दिया जाता है। लोक गीतों में भी आद्रा का स्वागत किया जाता है, जैसे हे आद्रा तुम आई हो, आओ गले लगो, हमारे तन मन और मिट्टी में नमी बनाए रखो।
1: वाह भैया, ये आद्रा नक्षत्र ता बहुते कमाल छे, एकरा मतलब बहुते मजा आयता होता ही नी। ता साथी सब, चलो आबा कार्यक्रम में ई खास लोक गीत का सुनाय छी अपनो संगीत विधा के साथी द्वारा। तो चलो सुनाय छी ई खास लोक।

वाह, गीत तो बहुत ही सुंदर थी। गीतों के साथ झूमकर बेहद आनंद मिला। आप सभी संगीत विधा के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही प्यारी प्रस्तुति थी। तो दोस्तों, आप इस मौसम का लुत्फ उठाएं और खूब सारी मस्ती कीजिए। हाँ, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि हमें मस्ती भी करना है और स्वस्थ भी रहना है। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं।
1: ये ग्रह नहीं छे, लेकिन ग्रह जैसनो सूरज के चारों ओर घूमे छे।
0: एस्टेरॉइड डे हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है।
1: अंतरिक्ष के दुनिया बहुत रहस्यमय छे, जितना जानबे उतने मजा आते है।
0: दोस्तों, आज एस्टेरॉइड डे के खास हफ्ते पर हम सुनेंगे एक विशेष भेंट वार्ता, जिसमें एक खगोल विज्ञान विशेषज्ञ हमें अंतरिक्ष के अद्भुत रहस्यों और क्षुद्र ग्रहों की दुनिया के बारे में बताएंगे। तो आइए आज सुनते हैं किलकारी मुलाकात में इस भेंट वार्ता को, खगोल विज्ञान से जुड़ी अंतरिक्ष के रहस्य। भेंट वार्ताकार है हमारी अतिथि एस्ट्रोनॉमर प्रियंका गुप्ता मैम, और भेंट करता है आपके रेडियो दीदी कंचन। तो आइए इस भेंट वार्ता को सुनते हैं।
1: तैयार हो जाओ बाल श्रोता सब, अब हम जानबे कि अंतरिक्ष में आखिर की रहस्य छिपलो छे, और वैज्ञानिक ओकरो खोज केना का करे छे।
2: हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं हमारे खगोल विज्ञान की विशेषज्ञ प्रियंका गुप्ता मैम। आइए इनसे आज जानते हैं खगोल विज्ञान से जुड़ी ढेर सारी बातों को, और उनसे मिलते हैं, ब्रह्मांड की जानकारी को लेते हैं और उनसे बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रियंका गुप्ता मैम का। आइए मैम, अब हमारे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए और उन्हें अच्छी अच्छी बातें खगोल विज्ञान से जुड़ी बातें बताइए।
3: मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ, एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हूँ टू बी प्रिसाइज। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो एस्ट्रोनॉमी करता है शौक के तौर पर। अगर मेरे काम की बात करें तो मैं एक टीचर हूँ एक स्कूल में ऊटी में, और मेरा जो सब्जेक्ट है उसका नाम डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारी चीजें डिजाइन करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो जैसे कि मुझे इनवाइट किया गया है एज अ खगोल वैज्ञानिक, सो कहना गलत होगा कि मैं खगोल वैज्ञानिक हूँ, पर हाँ मैं एक एमेच्योर खगोल वैज्ञानिक हूँ, आप उसे ऐसा कह सकते हैं। सो खगोल विज्ञान होता क्या है? खगोल विज्ञान बेसिकली जो खगोलीय चीजें हैं, चाहे वो एक तारा हो, चाहे वो एक ग्रह हो, चाहे वो एक मून हो या गैलेक्सी हो, इन सारी चीजों के बारे में जानना, इनको एक्सप्लोर करना, यही सारी चीजें एक्चुअली खगोल विज्ञान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक सौरमंडल में रहते हैं जिसका एक तारा है सन। सन एक बहुत प्यारा, एक बहुत छोटा सा स्टार है हमारे यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में आपको बता दूं कि सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, और पृथ्वी से भी बहुत बड़े बड़े बड़े बड़े ग्रह हैं, और वो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके आसपास पृथ्वी जैसे भी शायद बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे। तो मुझे जो सबसे ज्यादा उत्साहित करता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो यही है कि हम इतने छोटे हैं पूरे ब्रह्मांड के में, तो क्या हमारे जैसे और भी लोग हैं, और अगर और भी लोग हैं तो वो कहाँ हैं, और सोलर सिस्टम के आगे क्या है। तो यही सारी चीजें हैं, यही सारे सवाल हैं जिनको जानने के लिए मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पसंद है। सो या
4: तो मैम, आज का हमारा पहला सवाल है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है?
3: क्योंकि वैसे तो हम पूरी पृथ्वी एक बार में नहीं देख सकते हैं, पर जब लोगों ने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया, उन्होंने बाहर से पृथ्वी को देखा, तो पृथ्वी जैसा कि हम सभी जानते हैं 70% पानी है, तो चारों तरफ जब उन्होंने बाहर से पृथ्वी को देखा तो वो एक नीले ग्रह की तरह दिख रही थी, क्योंकि पृथ्वी 70% पानी है, इसीलिए उसको नीला ग्रह कहा जाता है।
4: वाह मैम, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो वो क्यों टिमटिमाते हैं?
3: So, जैसे कि हमने पहले बताया कि सूरज भी एक आग का गोला है और एक वो तारा है। So, जितनी भी रोशनी हमें आती है वो सूरज से आती है, और ऐसे ही बहुत सारे तारे हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है। तो सवाल ये है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक लेयर है, एयर की लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो जब लाइट एटमॉस्फेयर के थ्रू आती है तो वो एटमॉस्फेयर में बनी हुई गैसों से इंटरैक्ट करती है,

0: है, मतलब उनसे उन उनसे पास होती है। तो जब वो उनसे पास होती है तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। सो एक फिनोमिना है बिकॉज अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है।
1: मैम, तारे से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, क्या टूटता तारा सच में कोई तारा होता है?
0: नहीं, तारे टूटते नहीं है। तो जो टूटता तारा होता है वो एक्चुअली स्पेस में बहुत छोटे छोटे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी रॉक्स होती है। कई बार वो रॉक्स पृथ्वी के आकर्षण बल की वजह से पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जब वो अट्रैक्ट होती है तो वो एटमॉस्फेयर, जैसा कि अभी पिछले सवाल में बताया कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, उससे होकर गुजरती है। तो जब वो रॉक्स एटमॉस्फेयर में जाती है तो बहुत सारा घर्षण होता है और उस घर्षण की वजह से वो छोटी छोटी रॉक्स जलने लगती हैं और हमें ऐसा आभास होता है कि कोई तारा टूट के गिर रहा है। सो एक्चुअली तारा नहीं टूटता है, वो छोटी छोटी रॉक्स होती है जो एटमॉस्फेयर में जल जाती हैं।
1: वाह, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि कोई तारा टूटता नहीं है। अगर हम लोग तारे पर बात कर रहे हैं तो हमें चंद्रमा पर भी बात करना चाहिए ना मैम। चंद्रमा अपना आकार क्यों बदलती है मैम? क्यों दिखाई देता है कि चंद्रमा अपना आकार धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं?
0: आप सबको पता है कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और आप सबको शायद ये भी पता होगा कि चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं है जैसे सूरज की है। तो जब सूरज की लाइट चंद्रमा पर पड़ती है तब हमें चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो कई बार जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वो हिस्सा हमें नजर नहीं आता या आधा नजर आता है, और कई बार वो पूरा नजर आता है। तो जब बिल्कुल नजर नहीं आता तब अमावस्या होती है, जब आधा नजर आता है तो हम आधा चांद बोलते हैं, और जब पूरा नजर आता है तो पूर्ण पूर्णिमा बोलते हैं।
1: और ये रहा मेरा प्रश्न मैम कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे तैरते हैं, क्यों तैरते हैं? कोई भी चीज को अगर हम अंतरिक्ष में लाते हैं तो वो तैरती क्यों है?
0: हम सवाल ये होना चाहिए कि हम धरती पर खड़े क्यों रहते हैं। तो धरती पर हम इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि धरती का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमें खींच के रखता है धरती से, धरती पर जमीन पर रखता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, हमें वहाँ कोई चीज नहीं खींच रहे है, हम बस खाली स्पेस में घूम रहे हैं जहाँ ना तो हवा है, ना पानी है, ना जमीन है, कुछ नहीं है। यही वजह है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में है वो तैर रहा है।
1: और ये मेरा आखिरी सवाल है मैम आपसे कि क्या भविष्य में इंसान किसी दूसरे ग्रह पर रह पाएंगे?
0: बिल्कुल रह पाएंगे, क्योंकि हमने शायद कभी आज से 100 साल पहले ये भी नहीं सोचा था कि हम किसी दूसरे ग्रह पर जा भी पाएंगे। बट आज से 40 साल पहले हम चंद्रमा पर जा पाए। अभी बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो प्लान हो रहे हैं कि मंगल पर भी हम ह्यूमंस को, इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट्स सफल होते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 50 सालों में कुछ इंसान वहां जाके रहना भी शुरू कर दे, शायद, पता नहीं।
1: वाह मैम, आपने तो खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई हमें बहुत सारी बातें बताई। आप हमारे बाल श्रोताओं को और भी कुछ कहना चाहते हैं मैम?
0: जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, वो ये है कि हमें सवाल करना चाहिए, हमें सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, जितना भी हम पढ़ सके उतना हमें पढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल मैम,
0: जैसे आजकल AI तो बहुत ज्यादा है, आप एक क्वेश्चन डालते हो आपको जवाब मिल जाता है, बट क्या वो जवाब सही है, ये जानना, इस चीज का पता करना हमारी जिम्मेदारी है। सो कीप क्वेश्चनिंग, कीप आस्किंग, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
1: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओं को अपने द्वारा बहुत सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वाह, बहुत ही सुंदर भेंट वार्ता थी, इसमें हमने तारों के बारे में जाना, चांद के बारे में जाना और भी ढेर सारे अंतरिक्ष रहस्य को समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आशा है कि बाल श्रोताओं को भी ये सारी बातें पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये भेंट वार्ता कैसी लगी हमें जरूर ही मैसेज करके बताएं।
3: दोस्त सब, अब एगो खेल खेलाई छी, ई खेल में हम सब सपना में जाए। आरो सोचबै कि सपना मा की कर सकै छियै। अच्छा भैया, पहले तो सोचो कि अगर तो अंतरिक्ष में चली जबो तो सबसे पहले की करबो।
2: वाह, कितना मजेदार होगा। मैं तो सबसे पहले अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखना चाहूँगा। नीले रंग की हमारी सुंदर धरती कितनी अद्भुत दिखती होगी। और मैं ना वो तारों को भी छूना चाहूँगा और चांद को भी छूना चाहूँगा। कितना सुंदर होगा ना वो पल।
3: वाह, तोरो जे कल्पना छौनी वो बहुत बढ़िया छान। हम्मा अगर अंतरिक्ष में जाबे तब त हम्मा सबसे पहला सभ्य ग्रह का देखबै। ओकर बाद एलियन सब मिलाए के कोशिश करबै। वहाँ पर एलियन भी हतै नी, कितना मजा आइतै ओकरा से खेलै में, बात करै में। आरो बहुते लोगो से सुनलो छियै कि पृथ्वी से भी बाहर अंतरिक्ष में एगो नयका दुनिया छिपलो छै, ओकरा भी देखबै आरो उन्नो भी घुमै ले जाइबै।
2: और दोस्तों, आप भी सोचिए कि अगर आपको अंतरिक्ष पर जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। अपने विचार हमें जरूर भेजिए।
3: दोस्त साहब, अब समय भय गेलो छै एगो खास सेगमेंट का सुने के, जेकरो नाम छकै अंगिका मजेदार खिस्सा। त चलो अब सुने छियै चुन्नू से एगो अंगिका खिस्सा।
4: हमरो नाम छकै चुन्नू, आज हम तोरा सभ्य के एगो अंगिका वाला खिस्सा सुनाय छियै। त किस्सा ई छकै, बुद्धिमान छोटकू एगो गांव में छोटकू नाम के एगो नटखट बच्चा छले। एक दिन होकरो दादी कहलके, छोटकू बाजार से 1 किलो आलू आन। छोटकू झोला लेकर बाजार चली गेले। रास्ता में होकरो दोस्त मिली गेले। दोस्त कहलके, कहाँ जाय छे रे छोटकू। तब छोटकू बोलके, आलू खरीदे ले जाय छी रे। दोस्त हंसी कर कल के, पहले तो ये पता छोटकू, 1 किलो आलू में कितना आलू होय छे। तब छोटकू थोड़ा देर सोचल के आरो तब कल के, ये तो दुकानदार पर निर्भर छे। अगर छोटो आलू देता तो ढेर होता, आरो बड़ो बड़ो आलू देते तो कम होता। ये सुनिका ओकरो दोस्त चुप हो गेले। बाजार पहुंची का सबसे पहले छोटकू ना आलू खरीद के घर आवे के समय एक आदमी पूछल के, कि रे बाबू टाइम कितना हो रहल छे। छोटकू तब कहल के, घरी त नै छौ, मतर की जितना देर अपनो के पूछा में लगले उतना देर में हम घर के आधा रास्ता पार कर लेलो होत गए। ये सुनिका आदमी हंसा लगले। घर पहुंची का तब दादी पूछल के, आलू त ले आले मातर की इतना देर कहना है लो। छटकू मुस्कुरा के कहल के, दादी रास्ता में सभे लोग ज्ञान ले ले चाहे चले तो थोड़ा ज्ञान बाटे में समय लगी गेले। चिन्नू के किस्सा कहना लगले। अपनो भी छुटकू जसनो हाजिर जवाब बनो।
3: वाह चिन्नू, तोरो खिस्सा तो बहुत मजेदार छलान। तो साथी सब, ई खिस्सा से हम सनी ई सिखाई छिया कि हाजिर जवाबी आरो समझदारी से हर बात के मजेदार बनेलो जा सकै छै। तो चलो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे छिया आर अब बुलाबे छिया अपनो के प्यारी बुझोवल रानी का। आरो सुनै छिए बुझोवल रानी से नयका नयका पहेली का।
5: बुझोवल रानी हाजिर हो।
6: हेलो मेरे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओ, मैं हूँ आपकी प्यारी बुझोवल रानी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओ, तो मैं हूँ आपकी प्यारी बुझोवल रानी। नई पहेली और नए अंदाज के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपकी प्यारी बुझोवल रानी।
5: हेलो बुझोवल रानी, कैसे हैं आप?
6: मैं तो ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं?
3: हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बुझोवल रानी, जल्दी जल्दी हमारे बाल श्रोताओं को पहेली सुनाइए।
6: खोलती हूँ मैं पहेलियों का पिटारा और पेश करती हूँ मजेदार पहेलियों को।
7: प्यारे बाल श्रोताओ, तो हमारी पिछले सप्ताह की पहली पहेली थी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी दिखने

में है सबसे न्यारी, छोटे हल्के पंख फैलाऊं, बगिया में मैं रौनक लाऊं। इस पहेली का सही उत्तर है तितली, क्योंकि दोस्तों तितली के होने से बगिया में रौनक और खुशहाली आती है, जिसे देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। तो दोस्तों हमारी दूसरी पहेली थी, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर फिरे वो थाल, मोती उससे गिरे ना लाल। इस पहेली का सही उत्तर था आकाश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की खास पहेलियों को। तो इस सप्ताह की पहली पहेली है, जंगल में मंगल है करता, राष्ट्र पशु हमारा कौन, जंगल का राजा मनमौजी, बोलो सोनू बोलो जान। और हमारी आज की दूसरी पहेली है, महान ग्रंथ गीतांजलि लिखा, राष्ट्र का गान, महान लेखक कौन थे, रखी देश की शान। तो बताइए दोस्तों कौन थे वो महान लेखक जिसने हमारा राष्ट्रगान

श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश ये कार्यक्रम हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। अभी आप सुन रहे थे बाल मंजूषा कार्यक्रम, बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता थी श्री पार्वती के। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं गोपाल भगत।

అటల Na

ಕಾಚಿಕೆ ಮಂದಿರ ಬಾಹೆ ಕಾಲಿ ಮ

0: लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं गोपाल भगत के गाए कुछ लोकगीत। आपने सुना एक मनोन गीत और एक देवी गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप कहीं मत जाइएगा, आगे हम आपको सुनवाएंगे गोपाल भगत की आवाज़ में एक लोक भजन।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: राम नाम लेके बजाबे डांका, जय हो बजरंग बली वीर बांका। राम नाम लेके

पल तुलसी के गछिया कौना प्राति पालन कर लाल नारे कऊ निर्भरिया।

0: आपने सुना एक सोहर, लीजिए अब सुनिए एक पूर्वी।
1: पिया मोर गए राम पूर्वज देसबा या हो राम पूर्वज देसबा।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना एक पूर्वी, इसके साथ ही लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के कलाकार थे गोपाल भगत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 10:55 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 11 बजे से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का सीधा प्रसारण। इसे हम आप तक दिल्ली केंद्र के सौजन्य से पहुंचाएंगे। इसे आप समापन पर्यंत सुन पाएंगे। तो आइए शामिल होते हैं दिल्ली की प्रसारण सभा में।

0: आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बुलबुल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए

युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों,
जड़ों से

0: जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। यह हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमाननक्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओं आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान वाणी कार्यक्रम में हम बातें करते हैं विज्ञान के विभिन्न तकनीकों विभिन्न आविष्कारों के बारे में। विज्ञान जगत की हलचल पर आधारित हमारे कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान समसामयिक की प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान और उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में आपको बताने के लिए हमारा कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान रत्न और आप सभी के ज्ञान को परखने और आप श्रोताओं से जुड़ने का हमारा स्तंभ होता है माइंड टेस्ट। तो श्रोताओं इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान रत्न का। श्रोताओं विज्ञान जगत अपने वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ये वैज्ञानिक जो नए नए प्रयोग नए आविष्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रेरणादायी जीवन को बताने का ही स्तंभ होता है विज्ञान रत्न। श्रोताओं विज्ञान रत्न में आज हम जानेंगे महान वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन के प्रेरणादायी जीवन के बारे में, तो आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। श्रोताओं लॉर्ड केल्विन जिनका नाम विलियम थॉमसन भी था एक प्रमुख स्कॉटिश गणितज्ञ भौतिक विज्ञानी और आविष्कारक थे। उनका जन्म 26 जून 1824 को बेलफास्ट आयरलैंड में हुआ था। वे आधुनिक ऊष्मा गतिकी के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने निरपेक्ष तापमान यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पैमाने का आविष्कार किया जिसे उन्हीं के नाम पर केल्विन कहा जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो विलियम थॉमसन के पिता जेम्स थॉमसन गणित के प्रोफेसर थे। उनकी गणितीय प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि उन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ग्लासगो विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पीटर हाउस कॉलेज गए और उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन किया। 22 वर्ष की बहुत कम उम्र में वे ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्राकृतिक दर्शन यानी नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर बन गए और 53 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए उन्हें 1892 में बैरन केल्विन की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रमुख उपलब्धियों और योगदान की बात करें तो केल्विन पैमाना, उन्होंने तापमान का पूर्ण शून्य बिंदु यानी एब्सोल्यूट जीरो निर्धारित किया जो कि 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। उनके नाम पर ही तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई केल्विन है। उन्होंने अटलांटिक महासागर के नीचे पहली सफल टेलीग्राफ केबल बिछाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिससे वैश्विक संचार की शुरुआत हुई। उन्होंने ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तैयार करने और समझने में प्रमुख भूमिका निभाई। अन्य आविष्कार की बात करें तो उनके शोध से जूल थॉमसन प्रभाव की खोज हुई जिसने आधुनिक रेफ्रिजरेशन की नींव रखी। श्रोताओं विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले इस महान वैज्ञानिक ने 17 दिसंबर 1907 को अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु लॉग्स स्कॉटलैंड में हुई। उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के पास ही दफनाया गया। श्रोताओं आज भले वो हमारे बीच नहीं हों लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वे हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। विज्ञानवाणी टीम की ओर से इस महान वैज्ञानिक को सादर नमन। श्रोताओं विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का। श्रोताओं क्या आप जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल के निर्माण के प्रारंभिक चरण के अवशेष हैं। कई क्षुद्र ग्रहों के साथ छोटे चंद्रमा भी होते हैं, कुछ के तो दो चंद्रमा होते हैं। इसके अलावा द्विक्षुद्र ग्रहों में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले दो समान आकार के चट्टानी पिंड शामिल होते हैं तथा त्रिक्षुद्र ग्रह प्रणालियां भी होती हैं। श्रोताओं आज हम क्षुद्र ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। इतिहास की बात करें तो तुंगुस्का घटना जो साइबेरिया में एक क्षुद्र ग्रह विस्फोट के कारण हुई थी जिसमें 830 वर्ग मील क्षेत्र में 80 मिलियन वृक्ष नष्ट हो गए थे। ग्रहों की सुरक्षा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घोषित किया गया। नासा ने कहा है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का पृथ्वी से टकराव एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवीय तौर पर रोका जा सकता है। श्रोताओं भारत की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने क्षुद्र ग्रह अपोफिस का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन में भाग लेने में भी रुचि व्यक्त की है। आपको बता दें कि अपोफिस एक निकट पृथ्वी वस्तु है और ऐसा माना जाता है कि यह 2029 में पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि नासा ने हाल ही में ऐसी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। श्रोताओं क्षुद्र ग्रहों के वर्गीकरण की बात करें तो अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पेटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रोजन्स जो क्षुद्र ग्रह एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं लेकिन इसके साथ टकराते नहीं हैं। इसके अलावा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट्स की कक्षाएं पृथ्वी के करीब होती हैं। क्षुद्र ग्रह जो वास्तव में पृथ्वी के कक्षीय पथ को पार करते हैं उन्हें अर्थ क्रॉसर्स के रूप में जाना जाता है। श्रोताओं हमने अभी बात की कि इसरो एपोफिस मिशन का अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन करने के लिए रुचि व्यक्त कर चुका है। तो क्या है एपोफिस?
श्रोतो, यह 14 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के निकट से 38,012 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह घटना पूर्वी गोलार्ध में मौजूद पर्यवेक्षकों को बिना किसी दूरबीन या दूरदर्शी के दिखाई देगी। एपोफिस को पहली बार 2004 में खोजा गया था। इसका आकार 335 मीटर है या 29.98 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि इस ग्रह पर अतीत में हुए प्रभावों के साक्ष्य मौजूद हैं जिनके परिणाम भयावह रहे हैं। मैक्सिको में 65 मिलियन वर्ष पहले एक क्षुद्रग्रह के प्रभाव से निर्मित चिक्सुलव क्रेटर डायनासोर और पृथ्वी की 75% प्रजातियों के विलुप्त होने से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2013 में एरिजोना में उल्का क्रेटर और रूस के चेलियाबिंस्क की घटना भी जुड़ी हुई है। श्रोताओं, आज इंटरनेट के दौर में हम अधिकांश समय मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसी दर्जनों से भी ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स मौजूद हैं जिन पे हम आए दिन एक्टिव रहते हैं। चाहे खबरों को लोगों तक पहुँचाना हो, चाहे सूचनाओं का आदान प्रदान हो, सोशल मीडिया मीडिया का और हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बनकर उभरा है। सोशल मीडिया एक दूसरे से जुड़ने का अनोखा माध्यम है जो सुख दुख के साथ सूचना, शिक्षा और रोचक जानकारियां भी साझा करने के अनंत अवसर दे रहा है। हम अकेले भी हों तो समाज के साथ होने का भान होता है, लेकिन एक बटन के स्पर्श से दुनिया भर में फैले झूठ और गलत सूचना को भी प्रसारित करता है सोशल मीडिया। तो श्रोताओं, सोशल मीडिया द्वारा गलत प्रसार को रोकने में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जिस गति से तकनीक का विकास हुआ है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ी है और हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। आज हर वो चीज़ जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उसकी पहुंच इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से है। जैसे सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोरेज, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब। हालांकि भारत की बड़ी आबादी जो सोशल साइट्स का उपयोग करती है, उसमें इसके उपयोग के प्रति जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में हैं, जिससे भारत में साइबर क्राइम घटित होने की स्थिति में भी इनकी जड़ तक पहुंच पाना कठिन होता है। इसलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की ज़रूरत बढ़ी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शैक्षिक के साथ ही कई तरह की हिंसात्मक सामग्रियों की भी बाढ़ आ गई है, जिसमें हिंसा और इसके लिए उकसाते गेम के कैरेक्टर हों या अन्य कार्टून्स। इसने बच्चों के पढ़ने और सीखने की मानसिकता को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे बच्चों और युवाओं में एकाग्रता की कमी हो रही है और वो हिंसक तथा बागी होते जा रहे हैं। इसलिए हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है विश्व सोशल मीडिया दिवस। विज्ञानवाणी के सभी श्रोताओं को हम यही कहेंगे कि साइबर क्राइम के इस दौर में

0: सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें और सोशल मीडिया के माध्यम से जो सकारात्मक लाभ आप अपने जीवन में उठा सकते हैं वो ज़रूर उठाएं और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। श्रोताओ, अभी हमने बात की सोशल मीडिया की। जिस तरह से सोशल मीडिया हम सभी के जीवन से जुड़ चुका है, उसी तरह से आज के दौर में कहा जाता है कि ये AI का दौर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आज विभिन्न प्रकार के AI टूल्स का इस्तेमाल डिज़ाइंस बनाने में, पिक्चर्स बनाने में, ऑडियो वीडियो क्रिएट करने में और विभिन्न प्रकार के कार्यों में AI का इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेट पर AI कंटेंट्स की बाढ़ है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में AI पूरी तरह से हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई क्रांति के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और ये साबित भी हो रहा है जिस तरह से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है और जिस तरह से इसका दायरा बढ़ रहा है। लेकिन श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति ने ऊर्जा और जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है? भारी कंप्यूटिंग और डेटा सेंटरों के कारण 2026 में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। टेक दिग्गजों द्वारा परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करने के बावजूद यह संकट बिजली ग्रिड और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। अब सवाल उठता है कि AI के कारण ऊर्जा संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है? इसके प्रमुख मुद्दों की बात करें तो AI मॉडलों को प्रशिक्षित करने और लगातार सवालों के जवाब देने के लिए दुनिया भर में विशाल डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि एक सामान्य गूगल सर्च की तुलना में AI से एक सवाल पूछने में लगभग 10 गुना अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार डेटा केंद्रों की अतिरिक्त बिजली मांग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले और प्राकृतिक गैस से पूरा होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु पर प्रभाव पड़ रहा है। अत्यधिक ऊर्जा की मांग के कारण माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी प्रमुख कंपनियों ने हालिया रिपोर्टों में स्वीकार किया है कि उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% से 48% तक की भारी वृद्धि हुई है। AI के सर्वर लगातार भारी गर्मी पैदा करते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में ताजे पानी की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों के अनुसार चैटबॉट्स जैसे ChatGPT पर 10 से 15 सवाल पूछने पर सर्वर की कूलिंग में लगभग 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जो इसे बिजली से भी बड़ा अदृश्य जल संकट बनाता है। आधुनिक तकनीक द्वारा जितनी तेजी से AI का विस्तार हो रहा है, उतनी ही तेजी से बुनियादी ढांचे यानी पावर प्लांट्स का विकास नहीं हो पा रहा है। डेटा सेंटरों की भारी मांग के कारण कई क्षेत्रों में बिजली की कीमतों में तेजी आई है। इस संकट से निपटने के लिए अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक दिग्गजें परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे विकल्पों में भारी निवेश कर रही है। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि 2400 घंटे बिना प्रदूषण वाली ऊर्जा मिल सके। इसके साथ ही AI का उपयोग मौसम और नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए भी किया जा रहा है। तो श्रोताओं, डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग के कारण कैसे दुनिया भर में AI के द्वारा ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है, आइए जानते हैं इस विषय पर विस्तार से। वार्ताकार हैं नीलमणि सरोज।
1: नमस्कार साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने आया हूं जो तकनीकी क्रांति और ऊर्जा उपलब्धता के बीच के तनाव को उजागर करता है और जिसे हम अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो आज का हमारा विषय है वर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में ऊर्जा संकट, और जिसे हम भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथियों, वर्तमान में भारत की पीक एनर्जी डिमांड 2026 के आंकड़ों के आधार पर लगभग 270.8 गीगावाट है, जो कि पिछले वर्ष यानी 2025 में लगभग 243 गीगावाट थी। औसत आपूर्ति की बात करें तो भारत में बिजली आपूर्ति की वार्षिक वृद्धि दर 7% है। बढ़ती हुई वार्षिक ऊर्जा उपभोग दर किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास दर की सबसे स्पष्ट संकेत होती है और भारत के दृष्टिकोण से यह सुखद है। वर्तमान में हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अपने विशाल एवं जटिल विद्युत आधारभूत संरचनाएं, जिनमें कि देश के विभिन्न विभिन्न भागों में स्थित बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशंस हैं और जो कि वन ग्रिड वन नेशन से जुड़े हुए हैं, द्वारा पूरी कर रहे हैं। साथ ही हम अपनी ऊर्जा उत्पादन में से कोल एवं जीवाश्म आधारित थर्मल पावर प्लांट्स, जो कि आज भी कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 57% ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, को न्यूनतम करते हुए अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स पर निर्भर होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि यह पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जीरो एनर्जी इम्पोर्ट गोल्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाया है वह अभूतपूर्व है। अगर हम अभी भी अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो AI तकनीक के क्षेत्र को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमें भी AI से संबंधित तकनीक एवं आधारभूत संरचनाओं में तेजी से निवेश करने के लिए कदम उठाने होंगे। साथियों, हम जानते हैं कि एआई के कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, ऊर्जा, सुरक्षा इत्यादि सभी

कार्यकर्ता प्रतिदिन एआई से संवाद करते हैं तो यह संख्या खरबों की हो जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने प्रशिक्षण एवं डाटा प्रोसेसिंग के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर निर्भर करते हैं, जो कि हजारों सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग उपकरणों का एक जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इनमें लगे करोड़ों ट्रांजिस्टर्स को ऊर्जा देने तथा इस फैसिलिटी को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ज़्यादातर गीगावाट्स में होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व भर के डेटा सेंटर्स ने कुल 415 टेरावाइट आवर बिजली की खपत की है, जो वैश्विक उत्पादन का 1.5% है, और यह 2030 तक दोगुना होकर 945 टेरावाइट आवर तक पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, यह आंकड़ा लगभग पूरे जापान की वार्षिक बिजली खपत के बराबर है। भारत भी आज डिजिटल क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया है। वर्तमान में भारत के डाटा सेंटर्स मिलकर 1 गीगावाट बिजली खपत करते हैं तथा 2030 तक इसके 8 से 10 गीगावाट तक होने की उम्मीद है, जो कि विकसित भारत की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपरिहार्य भी है। अब समझिए, वर्तमान में पूरे बिहार की पीक एनर्जी डिमांड लगभग 8.7 गीगावाट है। मतलब आने वाले कुछ ही वर्षों में हमें बिहार जैसे एक अतिरिक्त राज्य के बराबर अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब शायद आप विषय की गंभीरता को समझ पा रहे होंगे। तो संकट के 3 मूलभूत बिंदु पर अब हम विचार करते हैं। पहला है आपूर्ति और मांग का असंतुलन। ऊपर के डिस्कशन में हम ये देख ही चुके हैं कि हमारी जो वार्षिक ऊर्जा वृद्धि दर है और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई मांग को पूरा करने के लिए हमें तेज़ी से अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इनक्रीज करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक प्रमुख समस्या ये है कि AI डेटा सेंटर्स के लिए हमें निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा से मेरा मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सर्वर्स को काम करने के लिए लगातार एक नियत वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो हम लोगों के जैसे या हमारी इंडस्ट्रीज के जैसे ऊर्जा की गुणवत्ता में या फिर उसकी आपूर्ति में बाधा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरा समस्या ये है कि ऊर्जा के स्रोत और कार्बन उत्सर्जन पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम ये ऊर्जा की उत्पादन जो करने वाले हैं वो हमारे गैर परंपरागत स्रोतों से ही आए, ताकि प्रदूषण इत्यादि समस्याओं को भी हम नज़रअंदाज नहीं करें। तो आइए चर्चा करते हैं कि हमारे पास समाधान क्या है। सबसे पहला बिंदु है नवीकरणीय ऊर्जा के तरफ पहल करना। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। हमें इस दिशा में अपनी दक्षता और बढ़ानी होगी। साथ ही ऑफ आवर्स में, जब सोलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं जैसे रात में, हमें कैपेसिटी स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाना होगा, ताकि ऑफ आवर्स में भी हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रिड सुदृढ़ीकरण। इतनी बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए हमारे विद्युत संरचना यानी कि ट्रांसमिशन लाइन्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इत्यादि को और दक्ष बनाना होगा, ताकि निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा का उपलब्धता भी रहे और AT&C लॉस भी कम हो सके। और तीसरा और सबसे प्रमुख जो समाधान का बिंदु है दोस्तों, वो है ऊर्जा संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता। एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह बिंदु हम सबसे अत्यधिक संबंधित है। हमें अपने नागरिकों, युवाओं में एक विशेष ऊर्जा संरक्षण जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हम सब इसके प्रति सजग हैं पहले से ही। आइए कुछ आवश्यक बिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा करें और ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। तो कुछ बिंदुओं हैं, जैसे कि विद्युत उपकरणों का अनावश्यक प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। पुराने बल्बों को LED बल्ब से बदला जा रहा है और ये सभी को करना चाहिए। हमें अपने घरों में 5-स्टार रेटेड उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ये ऊर्जा के मामले में दक्ष भी होते हैं और ज़्यादा कम्फर्टेबल सर्विस भी देते हैं। हमें अपने उपकरणों को, जो कि रिमोट कंट्रोल्ड उपकरण हैं, उन्हें रिमोट से बंद करने के बजाय कंप्लीट स्विच ऑफ करना चाहिए। अगर हमें अपने एयर कंडीशनर्स को ज़्यादा समय तक बंद करना है तो उसे सुनिश्चित करें कि वो डायरेक्ट मेन पावर स्विच से बंद किया जाए,
ताकि उसमें जो एक धीमी मात्रा में ऊर्जा का खपत पीसीबी बोर्ड को संचालित करने के लिए होती रहती है उससे हम बच सकें। साथ ही एयर कंडीशंस का इस्तेमाल करते

0: हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा कम तापमान पे, जैसे कि 25 डिग्री सी से कम तापमान पे नहीं इस्तेमाल करें इसको। इसके अलावा हम ग्रीन बिल्डिंग्स पर ध्यान दे सकते हैं। जब भी हम किसी नए भवन का निर्माण का योजना बना रहे होते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से रोशनी और हवा उस भवन में आ जा सके, ताकि हमें उस भवन को रोशन रखने के लिए और ठंडा रखने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता कम से कम हो। तो साथियों, हमने समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ एक तरफ से देश के विकास के लिए ज़रूरत भी है, हमारे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, वहीं इसे सजगता से, एक विद्युत के क्षेत्र में एक सजगता से इसे हैंडल करने का भी ज़रूरत है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, एआई के दौर में बढ़ता ऊर्जा संकट, इस विषय पर अभी हमने जाना विस्तार से एक वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार थे नीलमणि सरोज। श्रोताओं, हर साल 29 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाना, उनके सामने आने वाली चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और गरीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। घोषणा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2016 में प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत की गई थी। 29 जून 2014 को पहली बार स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट जारी की गई थी और इसी की वर्षगांठ के रूप में इस तारीख को चुना गया है। श्रोताओं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी की लगभग 40% भूमि शामिल है और यहाँ दुनिया की 80% जैव विविधता पाई जाती है। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया के अधिकांश आबादी और 2/3 बच्चे इन्हीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होंगे। ये क्षेत्र पारिस्थितिकी संतुलन और वैश्विक स्थिरता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये तेजी से हो रहे शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक प्रभावित भी हो रहे हैं। यह दिन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आम जनता को इन क्षेत्रों के सतत विकास के लिए एक साथ काम करने का मंच भी प्रदान करता है। श्रोताओं, आइए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। यह पृथ्वी का वह भूभाग है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। यह क्षेत्र पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है और भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान और पर्याप्त वर्षा होती है। प्रमुख रूप से इस क्षेत्र का महत्व विभिन्न कारणों से है, जैसे कि अत्यधिक जैव विविधता। यह क्षेत्र पृथ्वी की सबसे अधिक जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ विश्व के कुल स्थलीय प्रजातियों का लगभग 80% हिस्सा पाया जाता है। विश्व के 95% से अधिक मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। वैश्विक जलवायु विनियमन, जी हाँ श्रोताओं, अमेजन और कांगो बेसिन जैसे विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन ग्रह के फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं। ये वन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वैश्विक कृषि का प्रमुख आधार है। विश्व के कृषि योग्य भूमि का 40% हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आता है। वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने भोजन और आय के लिए इन्हीं क्षेत्रों पर निर्भर है। यहाँ विश्व के सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे कॉफी, चाय, कोको, रबर, गन्ना, केला और विभिन्न मसाले उगाए जाते हैं। जलचक्र और वर्षा, जी हाँ श्रोताओं, यहाँ के घने जंगल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में नमी छोड़ते हैं जो क्षेत्रीय और वैश्विक वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ और जलप्रपात लाखों लोगों को पीने का पानी और पनबिजली प्रदान करते हैं। चिकित्सा और औषधीय स्रोत, उष्णकटिबंधीय जंगलों में पौधों और जीवों की विविधता आधुनिक दवाओं का एक प्रमुख भंडार है। दुनिया के कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं का कच्चा माल या रासायनिक तत्व इन्हीं क्षेत्रों के पौधे से प्राप्त होते हैं। श्रोताओं, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ माइंड टेस्ट का। इस स्तंभ में हम हर सप्ताह दो सवाल पूछते हैं जिसके जवाब आपको डाक या ईमेल के द्वारा हमें भेजने होते हैं और सही जवाब भेजने वालों के नाम हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए सवालों के बारे में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह का हमारा पहला सवाल था कि विश्व योगा दिवस 2026 की थीम क्या थी, जिसका सही जवाब है योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। और पिछले सप्ताह का हमारा दूसरा सवाल था कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 21 जून। और इन सवालों के सही जवाब हमें लिख भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं मुस्कान कुमारी और ज्योति कुमारी नाथनगर भागलपुर से, राकेश कुमार सिन्हा और चंदन कुमार सिन्हा ने के नगर पूर्णिया बिहार से। आप सभी श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुनने के लिए और सही जवाब हमें लिख भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आइए अब नोट कर लें आज के सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है कि विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लें, विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। और आज का हमारा दूसरा सवाल है कि वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। सवाल एक बार फिर से सुन लें, वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं।
1: श्रोताओं, सवाल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब नोट कीजिए हमारा पता और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब हमें डाक या ईमेल द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञानवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन 81201, और हमारा ईमेल है

है phaiarbhagalpur@gmail.com, यानी phaiarbhagalpur@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों और ईमेल्स का। तो श्रोताओं, यह था हमारा आज का विज्ञानवाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि विज्ञानवाणी का अंक आपको पसंद आया होगा। विज्ञानवाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां मिली होंगी और इन रोचक जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ ये होगी आपसे फिर मुलाकात इसी दिन इसी जगह इसी समय यानी आकाशवाणी केंद्र भागलपुर पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान वाणी, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। इस कार्यक्रम में क्षमा करेंगे, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित भजन सपोरी का संतूर वादन सुनवा रहे हैं, राग पटदीप में। आपके साथ तबला पर संगत कर रहे हैं सुधीर पांडे।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद ग्राम पंचायत अमथुआ प्रखंड काको जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया है बैठने के लिए जो है वहाँ पर पार्क बनवाया जो है और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आदाब सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय के रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।
5: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको पंडित भजन सपोरी का संतूर वादन सुनवाया राग पटदीप में। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज की हमारे कलाकार हैं आशा देवी। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये मनाउन गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत ग्यामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: लीजिए सुनिए आशा देवी से ये झूमर। उनके उत्कृष्ट विकास

0: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा प्रखंड आलमनगर जिला मधेपुरा जी मैंने काम करवाए है। अभी तो मेरा बाहरी इलाका है कोसी कटाव से पीड़ित है वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं 10 से 15 पक्की सड़क मैं दो बार मुखिया बनी हूँ।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग कलाकार हैं आशा देवी इन्हीं के गाए लोकगीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद जिसके लिए आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण सभा में।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और युग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल।

0: शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। चाईबासा में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन में संलिप्त लोगों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बालू घाटों की नीलामी समय पर नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: राज्य में जिनकी सरकार यानी जितनी भी प्रकार के खनिज वो सब खनिजों की इसी प्रकार से चोरी हो रहा है। इन 6 वर्षों में 5-6 तो यहाँ आयरन ओर की खदाने जिनको ऑक्शन करना था नहीं किया। शुरू में भारत सरकार को पत्र लिखा कि हम ही को खोदने की इजाजत दीजिए। इजाजत उनको नहीं मिली तो इलीगल तरीके से सब खुदवाई कर रहा है।
1: पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 16 नए संक्रमित मिले हैं। गंभीर मरीजों को जमशेदपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में जांच, उपचार और जागरूकता

0: लाभार्थियों को सांकेतिक ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। महापौर रोशनी खलखो ने योजना को छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की घोषणा की है। मेधा सूची में शामिल 1941 अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच 1 से 14 जुलाई तक रांची के सदर अस्पताल में होगी। पहले दिन 150 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जिसके आधार पर आयोग अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्सेंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सेंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सहित पूरे झारखंड में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसके तहत जिले के 5,05,524 बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का शुभारंभ महापौर रोशनी खलखो, विधायक सीपी सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और NHM के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि बनाए रखने के लिए हर बच्चे तक खुराक पहुंचना जरूरी है।
1: पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि एक भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए और सदर अस्पताल के माध्यम से बूथों पर यहाँ के कर्मचारी पोलियो की खुराक देने का काम कर। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाए, कोई भी उससे वंचित न रह जाए।
0: वहीं मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्डों में आरोग्य केंद्रों और हेल्थ पॉइंट के माध्यम से बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है।
2: निश्चित इसमें नगर निगम भी भागीदारी निभाएगी और एक एक बूथ पर, एक एक आरोग्य मंदिर पर, एक एक दरवाजे पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को खोज खोज करके पिलाई जाएगी। मैं सारे बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर।
0: देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने नए सदर अस्पताल में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 1488 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में भी 0 से 5 वर्ष तक के 17,765 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लक्ष्य के साथ आज पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दुमका पलाश टोटो योजना की शुरुआत की गई। विधायक बसंत सोरेन ने योजना का लोकार्पण कर सखी मंडल की 21 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की इस योजना के तहत महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे स्वरोजगार से अपनी आय बढ़ा सकें। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि सभी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सहित आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
3: सबसे पहले हमारे ये आवश्यक है हम लोगों के लिए जानना कि लोड का असेसमेंट सही तरीके से, इसे की कृपया अपना ऑडिट जरूर कराएं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई करनी है हम लोग और कोचिंग संस्थाओं को बंद करा दें। सॉल्यूशन ये है कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने लोड असेसमेंट कराइए, अपना फायर सेफ्टी का ऑडिट कराइए।
0: राजधानी रांची में सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। थाईलैंड में 27 से 29 जून तक आयोजित हुई अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ग्रीको रोमन टीम ने 150

0: अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि उज्बेकिस्तान 171 अंकों के साथ पहले और कजाकिस्तान 167 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रांची के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार ने भारतीय अंडर 15 टीम के कोच के तौर पर तृतीय स्थान विजेता की ट्रॉफी ग्रहण की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और योग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। कलाकार हैं आशा देवी। इस भाग में आइए सबसे पहले सुनते हैं इनसे ये शिव भजन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड के है। मेरा गाँव है सरैया मोहनपुर पंचायत है। एक काम है बुनकी वही गली नली है वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: लीजिए अब सुनिए आशा देवी से कार्यक्रम के अंत में ये झूमर।

0: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद ग्राम पंचायत अमथुआ प्रखंड काको जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है वहाँ पर पार्क बनवाया जाए और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार थी आशा देवी। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम अंग तर्पण।

स्वागत करै छियै सभ्य श्रोता भाई बहिन के हुनको पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। सभ्य के अकलू के नमस्कार, आरो बताबो की हाल चाल। उम्मीद करै छियै कि सब कुछ बढ़िया होते, कनेक देखो इंडा एक आध दिनों से गर्मी हो, उमस भरलो गर्मी तो छिबे कर ले, लेकिन सांझ होते हैं जब घटा घेरे छे आ ठंडा ठंडा हवा चले छे, ओकरा बाद फेनू झीनी झीनी पानी दिए लगलों, तो ओकरा से मौसम थोड़ा सुहाना हो जाए छे। आरो मौसम सुहाना होना भी चाहिए, आरो मौसम जब सुहाना होते तो सब कुछ बढ़िया होते, ठीक ठाक होते, बस जरूरत छे ठीको से रह के आरो दूसरों का ठीको से रह के, चाहे वो घर के बच्चा बुतरु रह कि बड़ा बुजुर्ग रह कि आसपास के कोई भी लोग रह, चाहे वो पशु पक्षी के ना रह, सबका ठीको से रखना छे। कहना कि है गर्मी जे छे, गर्मी में सबका प्यास लगे छे, तो है प्यास बुझाना के ना छे पानी पिलाए करी का, पानी सबका पिलाए तो दे छे अच्छा सा, लेकिन पशु पक्षी को केना पानी पिले वो, तो अपनों घर के आगे में या छत के मुंडेर पर छज्जा पर या छत पर जाए छो जे पक्षी आवे छे जे पशु आवे छे ओकरा वास्ते थोड़ा सा पानी रखी दो, थोड़ा सा दाना रखी दो, रोटी रखी दो, ताकि वो चखनी अतः पीते खाते फिर चलिस्ते तो ओकरो भी कल्याण होते, एने कल्याण करता रह तो समाज आगे बढ़ता रहते, ठीक ने। आरो अभी देखो आजू सा पल्स पोलियो अभियान भी चली रहो छे, तो एना में जे 5 साल से कम उम्र के बच्चा छे ओकरा पल्स पोलियो के टीका भी दिलवाना छे, है भी भूलना नहीं छे, ताकि वो हो स्वस्थ रह, आरो जब स्वस्थ रहते बच्चा तो खुशहाल होते भारत, जानन छो। आ खुशहाल भारत में सबका सबका खुश रखे के अपनो अपनो दायित्व भी छे। अब देखो सरकार ने भी अपनो दायित्व निभा रहलो छे विभिन्न योजना से। योजना से याद ले एक योजना छे जे कि 1 जुलाई से अच्छा तरीका से शुरू हो रहलो छे, ओकरो नाम छे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जेकरा संक्षिप्त रूप में VBG Ramji, यानी जेकरो पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण छिके, है केंद्र सरकार के एक नया महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छिके। है योजना 1 जुलाई 2026 से पूरा देश में मनरेगा के स्थान पर लागू हो रहा है। मनरेगा तो जानबे करे छो जे कि ग्रामीण आरो कहीं कहीं शहरी भी लोगों का रोजगार दिला छे, खास करके ग्रामीण लोग का जे बेरोजगार छे जे मजदूरी करे चाहे छे ओकरा सरकार ने आजीविका दिला छे, ताकि ओकरो हाथों में 2 पैसा आवे आरो ओकरो भी पर परिवार बढ़िया से चले। आरो है जे छे योजना एकरो उद्देश्य छे ग्रामीण विकास आरो आजीविका सुरक्षा का आधुनिक बनाना, है योजना के अंतर्गत यानी VBG Ramji के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना रोजगार सृजन आरो सामुदायिक विकास कार्यों का सशक्त बनावे के वास्ते व्यापक वित्तीय प्रावधान करलो गेलो छे। है नया व्यवस्था के मकसद छे गांवों में रोजगार बढ़ाना जे कि सबसे ज़्यादा जरूरी छे और होना भी चाहिए, क्या कि गाँव में जब रोजगार बढ़ते तो गाँव के लोग जे छे वो थोड़ा थोड़ा समृद्ध होते, आरो जानबे करै छो कि गाँव में जे छे वो भारत देश के आत्मा बसे छे, तो आत्मा जब समृद्ध होता अच्छा होता खुशहाल होता तो समझो शरीर तो बढ़बे करते, तो ये वास्ते है जे योजना छे एकरो पहला मकसद छे गाँव में रोजगार बढ़ाना, आरो काम में पारदर्शिता लाना आरो तकनीक के मदद से भ्रष्टाचार का कम करना। अच्छा तो चलो एकरा पर आरो हमसे बात करवे, लेकिन अभी देखो अभी मौसम शादी ब्याह जनेऊ मुंडन हैसनी के चली रहलो छे, तो आज के हमसनी एक ठो निमन रंग जनेऊ गीत सुनै छे फेनू ढेर को बात करवे।

0: आरो जनौ जे छै ओ अपना सनिके एक संस्कार भी छिकै जकरा उपनयन संस्कार भी कहलो जाइ छै। उप मतलब नजदीक, नयन मतलब आँख, आँख के नजदीक होइ छलै कि पुराना जमाना मे जब पढ़ाई के उम्र होइ छलै, शुरुआत होइ छलै, तऽ तखनी गुरुजी के पास बच्चा के ले जाइलो जाइ रहलै आरो तब ओकरो सबसे पहिने उपनयन संस्कार करलो जाइलै, ओकरो बाद ही पढ़ाई लिखाइ शुरू होइलै। तऽ गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन छलै, जे कि आब अपना संस्कार मे आबि गेलो छै जकरा उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार भी कहलो जाइ छै। तऽ इतना अच्छा हम सनी गीत सुनलियै, आब सुनै छियै कुछ संदेश, ओकरो बाद हम सनी सुनबै अंगिका काव्य पाठ चंद्रशेखर मंडल जी से।
1: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा जी। मैंने काम करवाए, अब तो मेरा बाढ़ इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है, वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क में मैं दो बार मुखिया बनी।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश

हमरो पहला कविता छे गंगा आरो अंगिका, अपने सुनिए। नदी में पवित्र गंगा, नदी में पवित्र गंगा, भाषा में अंगिका, झर झर बहे गंगा चमक अंगिका, झर झर बहे गंगा

गंगा तीर कौन नगरिया, कहाँ गंगा मील अंगिका के छे खबरिया, के भाषा बोले अंगिका के छे खबरिया, के भाषा बोले।

कत्ते कत्ते प्राण छे गंगा, कत्ते दिन तक बहते, कत्ते प्राण गी का भाषा, कत्ते दिन तक जियते, कत्ते प्राण गी का भाषा, कत्ते दिन तक जियते। धरती सन पुराना गंगा, धरती सन पुराना।

ते हजार साल पुराना अंगिका जुग जुग जियते, हजार साल पुराना अंगिका जुग जुग जियते। दूसरो हमरो अंगिका गीत छिके एक भागलपुर जिला अंग।

बखाने दक्षिण बाका जिला में मंदार गिरी बिराजे, दक्षिण बाका जिला में मंदार गिरी बिराजे।

रेशम नगरी सुंदर अपनो, राजा कर्ण कै राज यहीं पे, मन भर सोना दान करल के। राजा कर्ण कै राज यहीं पे, मन भर सोना दान करल के। तिलका मांझी अंग्रेजन के, यहीं पे पानी खूब पिलल के। तिलका मांझी अंग्रेजन के, यहीं पे पानी खूब पिलल के। स्वर्ग से ननल के पति अपनो, स्वर्ग से ननल के पति अपनो, देवी सती बिहुला। रेशम नगरी सुंदर अपनो, भागलपुर जिला। रेशम नगरी सुंदर अपनो, जरदालु आम कतरनी चावल, देश विदेश मगम के। जरदालु आम कतरनी चावल, देश विदेश मगम के। इंद्रिंग कॉलेज कृषि विद्यालय, यहाँ के शान बढ़ावे। इंद्रिंग कॉलेज कृषि विद्यालय, यहाँ के शान बढ़ावे। अंगिका भाषा यही जन्म ले, अंगिका भाषा यही जन्म ले, बोले 25 जिला। रेशम

राजधानी यही छे विक्रमशिला, रेशम नगरी सुंदर अपना भागलपुर जिला, रेशम नगरी सुंदर अपना। हमारा तेसरो अंगिका गीत छिके चले भाग चले, चले भाग चले गौ के ओर शहर में बड़का बवाल, चले भाग चले गौ के ओर शहर में बड़का बवाल, बड़का बवाल छे, बड़का बवाल छे, चले भाग चले गौ के ओर शहर में बड़का बवाल। राही चलत यहाँ कोई नहीं पूछे, बगल में रही के कही

0: भवान। जनतन देखो भैया भीड़ बेसुमार छे, अपने में सब मस्त अपने में बेहाल छे। जनतन देखो भैया भीड़ बेसुमार छे, अपने में सब मस्त अपने बेहाल छे। चारों ओर या छे भागम भाग, शहर में बड़का बवाल। चलो भाग चले गौवा के ओर, शहर में बड़का बवाल। चलो भाग चले गौवा के ओर, शहर में बड़का बवाल। तेरी मेरी करेले बुने जाल छे, सब के बेचे खातिर सब ठाड़ छे। तेरी मेरी करेले बुने जाल छे, सब के बेचे खातिर सब ठाड़ छे। यहाँ जीना छे कत मुहाल, शहर में बड़का बवाल। चले भाग चले गौवा के ओर, शहर में बड़का बवाल। चलो भाग चल गौवा के ओर, शहर में बड़का बवाल। हमरो अगला कविता छे हम अंगी। हमरा चिन्हो तो है हम अंगिका, तोरो जुबान का पहला भाषा। हमरा चिन्हो तो है हम अंगिका, तोरो जुबान का पहला भाषा। अंग देश से छे हमरो नाता, पढ़ो लिखो भैया आवे अंगिका। सुनो बोलो भैया अपनो अंगी। भैया हो बोले में कहने ल जाए छो, भैया हो बोले में कहने ल जाए छो। माय के चिन्हे में कहने शरमाए छो, माय के चिन्हे में कहने शरमाए छो। बिहुला भी बोले कर्ण भी बोले, बिहुला भी बोले कर्ण भी बोले। बड़ी पुरानो छे हमरो गाथा, बड़ी पुरानो छे हमरो गाथा। पढ़ो लिखो भैया आवे अंगिका, सुनो बोलो भैया आवे अंगिका। तहूँ बोलो नुनहोक बोलवावो, तहूँ बोलो नुनहोक बोलवावो। अंगिका में पढ़ाए के कलेक्टर बनावो, तहूँ बोलो नुनहोक बोलवावो। अंगिका में पढ़ाए के कलेक्टर बनावो। कोसी बोले चांदन बोले, कोसी भी बोले चांदन भी बोले। गंगा मैया के खूबे सुहाता। पढ़ो लिखो भैया आवे अंगिका, सुनो बोलो भैया आवे अंगिका। ऑफिसों में बोलो बथान में बोलो, ऑफिस में बोलो बथान में बोलो। स्कूली में बोलो खरिहाना में बोलो, ऑफिस में बोलो बथान में बोलो। स्कूली में बोलो खरिहान में बोलो। किसान भी बोले मास्टर भी बोले, किसान भी बोले मास्टर भी बोले। मिलके सुधारो हमरो गाथा, मिलिक सुधारो हमरो गाथा। पढ़ो लिखो भैया आवे अंगिका, सुनो बोलो भैया अपनो अंगिका। जय अंगिका।
1: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत ग्यामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: संदेश के बाद एक बार फिर से सब श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे उनको पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। आरो संदेश से पहले हम अपने सुनी रलो छलिए अंगिका कविता यानी अंगिका काव्य पाठ। कवि छले चंद्रशेखर मंडल, हिनका बहुत बहुत धन्यवाद दे छी कि बहुत अच्छा अच्छा कविता हिन्नी सुनल के, खास करी के गंगा आरो अंगिका आरो फैनो अंगिका में भागलपुर जिला के जे बयान करलके, विस्तृत बयान करलके। आरो फैनो ओकरा बाद चला भाग चला शहर की ओर, आरो हमरा चिन्ह, हमरा चिन्ह मतलब अंगिका के चिन्हो। अंगिका बोलभो, सभ्य जगह बोलभो, सभ्य बोलभो, तभी तो अंगिका के विकास होते। तो इतना अच्छा अच्छा कविता वास्ते कवि चंद्रशेखर मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे छे। और लगे हाँ जे छे एक टारू जनयोगी सुने छे।

बड़ा सुंदर है जनम गीत छले आरो होना भी चाहिए। जब गीत लात सुनबो तो मन प्रसन्न हो जाए छे, आ जब मन प्रसन्न होता तो कोनो भी काम करे में मन लगते है। आरो खास करी का अगर सरकार के योजना में अगर तुम जुड़ी जो तो समझी ला कि प्रगति तो होने छे, आपनों भी प्रगति होते आरो समाज आरो देश के भी प्रगति होते। तो सब खुशहाल रहो, स्वस्थ रहो, आपनों रहो आरो दूसरों का स्वस्थ बने लो रखो, यही कामना कर छे। आरो यही कामना के साथ आप जैसे आज के कार्यक्रम से विदा ले छे। मिलबे अगला कार्यक्रम में, करबे ढेर को बात आरो सुनबे ढेर को गीत। तो हमरा दा विदा, सबका अकलो के नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। आइए शामिल होते हैं पटना की प्रसारण सभा में प्रादेशिक समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्ध पोतों, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार यह आयोजन दुनिया भर में 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जन भागीदारी की शक्ति से देश मजबूत होगा और सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महज 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि नए अवतार के रूप में यह भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों को इससे गति मिलेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास शिविर का आज आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इनमें से कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निदान किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस समय दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है।

विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किये हैं। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई परीक्षा विशेष ट्रेनें चला रहा है। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

हैं। वहीं रेलवे उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रियासत के बेशतर हिस्सों में जनूब मगरब मानसून की सरगर्मी से हल्की से दरमियाना बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशन गोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत रियासत के शुमाल मशरक हिस्सों में कई मकामात पर तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 4

0: 436 रुपये हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई, 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धूल का फूल का एक दुकाना, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की हमें प्राप्त हुई है। हबीबपुर रबिया कॉलोनी भागलपुर से फिरोज खान और परिवार के सभी सदस्य, गोपाल प्रसाद शाह और उनके परिवार के सभी सदस्य, आप हैं बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से, कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 पांडे गली से सुजीत राय, दीपांकर राय और तमन्ना राय और इनके साथ हैं इनके परिवार के लोग, मोहल्ला सदरुद्दीन चौक से

नगर चौक भागलपुर से। तो आइए सुनते हैं आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर फिल्म धूल का फूल का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: मुफ्त अली लेन मोहल्ला काजवाली चक से फौजेल नसीम रोज, सोमेरा शहरीन, फैसल नसीम, शादान, सिमरा, सिद्रा, जोया और अनम, नज़ीर मोमिन लेन इस्लामपुर चंपानगर से शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर, तारिक अनवर, सोभानपुर कटोरिया बांका खजांची टोला से शहादत अली, सालिक शहादत, सिद्रा शहादत और शाहिना परवीन, भिकनपुर भट्टा रोड विसहरी स्थान से आप हैं योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव वैभव, यामिनी और यशा, ग्राम गौराडी से डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश रंजन और नीलेश रंजन। आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर आइए, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धर्मा का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, आप भी अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, मोबाइल निकालिए और हमें अपने पसंद के गीत का विवरण मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है phaiarbhagalpur@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पत्र का पता, जिस पते पर आपको अपनी फरमाइश भेजनी है, वो है कार्यक्रम प्रमुख, आपकी फरमाइश कार्यक्रम, आकाशवाणी भागलपुर, आदमपुर, भागलपुर। इस बीच कई मेल हमारे पास पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले उन श्रोताओं का नाम हम आपको बता दें। आप हैं बड़ी खंजरपुर भागलपुर से भाई कुलफराज आलम, बेगम शमारा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली और सिटीजन मास्टर, धोरैया गंगदौरी से रामविलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कवित्री, तनुजा और सानदेव हरी, मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार, ऋतिक रोशन टोलू, बैजानी चौबे टोला से वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा, शालू, सानू, निहाल, साक्षी, कुकू, चीकू, पवन, कल्लू, मल्लू, सोनी, नीतू और परिवार के सदस्य, गंगा विहार कॉलोनी सबौर भागलपुर से प्रणव कुमार सिन्हा, अनिमा सिन्हा, प्रगल्भ और मिठी, सुर्खिकल तिलका मांझी से प्रशांत कुमार जायसवाल, जूली जायसवाल, आदि जायसवाल और सारा जायसवाल, और आप हैं ग्राम बात से राजू, सुमन, हिमांशु, छोटी बाबू, कंचन, डब्लू, बबली और बप्पू। आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हमराज का गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हवस का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और पसंद आई है आप तमाम श्रोताओं की। राजू यादव, अनूप यादव, आप हैं ग्राम पंचायत उपरह का बुंदेलखंड से, दादा बाबू न्यू रोड गिरिडीह से मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, बेबी चाहत और सादिया, सैनिक रेडियो श्रोता संघ धनकुंड से मोहम्मद परवेज आलम, मोहम्मद रियाज, अनाया परवेज, आतिफ परवेज और परिवार के सभी सदस्य, महादेव घाट अमलेश्वर से रोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। तो आइए आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हवस का ये गीत।

0: आप सुन रहे थे आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित फरवरी से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सामुदायिक गान का शिक्षा पाठ, जिसे हम आपको सुनवाते हैं संदेश के बाद।
1: सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है उनकी, वही गली नली है वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहवु हारु तिहवु
1: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला
0: यनी
1: तो मुगीला उद्द अगला जी की दनी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा तो एक पहला स्टैंजा है। हाँ?
1: हाँ।
0: आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाक
1: बान लोक नगुव नाक
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: तकी तकी तक।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, तो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: आप सुन रहे थे सामुदायिक गान का शिक्षा पाठ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्त गीत मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत। मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कंटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कंटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था, मैंने भरसक कोशिश की पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी, कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे, उनको धक्का सा लगा। आप ही के फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई, इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी। लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो, तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब, मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ। आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
0: देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
2: हेलो।
1: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
1: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
0: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
1: सुनाओ।
0: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
1: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
0: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
2: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
0: शकुंतला? कौन शकुंतला?
1: तुम जानती हो उसे उमा?
0: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार सामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
1: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
0: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
1: तब
0: खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, वो सब क्या ऐसी शादी के लिए थे?
0: जी हाँ।
1: तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
0: कैसी चिट्ठी है?
1: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है।
0: ओ,
1: शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
1: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
1: इस वक्त कुमार सामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
1: चलो, उस बेचारी दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
0: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
1: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
2: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती ही है भैया।
1: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
0: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
1: मदद? तुम
0: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
1: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
0: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर हों।
2: ओ नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
1: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गांव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहां मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहां एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
0: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
1: वहां एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
0: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुंच है, भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
1: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
0: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
1: अरे भाई, सब्र करो सब्र करो, तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
0: तुम तो बड़ी हट्ठी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
2: अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
1: अच्छा, बाय।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था।
3: क्या मालूम था तुम्हें?
4: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
3: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
4: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
3: ये भी कम हटीली नहीं है।
4: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
3: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
4: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
3: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ, तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा, मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
3: फिर
4: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
3: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
1: कंपाउंडर
4: जी अभी आया।
1: सुनो अलाबख्श, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
4: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
1: तुमने सुना है लबख्श, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
4: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
1: अच्छा लबख्श, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
3: जी बहुत अच्छा।
5: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
6: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट कहकर फटकार दिया।
5: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
6: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
5: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
6: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
5: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
6: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आजकल गाँव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा आदि दे आती है। इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्मार्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
5: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देखें जी कब तक चलेगा।
6: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
5: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
6: शाबाश, ये हुई काम की बात। देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
7: डॉक्टर साहब,
1: क्या हुआ भाई? ये खाओ ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
7: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
1: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
7: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
8: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
7: ओ, दवाएं क्या हुई?
8: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। ओफो, उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
7: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
1: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
7: अच्छा,
1: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
7: ठीक है,
8: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
1: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
3: डॉक्टर साहब, एक बात है।
1: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
3: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा।
1: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
3: वो उमा जी के घर
7: में, नायकम जी के घर में क्या बात है?
3: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
1: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
7: डॉक्टर साहब,
1: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो अल्लाह बख्श, उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
9: कौन है?
10: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
9: आप कौन है? अरे जहनम्मा तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
10: डॉक्टर साहब,
3: ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
9: क्या?
3: कुमार स्वामी के घर?
10: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है, और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
9: शहर ले जा सकती हैं?
1: आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकते हैं।
10: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
3: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
1: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
3: अगली बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
1: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है। चलिए आइए, जल्दी चलिए।
7: डॉक्टर साहब।
1: हाँ हाँ, बताइए बच्चा कहाँ है?
10: उस कमरे।
1: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
7: आइए डॉक्टर साहब, घर से
1: चलिए।
10: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
1: कंपाउंडर
11: जी, ये लीजिए दवा का बक्सा।
1: लो।
11: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है। और
1: कोई भी दवा बेकार है।
7: डॉक्टर साहब,
11: डॉक्टर साहब,
7: नहीं नहीं।
1: कंपाउंडर
11: जी,
1: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
11: जी,
1: जान निकले काफी देर हो चुकी है।
10: नहीं,
1: ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम
7: डॉक्टर साहब।
1: कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम लीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
7: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब। मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
11: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
1: कंपाउंडर चुप रहो, जो बदतमीजी है।
11: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
1: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सुबह, आप घर लगे और अपनी पत्नी को भी संभाले।
11: चलो
1: चलो, चलो।
10: राजा बेटा।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा और रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा,
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे टाल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: कैसे आ? अरे डियर भारती, तुम आ गई। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं। उमा
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ, अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
0: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
0: आइए, चलिए चलिए। भाटी, तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती हो,
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनतकश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है।
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की? उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
4: सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो?
4: बड़ा अन्याय हुआ है। आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम के किबार तोड़ डाले और भीतर
1: गजब हो गया।
0: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
3: अरे कोई है?

0: मत मत करना, तोड़ फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डराती है, हटा पीछे।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लखो, चलाओ पत्थर।
2: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
3: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
2: वो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम।
3: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
2: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इतना दिखाता हूँ।
3: आइए आइए आइए।
4: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
3: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए, आइए आइए आइए।
4: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
5: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
6: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
5: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
4: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
5: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
4: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
6: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
5: हाँ। डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
6: जरूर जरूर।
5: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
6: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
5: गुड बाय डॉक्टर।

0: जासूस रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये माँ।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती,
1: उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत की खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं, और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है, और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ,
1: वो तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा,
2: करेक्ट,
1: वैसे जैसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो,
1: एक व्यापक दृष्टिकोण
2: मिला। व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने,

0: इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले हैं। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे,
1: बिल्कुल
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का
1: बिल्कुल
0: और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं, अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसे कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा

0: तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ, वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे बॉस के जो मालिक थे, उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और
1: गजब।
0: जब इस तरह से देखा, तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है। उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये,
1: जी
0: हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी।
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है उस वक्त। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह
0: फिर
1: वाह
0: एक
1: वाह।
0: सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे, इस तरह से था। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर तारा, पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल। सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं और
0: हाँ
1: रातों
0: हाँ
1: रात बंदा स्टार बन
0: स्टार
1: जाता
0: बन
1: है
0: जाता है, करेक्ट
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और
0: राइट।
1: यहां अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या
0: क्या
1: धमाका हो
0: हुआ
1: चुका है।
0: है, करेक्ट।
1: वाह।
0: उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे, तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहां पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था, तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने
0: उस
1: फोन आ रहे हैं
0: इतने फोन आने लगे,
1: तुम्हारे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-6, 7-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था।
1: जी
0: पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था, और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है 1 हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
0: एक्चुअली।
1: करता
0: तो 1 हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था।
1: था।
0: मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है, कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है। पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे, और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा

0: करना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: अर्धसत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार, तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे, पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूं 91-92 की।
1: जब वो
0: सड़क
1: बहुत बड़े स्टार बन
0: बहुत
1: चुके
0: बड़े
1: थे।
0: स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए। पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत
1: तब
0: नहीं
1: उतनी
0: थी,
1: सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं थी।
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था, और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर
1: क्या
0: हुआ
1: बात
0: करते थे।
1: है, क्या
0: ये
1: बात है।
0: 2003-04 की बात कह
1: खुद
0: रही
1: ही
0: हूं
1: डायरेक्ट
0: मैं।
1: किया था या किसी
0: नहीं
1: और को
0: नहीं
1: दिया था?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले,
1: वाह,
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगांवकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं,
1: जी
0: उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल। ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक
0: हाँ
1: उनका बस
0: हाँ
1: था।
0: हाँ अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे, उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको।
0: बहुत मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी,
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी
1: समझदार
0: थी,
1: थी।
0: समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना

0: रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी, वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे, तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयाँ होती थी ना, वो मम्मी बनाती थी,
1: अच्छा तो उससे अंदर
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा।
0: ये फिल्में देखनी है, और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
1: ओके।
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो। तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमराज होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह वाह।
0: जहां पर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है, जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है।
1: वाह।
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं, उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना, तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अउसठ है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि

0: उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं। तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अवचट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: बाबा।
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं बिल्कुल बिल्कुल डे वन से। जैसे याद है, जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे। और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहते थे कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा सबको खिलाते थे।
1: हाँ।
0: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बई में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह। हाँ,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी, इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता
0: हमेशा
1: था।
0: कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है। इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निरू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था।
0: नाटक करके, जो
1: नाटक
0: जिसका
1: करके
0: जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात! एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
1: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था, तक
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
1: हाँ, डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए, और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स, डॉक्टर लागू, निरू फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल,
1: एग्जैक्टली, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
0: वाओ!
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने के हिसाब से।
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था। और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, वो बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
0: गजब।
1: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम, तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे, तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: क्या बात है।
1: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम, और ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
0: क्या बात है।
1: तो इस तरह से वो करते रहे हैं, और हमेशा मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसा मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए, इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
0: वाह वाह।
1: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी, और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी, जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए, इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
0: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: वो बताए।
1: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो, मम्मी का अभी नहीं मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
0: लो
1: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही पास ही में उसका घर है तो वो वहीं पर थी, तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था, इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था, तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है, बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे। वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली, तो पापा ने कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर, तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज़ कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे, तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था। वो किस्सा इस तरह से कुछ हुआ
0: और
1: था।
0: किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहां नजर आता है।
1: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे, इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
0: वो उनको
1: ये
0: पता
1: उन्हें
0: था।
1: बहुत करीब से देखी हुई थी,
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था अंदर से।
0: बिल्कुल। यहां एक गाना सुनते हैं,
1: श्योर।
0: दो आंखें बारह हाथ का,
1: हाँ
0: ए मालिक तेरे बंदे
1: ऑफ
0: हम।
1: कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। आरंभ होती है युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। इन्हीं पंक्तियों के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो साथी विकेश, आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा को। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विषय राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस यानी नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे पर। चर्चा में हमारा दूसरा विषय होगा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती। हमारे साप्ताहिक स्तंभ आइए जाने संविधान में हम चर्चा करेंगे विषय भारत संविधान का भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान पर। साथियों, कार्यक्रम के दौरान फिल्म संगीत का सिलसिला भी चलता रहेगा। हमारे डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया और फन फैक्ट में हम आपको रेडियो से जुड़ी रोचक जानकारियां भी बतलाएंगे। हमारे दैनिक स्तंभ समसामयिकी में आपको देश विदेश की घटनाओं से भी अवगत करवाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे चर्चा के विषय राष्ट्र बीमा जागरूकता दिवस की ओर, यानी नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे की ओर। साथियों, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बीमा की अहम भूमिका होती है। फिर भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीमा से वंचित है। दोस्तों, इस कमी को पहचानते हुए हर साल 28 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्र बीमा दिवस वित्त साक्षरता को बढ़ावा देने और लोगों को उचित बीमा कवरेज के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है। दोस्तों, बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन वित्त नियोजन के एक मूलभूत हिस्से के रूप में बीमा को समझने और अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं बीमा क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, बीमा एक वित्तीय व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अप्रत्याशित जोखिमों से वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करता है। इन जोखिमों में जान का नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति, दुर्घटनाएं या संपत्ति को नुकसान इत्यादि शामिल हो सकते हैं। साथियों, सरल शब्दों में कहें तो बीमा आपको वित्तीय जोखिम को बीमाकर्ता को हस्तांतरित करने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कठिन समय में आप और आपका परिवार दोनों के साथ एक वित्त उत्पाद नहीं हो या एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की नींव है। राष्ट्र बीमा जागरूकता दिवस मनाना आपको अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारी की ओर ले जाने का प्रयास है। इसी के साथ चर्चा के विषय राष्ट्र बीमा जागरूकता दिवस पर बस इतना ही। बात करेंगे चर्चा के दूसरे विषय को कार्यक्रम की आने वाली कड़ी में। साथियों, अब सुनते हैं फिल्म आराधना से किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

0: स्वागत है साथियों इस खूबसूरत गीत के बाद आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं हमारे चर्चा के दूसरे विषय की ओर। विषय है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती। श्री पी रंगा राव के पुत्र श्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। दोस्तों, श्री पीवी नरसिम्हा राव ने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय एवं नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील श्री राव राजनीति में आए एवं कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी संभाला। आपको बता दें साथियों, श्री राव आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 1964 तक कानून एवं सूचना मंत्री रहे। 1964 से 1967 तक कानून एवं विधि मंत्री रहे। श्री राव ने और भी कई पदों पर अपना कार्यभार संभाला। मुख्य रूप से विदेश मंत्री के रूप में भी श्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका, USSR, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम, तंजानिया एवं गुयाना जैसे देशों के साथ हुए विभिन्न संयुक्त आयोगों की भारत की ओर से अध्यक्षता भी की। इसी के साथ वे 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों, श्री पीवी राव नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। साथ ही उन्हें मरणोपरांत वर्ष 2024 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इसी के साथ चर्चा के विषय में बस इतना ही। बात करेंगे किसी खास विषय पर अगले युववाणी एपिसोड में। साथियों, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए युवाओं की वाणी युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वागत है साथियों आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं हमारे डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया की ओर। आज के डेली ट्रिविया में सवाल है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में बता देंगे। साथियों, वक्त हो चला है हमारे साप्ताहिक स्तंभ आइए जाने संविधान की ओर बढ़ने का। विषय है भारत संविधान का भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 यानी अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान की ओर बढ़ने का। साथियों, भारतीय संविधान में भाग 21 लागू होने के बाद शुरुआती बदलावों को प्रबंधित करने और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल किया गया था। आइए जान लेते हैं अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 369 यानी 369 संसद को राज्य सूची के समान राज्य सूची के कुछ विषयों जैसे व्यापार, वाणिज्य और आवश्यक वस्तुएं जैसे पर अस्थायी रूप से कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, यह राष्ट्रपति को विदर्भ, मराठावाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के विकास के लिए अलग बोर्ड स्थापित करने और राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वहीं अनुच्छेद 371 बी और 371 सी असम और मणिपुर के विशेष समितियों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 डी और 371 ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में समान अवसर और केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम के लिए उपयोग होता है, तो वहीं अनुच्छेद 371 जी और 371 एच मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 371 आई और 371 जे तो गोवा और कर्नाटक जैसे क्षेत्र के विकास के लिए विशेष व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 372 और अनुच्छेद 372 ए मौजूदा कानून है जो ब्रिटिशकालीन कानून को तब तक जारी रखने की अनुमति देता है जब तक उन्हें बदला या निरस्त ना किया जाए। अंत में अनुच्छेद 392 आता है जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संविधान के शुरुआती क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए अस्थायी शक्ति देता है। साथियों, इसी के साथ हमारे साप्ताहिक स्तंभ आइए जाने संविधान में बस इतना ही। बात करेंगे किसी खास विषय पर अगले सप्ताह के साप्ताहिक स्तंभ में। दोस्तों, वक्त हो चला है फिल्म संगीत की ओर बढ़ने का। आइए सुनते हैं फिल्म नदिया के पार से हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत संगीत।

पुरस्कार 2026 के लिए 7 स्कूलों के चयनित होने के साथ एक रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने परमाणु प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन की विश्व की पहली सुविधा का शुभारंभ किया। इसी के साथ दैनिक स्तंभ समसामयिकी में बस इतना ही। दोस्तों, वक्त हो चला है फिल्म संगीत की ओर बढ़ने का। आइए साथियों, सुनते हैं फिल्म सागर से SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये खूबसूरत संगीत।

साथियों, अब बढ़ते हैं डेली सेगमेंट फन फैक्ट की ओर। आज का फन फैक्ट है, क्या आप जानते हैं वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का पुराना नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस था। दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया में हमने आपसे सवाल पूछा था, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? सही जवाब है हेनरिक हर्टेज ने। इसी के साथ डेली सेगमेंट में बस इतना ही। तो साथियों, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, आप हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड है 812001। आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है phaiarbhagalpur@gmail.com। हमें आपके मेल और लेटर्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी अब कर रही है इशारा, अब इस शो को रैपअप करने का वक्त आ गया है। चलते चलते हमेशा की तरह फिर से भाई गुजारिश, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए युवाओं की वाणी युववाणी। मिलेंगे फिर इसी वक्त, इसी प्रोग्राम, इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त विकेश को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं फिल्म राज का गीत अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम शवण ने।

हाँ मैंने भी प्यार किया। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम शवण ने।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम शवण ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म राधा का संगम का गीत लता मंगेशकर और कीर्ति कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं हंसरा जयपुरी ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं स्थानीय सूचनाएं और आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6 बजे आप सुनेंगे ग्रामीण बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता मंजूषा कला। भेंटवार्ताकार होंगे मनोज कुमार और भेंटकर्ता होंगे कुमार गौरव। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार होंगी नूतन कुमारी। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी के कलाकार होंगे श्यामानंद झा। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल प्रातः 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। 6:05 पर चिंतन मनन और 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता बेहतर स्वास्थ्य के लिए सलाह, ये आप सुनेंगे। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर सुरेश प्रसाद। 6:40 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा और प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे हिंदी वार्ता के तहत वार्ता आधुनिक भारत में गांधी जी की प्रासंगिकता। वार्ताकार होंगे विजय कुमार धावक। प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। प्रातः 10 बजे कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से और 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे विश्वनाथ ठाकुर। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से और 11:30 फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता प्रस्तुत किया जाएगा। दिन के 12 बजे कार्यक्रम होगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक और 12:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे लोकरंग के कलाकार होंगे नवल किशोर नवीना। 1:30 पर ग्रामीण बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण होगा। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। अपराह्न 3 बजे बांग्ला गान प्रसारित किया जाएगा। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5:30 पर। संध्या 5:30 पर फिल्म संगीत और 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम और 6:35 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। संध्या 7:10 पर लोकगीत के कलाकार होंगे शिवशंकर कुशवाहा और साथी। 7:55 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी प्रसारित किया जाएगा, कलाकार होंगे ध्रुव कुमार। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा रजनीगंधा और रात्रि 8:15 पर खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, कलाकार होंगे लालमणि मिश्र। अभी आप सुन रहे थे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करते हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों का कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार,
1: साथ में अकलू के भी नमस्कार। लाखों भाई आप लोग नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अकलू भाई। और सब सुनाइए, क्या हाल समाचार है?
1: सब चकाचक छे हो, अपना बताओ।
0: सब कुशल मंगल है अकलू भाई, लेकिन एक तरफ कहीं न कहीं आज मानव जीवन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के बीच उलझकर रह गया है। क्योंकि तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से हम वास्तविक पल यानी कि वर्तमान जो हमारा है उसको जीने और अपने साथ जुड़ने का सुकून जो है कि भूलते जा रहे हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को शांत और तनाव मुक्त रखने के लिए अकलू भाई, वर्तमान क्षण में जीना सबसे महत्वपूर्ण है।
1: सबसे अगल बात कर लो हो लाखों भाई,
0: बिल्कुल
1: कि अपनो भूत केनो छले एकरा पर चिंता नहीं करो, अपनो भविष्य केनो होते एकरो चिंता नहीं करना छे, बसरते कि एकरा पर ध्यान देना छे, उल्टा ध्यान देना छे कि हमरो वर्तमान केनो छे, कि वर्तमान पर ही निर्भर करे छे कि हमरो भविष्य केनो होते। यही वास्ते अपनो वर्तमान में जियो, और खास करके जे एक नंबर बात कह लो तो है कि तनाव मुक्त जीवन जियो।
0: बिल्कुल
1: तनाव मुक्त, क्योंकि तनाव ही एहनो चीज छे जे कि हर बीमारी के जड़ हो रहलो छे।
0: बिल्कुल यही
1: वास्ते तनाव नहीं ला, जे काम छे वो तो होबे करते, चाहे थोड़ा देर से हुआ कि सवेर हुआ, लेकिन होना छे ओकरा। यह वास्ते तनाव नहीं ला, बस कोनो काम करे के दिशा में पहला कदम उठावा। कहे छे कि अगर पहला कदम उठेलो मनोस उठेलो कदम तो समझेला कि आधो काम तो एने हो जाए छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यह वास्ते तनाव नहीं ला, जीवन में आगे बढ़लो चली जाए।
0: अगलू भाई देखिए, जहां तक तकनीक ने जीवन को बेहद आरामदायक और तेज बना दिया है, वहीं इसमें हमें प्रकृति से भी दूर किया है। आज का मानव संतुलित दिनचर्या तनाव और शारीरिक निष्क्रियता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
1: आरो झुठहर मथा फादर बैठलो अर्थो
0: बिल्कुल
1: कि हो है इतना बीमारी छो है छो हो छो के ना तेकरो जड़ मत अपने छो।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति के जितना नजदीक जे वो उतना अच्छा रहता हूँ। आजकल है सही कह लो कि प्रकृति से आदमी दूर होलो चली जा रहलो छे, दिनचर्या वैनो बना लो छे जकरा से कि वो रोग युक्त हो रहलो छे, रोग मुक्त नहीं हो रहलो छे।
0: बिल्कुल, और आज के इस आधुनिक युग में ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। ऊर्जा बचत हमारा दायित्व होना चाहिए अकलू भाई।
1: हाँ,
0: बिजली पेट्रोल गैस कोयला इन सब के उपयोग से हमारी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आया है।
1: देखो है सुनो चीज जे छे ना कि उ तो एक अपने कम छे, कम मात्रा में छे।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम असनी खर्चा ज्यादा कर देवे, आमदनी अठन्नी होते आ खर्चा रुपया कर देवे, बचाबो कहाँ कहाँ से तो पैसा बचाओ पर वो नहीं बचते। तो यही वास्ते खपत कम करना छे, जहाँ जरूरत छे वहीं पर खपत करना छे, बचावे के आदत रखना छे, चाहे वो पैसा हुआ या कि ऊर्जा हुआ।
0: इसलिए अकलू भाई ऊर्जा बचत करना हम सभी का दायित्व बनता है।
1: एकदम एकदम,
0: और यह न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सहायक है अकलू भाई। और ऊर्जा बचत करने के कारण जो होते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में हम लोग सहयोग करें, जैसे कि हमारी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला पेट्रोल और प्राकृतिक गैस से पूरी होती है, और ये संसाधन सीमित है और इसके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण संकट उत्पन्न हो सकता है, और इसलिए ऊर्जा बचाने से हम इन संसाधनों का संरक्षण तो कर सकते हैं।
1: पर्यावरण संकट हो सकता है नहीं अकलू भाई, लाखों भाई
0: बिल्कुल
1: है अकलू भाई ने कह रहे छ कि हुआ पर नहीं है होवे करते।
0: बिल्कुल,
1: अकलू के भी ध्यान से बात सुनो लाखों भाई, समझ लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए पर्यावरण की भी हमें रक्षा करनी है। ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें उत्सर्जित होकर जाती हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है और जिनसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी बनते हैं, तो ऊर्जा बचाने से हम इन गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को शुद्ध भी रख सकते हैं।
1: हाँ।
0: और इससे क्या होता है कि हमें आर्थिक लाभ भी मिलता
1: आर्थिक लाभ भी होइछे।
0: बिल्कुल, ऊर्जा बचाने से घर और उद्योग का बिजली बिल कम होता है जिससे हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होता है।
1: अब देखो ऊर्जा बचावे के सबसे ज्यादा जरूरी और जे छे वो उपयोगी छे कि ऊर्जा के जे दूसरा विकल्प छे ओकरा उपयोग करना छे। जेना कि आव अखनी हमसनी ऊर्जा के बात कर लिए तो जीवाश्म ईंधन के बात कर लिए, कोयला के बात कर लिए, पेट्रोल की बात कर लिए, तो ओकरो जगह हमरा वैनो स्रोत के उपयोग करना छे जेकरा से कि जे छे वो हमरो जीवाश्म ईंधन थोड़ा सा बचलो रह। अब जेना कि हमसनी सौर ऊर्जा के उपयोग करो, पवन ऊर्जा के उपयोग करो, जल ऊर्जा के उपयोग करो, ठीक है। जैसे सरकार भी ध्यान दे रहा है कि सोलर प्लेट लगाए वास्ते जैसे सब्सिडी भी दे छे, पूरा छत पर लगाए दो और ज्यादा जगह भी नहीं छकल के और दिन रात वहाँ बिजली हमारा देता रह ले और हो बिजली के उपयोग हम असनी अलग अलग काम में कर लिए जे कि है जे बिजली अभी मिल रहा है, कोयला से बिजली बना रहा है, जल से बिजली बनाए छे ओकरा से हम उपयोग करे छे, हो सोलर ऊर्जा संजय हमरा मिलते है ऊर्जा ओकरा समय उपयोग कर पा रही छी।
0: बिल्कुल, और आजकल तो बाजार में ऊर्जा दक्ष उपकरण भी उपलब्ध हैं जो कि काफी ऊर्जा बचाने में हमारी मदद करते हैं।
1: हर चीज है मा, देखो अब बल्ब छ पहिना हो पिरका बल्ब आवे ले जे कि ज्यादा ऊर्जा खपत करे ले, अब उजरका बल्ब आवे ले कम ऊर्जा खपत करे छे, पहिना पंखा छला ओ ज्यादे शक्ति में खींचे हिले अब एहनो पंखा आवे ले बिजली कि कम शक्ति वहां उपयोग करे छे,
0: तो
1: हर चीज के जे छे अब विकल्प मौजूद छे जकरा से हम कम से कम बिजली खपत कर पा रहे छी, एकरो पर ध्यान देना चाहिए।
0: और अभी तो देखिए पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल की मारामारी चल रही है।
1: हाँ।
0: तो पेट्रोल डीजल के वाहन जो हम लोग पर्सनल यूज करते हैं,
1: पर्सनल मतलब कि अपने
0: व्यक्तिगत रूप से यूज करते हैं, यदि उनको भी हम कम करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग अत्यधिक करने लगे तो इनसे भी ऊर्जा की बचत होगी, बर्बादी कम होगी।
1: एक नंबर बात कर लो हो कि अगर सार्वजनिक वाहन के उपयोग करो तो वो ज्यादा जरूरी ज्यादा अच्छा होते क्या कि उतने पैसा में उतने ऊर्जा में ज्यादा ज्यादा आदमी एक जगह से दूसरे जगह पर जीते।
0: बिल्कुल,
1: आरो अगर व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करे छे तो ओकरा में जे छे एक आदमी या दू आदमी या हद से ज्यादा चार आदमी पांच आदमी छह आदमी जाओ पड़े छे ओकरा पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए ऊर्जा बचत केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है।
1: और देखो लाखो भाई कि एकरो आदत भी बच्चे से लगाना चाहिए, बच्चा का भी एकरो आदत लगाना चाहिए, जेना कि अब कहीं थोड़ा दूर जाना छे घर छे एंठनी और उस सौ डेगो जे छे बाजार छे सब्जी छे ओकरो बाजार छे तो वहाँ जाना छे तो ओकरा कहो कि या फिर अपने जा रहल छिए तो पैदले चली जाओ जकरा से कि अपना शारीरिक जे व्यायाम भी हो जते
0: और
1: जे छे पैसो नहीं लगते, जे पेट्रोल वाला गाड़ी से जेबो वो पेट्रोल ही बचते, या फिर साइकिल से चली जा अगर पैदल नहीं जा पा रहे छो तो साइकिल के उपयोग ज्यादा ज्यादा करो या फिर पैदल घूरो फिरो, एक रोज तो ऊर्जा की बचत होता है।
0: बिल्कुल, और अगर हम सभी मिलकर ऊर्जा बचत करेंगे अगलो भाई तो यह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को सुधारने में मदद करता है बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्थिर वातावरण सुनिश्चित करेगा। इसलिए ऊर्जा बचत हमारा दायित्व है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
1: हाँ, ऊर्जा बचत जिसे हम रसनी के दायित्व छके ऊर्जा बचाना और एक उपयोग अपनो स्तर से ही होना चाहिए है। और दूसरो बात है ने कि अपनो घरों रो ऊर्जा बचावो और सार्वजनिक जगह पकड़ गेलो तो है तो हमरो नहीं जगह ले यहाँ ऊर्जा जैसे हुवल दुख जितना खपत होते लगते जकरो पैसा लगते एनो नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनो है मानसिकता का बदलना छे कि अपनो घर रह कि दूसरा घर रह कि सरकारी जगह रह सब जगह ऊर्जा के बचत करे पर ध्यान देना छे। अब एकरा एक जैसे साधारण उदाहरण से जाना पा रहे लाखो भाई कि अपनो घर के जो नल चली रहो तुरंत बंद कर दीछो, ठीक ने, कुछ बॉल कहीं अगर एक ठो ज्यादा जले छे तो ओ बिजली बिल ज्यादा लगी से एकरा बंद कर तुरंत कह लगे बच्चा बुतरू सब कर। और वही चीज अगर कहीं सार्वजनिक जगह पर है जेना जा रहा है वहां नल खुल्लो है नहीं हो छे कि तनटा जैसे ओकरा बंद कर दिए, अगर वहां नल नहीं छे टोटी नहीं छे तो खोइया या लकड़िए जैसे पाइप के थोड़ा मुंह में डाली दो ताकि पानी जो ओकरा से लगातार रिसी रहलो छे लगातार आबि रहल छै, नाली में जा रहल छै, बर्बाद हो रहल छै, ओकरा पिए वाला उपयोग करे वाला कोई नहीं छै, तो वो पानी बचा छै कि नहीं। और कहीं भी जात अगर स्कूल कॉलेजों में छो कहीं देख लो कि है जैसे बॉल जली रहल छै या पंखा चली रहल छै तो और वहाँ कोई ओकरा उपयोग करे वाला नहीं छै तो स्विच जे छै ऑफ कर दो छै कि नहीं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे चीज आदत ध्यान में रखे पड़ते और आदत अपनो में अंदर में बनावे पड़ते ताकि है ऊर्जा के बचत तभी जिसे बनलो रहते।
0: बिल्कुल, और इस प्रकार की बचत करके हम अपने जीवन में ऊर्जा को बचा सकते हैं। कार्यक्रम में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे अकलू भाई। आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेशों को।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: संदेश का सुनला के बाद एक बार फैनों से सभ्य श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे हुनको पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में।
0: बिल्कुल,
1: आरु लाखो भाई देखो अपनो सनी के जे है प्रदेश के उ अंग प्रदेश के।
0: हाँ।
1: भागलपुर आरु आसपास के जिला जे छे उ अंग प्रदेश के नाम से विख्यात छे।
0: बिल्कुल,
1: आरु यहाँ पर डेघर डेघर पर जे छे अच्छा अच्छा जैसे चीज देखे ले मिले छे ना। जना देखो अभी आम के मौसम छौ तो जरदालू आम देखी ला।
0: बिल्कुल।
1: ना थोड़ा सा आरो आगे बढ़ो तो भागलपुर रेशमी वस्त्र देखे ले मिली।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तारो गढ़ टीला तो ढेरी है यहाँ पर।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि एक साथ साथ यहाँ के कला भी बहुत प्रसिद्ध है।
0: बिल्कुल,
1: और वही कला में एक कला छे मंजूषा कला।
0: हाँ।
1: जे की है अंग प्रदेश के अपनो पहचान का आरो विस्तार कर रहे छे देश दुनिया तक पहुंचा रहे छे।
0: बिल्कुल,
1: मंजूषा कला कीच के केना है एकरो उत्पत्ति होले, केना विकास करी रहलो छे आरो केना करी का ई जे छै अपनो पहचान बनाय रहलो छे एकरा पर आज खनी एकटा भेंट वार्ता हम सनी सुनै छिए। भेंट वार्ता कार्ज के मनोज कुमार पंडित आरो भेंट करता छ के कुमार गौरव
6: के जे पहचान होय छे हो ओकरो संस्कृति से कला से साहित्य से होय छे। उन्हें करी का बिहार के कुछ प्रमुख चित्रकला छे जेकरा में कि एक मंजूषा अपनो विशिष्ट स्थान रखे छे। मंजूषा कला के पहचान आज सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं छे बल्कि विश्व के मंच पर भी अपनो छाप छोड़ी रहलो छे। ये लोक कला के नयका पीढ़ी तक पहुँचाबे में एकरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाबे में जौन गुरु के अहम योगदान छे ओकरा में छे गुरु मनोज पंडित, जेकरा कि सरकार ने मंजूषा गुरु के उपाधि से सम्मानित करने छे। मंजूषा के रंगों में, रेखाओं में, कथा में दशकों से यानी कहो कि सदियों से जे छे कि लोग ओकरा दर्शाते आबि रहलो छे, लेकिन ओकरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाबे में जौन व्यक्ति के महती भूमिका छे, बड़ो योगदान छे हौच के मंजूषा गुरु मनोज पंडित। आज हम हुनके से बात करबे हुनको साधना के बारे में, कला के संघर्ष के बारे में, हुनको सपना के बारे में आरो हुनको जे कूची के कमाल पूरे अंग प्रदेश में बोले छे हौ ओकरा संबंध में आरो हुनी केवल यहाँ ने सड़क से निकली करी के संसद तक राष्ट्रपति भवन तक जे छे कि मंजूषा के धमक पहुँचाए देने छे। तो ये सबसे पहले अपने के स्वागत छे आदरणीय मनोज बाबू हमरा स्टूडियो में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी
6: जी, तो सबसे पहले एक प्रश्न जे छे, थोड़ा सा अपना बताइए मंजूषा चित्रकला की छिके, एक सामान्य परिचय की छिके, संक्षेप में हमरा श्रोता सनी का अपना एक जानकारी।
7: सबसे पहले कोई भी काम करे छे हमे तब मनसा देवी के स्तुति करे छे, तकरो हम स्तुति के साथ हम अपने के प्रश्न के जवाब देवे। अस्ति कस्य मुनीर माता भगनी वासुकीनाथ जरत कारु ऋषि पत्नी मनसा देवी नमस्तुते। मनसा देवी के नमन करला के बाद अपने के जे प्रश्न छे फरु दोहराइए तो हम अपने के जवाब दे छे।
6: मनसा से अपने जुड़लिए अभी आरु कहीं न कहीं जुड़लो छे मनसा से, बिहुला बिसहरी से, वे पूजा से अपनो मंजूषा, तो मंजूषा के एक सामान्य परिचय, मंजूषा केकरा कहलो जाए छे, कब से आरंभ भेले, एकरो की मतलब होय छे, एकरो संबंध में अपने एक जानकारी।
7: मंजूषा के अगर बात कर लो जाए तो मंजूषा एक सामान्य रूप से एक नौका छले जे कि सती बिहुला के आग्रह पर चंद्रधर सौदागर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से बनवैले छले, और ओकरा में रंग रोगन के काम उस समय के चर्चित कलाकार छले लहसन मालाकार जे अपनो लोक गाथा में वर्णित छे, उनका द्वारा ओकरा में चित्रित करलो गेलो छले, और ओकरा में बिहुला लहसन मालाकार से कहला छले कि ओकरा में ऐसनो रंग के प्रयोग करना छे जकरा में कि प्रेम दिखा, हमरो संघर्ष दिखा, दृढ़ संकल्पित दिखा, विजय के बोध हो, और हरियाली खुशहाली प्रेम और विकास के ओकरा में बोध हो, ऐसनो रंग ओकरा में लगाना छे, और रंग के साथ साथ ऐसनो चित्र बनाना छे जे कि मायके के परिवार, वहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी और ससुराल परिवार के भी सारा चित्रण करना छे, और जे कि जब दूर से वो जाए तो दूर से ही दिखाए कि कहाँ से ही आबि रहलो छे, तेकरो परिचय मिली जाए, तो वही छले मंजूषा बहुमंजिल एक नौका जेकरा से एक मंजूषा लोक चित्र से

0: सुनै छिए, तऽ एकरो रंग के बारे में अपने बताइए, एकरा में कोन कोन रंग होय छै, ककरो ककरो प्रयोग करलो जाय छै? कहने कि बहुत ही सुनै में मिले छै कि एकरा में 3 रंग होय छै, कोई कहलको 5 रंग होय छै, तऽ एकरो की कहानी छै, की बात छै?
1: एकरा में जे हमरो लोक गाथा छै, ओकरा में जैसे कि अपने के पहले बतेलिए कि बिहुला ऐसनो जब रहसन मालाकार के कहि रहलो छलै, तो ओकरा में 3 रंग के ही बोध होय छै, गुलाबी, हरा, पीला, जे प्रेम, समृद्धि और विकास के प्रतीक मानलो जाय छै, जे बिहुला के संघर्ष के ओकरा में गाथा छै, वो 3 रंगों से, और ये लोक गाथा में वर्णित छै। और जबकि बिहुला जब लहसन मालाकार से बनवाय रहलो छलै, तो ओकरा में भी बोललो छलै, अरे लिखबै रे मलिया मंजूषा हमार रे, अरे लिखबै रे मलिया मंजूषा हमार हे माया, अरे तब जे लिखबै रे मलिया सोनिका साहू न रे, अरे तब जे लिखबै रे मलिया चांदो सौदागर हे माया, अरे तब जे लिखबै रे मलिया बासु सौदागर रे, अरे लिखबै रे मलिया मोनिका साहू नहे माया, अर तब जे लिखबै रे मलिया बिहुला भागिन रे, अर मलिया यही मंजूसा चढ़िए रे मलिया जैबे कैला स इंद्रासन हे माया। तो एकरा में वर्णित है कि वो अपनो यहाँ के लोग के अपनो परिवार के चित्रण ओकरा में करवाए छलै, ओकरा में ई भी बोलल छलै, अरे लिखबै रे मलिया सगुनिया रंग मंजू सारे, अरे लिखबै रे मलिया मंजू सा हमार हे माया। तो ओकरा में सगुनिया रंग के भी प्रयोग छै, अरे 3 रंग के चर्चा भी छै, और ओकरा में यही 3 रंग के यूनेस्को में भी जे चित्र यहाँ से बिहार सरकार के तरफ से भेजलो गेलो छलै, ओकरा में 3 रंग के प्रयोग छलै, आरो यही जीआई जब होलै ओकरा में भी 3 रंग के प्रयोग छै। अरे सब जगह
0: जी,
1: हर स्कूल कॉलेज में भी अब तकरा में हम सनी रंग के अकॉर्डिंग के भी प्रारूप बनाए रहलो छिए, एक संगीति करी के जकरा में कि कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन और जे कलाकार लोग मिली करी के, कहने कि एकरा में अगर ज्यादा भ्रांति होते तो आवे वाला जे ओकरा बहुत दिक्कत होते।
0: जी जी,
1: अपने का सही प्रश्न छले, ये रंग के विभेद
0: मतलब तीन ही रंग छे
1: वही मूल मंजूषा मान लो जाए छे, जकरा में के गुलाबी, हरा और पीला
0: रंग। अपना मनोज बाबू अभी चर्चा कर लिए कि GI टैग मिले, यानी वैश्विक पहचान भी मंजूषा का मिली गेलो छे, और यूनेस्को में भी भेजलो गेलो छे, जकरो अपने चर्चा कर लिए, और अभी हाल ही में अपने राष्ट्रपति महोदय तक भी मंजूषा के पहुँचलिए, मंजूषा राष्ट्रपति भवन तक गेले, वहाँ चित्रित होले, एकरो की कहानी छे, एकरा संबंध में थोड़ा अपनो के बारे में बताइए कि अपने कै प्रकार से एकरो संघर्ष करी के मंजूषा के यहाँ तक पहुँचलिए, आरो वर्तमान स्थिति के बतेते हुए एकरो भविष्य की छे, यहू पतंटा चर्चा करी।
1: असल में अपने भी पहले बतेले छलिए कि कोई देश, समाज और देश के जे पृष्ठभूमि हो छे और वहाँ के सभ्यता, संस्कृति और कला हो छे, तभी वहाँ करो पहचान हो छे। तो हमरो यहाँ के कला संस्कृति बिहार के प्रमुख लोक गाथा बिहला बिसरी छे, और ओकरा पर लोक गाथा पर आधारित लोक कला मंजूषा कला छे, जे एशिया के पहला लोक कला मानलो जाए छे, जे संपूर्ण कथा चित्र छे, ओकरा में कथा दर्शेलो जाए छे। तो ई हमरो परिवार में, ननिहाल परिवार में, चंपानगर में 2-3 पीढ़ी से हम जानै छिए कि ओकरा में काम हो रहलो छलै, और वहीं से हमरो माता जी सिखलकै और सीखी करके मोदी नगर अयलै, और हम बचपन से अपनो माय के साथ पेंटिंग बनाए छलिए। जब चक्रवर्ती देवी जी से हमरो माता जी निर्मला देवी जी मिललकै, तो हुनका दोनों के कहना छलै कि तोरो जन्म होलो छो मंजूषा कला के लिए, और दोसरो चीज नहीं करना छ। लेकिन हमरा से सुनी के लगले कि भाई की छे,
0: हाँ, जे के कहीं कहीं खाली मंदिर के झाँप में खाली प्रयोग होय छे, और ओकरा जन्म होलो छे मंजूषा कला के, आखिर कहाँ तक पहुँचा पर संशय तो स्वाभाविक
1: बहुत
0: रहे वे समय में।
1: हाँ, उस समय बाल काल चले तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई चली रहलो छले, तो ओकरा बाद चक्रवर्ती देवी जी और हमरो माता जी दोनों हमरो गुरु छे, और दोनों ही पद प्रतस्तक छे, हमरा आगे बढ़ाए में ओकरो बहुत बड़ा योगदान छे, तो बोलके कि एकरा मंजूषा कला के लिए तो काम करें, तो मैं

0: 1992 से उनको आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर लिए। तो उसने बहुत संघर्ष ले बोल गए कोई कलाज के है कैसनो टेढ़ो मोड़ो गोड़ ऊपर हाथ करी के लगे छे कि कसरत करी रो छे फलेरिया वाला पैर छे है सांप बिच्छू वाला कोई कलाज के कि बुड़बक बनाए छे। तो माइक बोली कि तो कहाँ हमारा बोलने की करेला थोड़ा
1: ओकरा मतलब उपहास हर जगह उड़े लो
0: जाए मजाक करे छे हमें तो बड़का आर्टिस्ट बनती है। बोले तो बिसरी माइक आशीर्वाद से आगू बढ़े। हमारे माई बोल के तो हमू तोरा साथ जाए छो। जब साथ में जाए छलिए तो बहुत लोग गलत तरह के धारणा रखे छे बोले छे लगे छे सरकार कुछ पैसा दिले छे इसलिए माय बेटा मिली के घूमे छे मंजूषा के प्रचार प्रसार करे छे। चक्रवर्ती देवी जी से मिलला के बाद बोल के हूँ हैने के सब कुछ करे छे तो करला रख बिसरी माय तर मदद करतो। तो इसी तरह करते रहिए और गाँव गाँव में पकड़ो प्रचार प्रसार स्कूलों में जा कर के बच्चा लोग का सिखाना फिर प्रदर्शनी लगाना इस तरह से करता करता थोड़ा आगे बढ़लो के लिए। आगू बढ़ला के बाद धीरे धीरे एक प्रचार प्रसार मिलो के लिए। ऐसे तो 80 के दशक में ही चक्रवर्ती देवी
1: हाँ
0: और सरकार पहचानी लेलके और निर्मला देवी के फिर हमें जब आगे करते गलिए तब एक में सरकार के भी योगदान मिलले और हमें लगभग 2012-13 में हमारा राज्य पुरस्कार भी मिले उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा। फिर बिहार सरकार के द्वारा हमारा बिहार कला पुरस्कार सीता देवी ब्रिज लोक कला सम्मान मिले। फिर EZCC कोलकाता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूषा गुरु के सम्मान मिले। इसी तरह से यात्रा को बढ़ते बढ़ते सरकार के बहुत ध्यान होले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में हमारा बोलेलो जावे लगले। और फिर भागलपुर के गलियारा से गुजरता हुआ आज इस सब संघर्ष के साथ साथ प्रतिभवन तक के मंजूषा कला ने यात्रा तय कर लगे और आज इस स्थान तक मंजूषा कला पहुंची गले। तो बहुत तरह के बात छे बोले लेली
1: जी, लेकिन हाँ अपनो एक अथी छे कि समय के अपनो साथ बाध्यता भी छे। अच्छा ई बताइए अपने कि युवा के मंजूषा कला से जोड़े लेली सरकार के तरफों से की प्रयास हो रहा है और अभी कौन सरकारी संस्था छे जेकरा में कि जुड़ी के कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति जे छे कि आगू बढ़ा सके छे।
0: अभी सरकार बहुत ध्यान दे रहा छे अपनों कला संस्कृति के प्रति बिहार सरकार भारत सरकार। यहाँ पर ट्रेनिंग के प्रोग्राम छे ट्रेनिंग भी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा भी दिलो जाए छे कला संस्कृति विभाग के द्वारा दिलो जाए छे उद्योग विभाग के द्वारा दिलो जाए छे और ललित कला अकादमी के द्वारा भी चली रहलो छे पूर्व से सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चली रहलो छे और लोकल स्तर पर मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र दिशा ग्रामीण कला केंद्र ऐसा भी संस्था भी दे रहलो छे। अभी हाल ही में किलकारी द्वारा
1: एक बिहार सरकार के शैक्षणिक संस्था
0: किलकारी द्वारा भी चालू करलो गेलो छे। ये भी बहुत बड़ा काम छे और युवा एकरा में जुड़ी रहलो छे और जब से हम शुरू करला छलिए तब से घरेलू उपयोग में आवे वाला सामान और वस्त्र परिधान में एकरा शुरू कर लिए तो आज निफ्ट के बच्चा भी एकरा एकरा करे लगले। अब निफ्ट में NID ऐसनो संस्थान में भी मंजूषा कला के एक चैप्टर हो छे। तो युवा अगर एकरा से बढ़िया से करते काम तो एकरा में बहुत संभावना छे। अभी सरकार एकरा अलग अलग जगह पर स्टॉल भी दे रहलो छे व्यापार से जोड़ी भी दिला छे और एकरा स्वावलंबी बनाए के लिए एकरा डिजाइन के कमर्शलाइजेशन यानी कि व्यापारीकरण भी करलो गेलो छे। सरकार बहुत तरह के उपाय करी रहलो छे ओकरा में युवा कितना सफल होय छे वो ओकरा पर निर्भर करे छे। सरकार बहुत
1: मतलब जितना मेहनत करते युवा उतना सफल होते। और बस एक आखिरी सवाल अपने से छे कि बिहार के दो प्रमुख चित्रकला छे एकराम की एक मधुबनी पेंटिंग और एक मंजूषा पेंटिंग छे तो एकरा दोनों में की अंतर छे केना चिन्हबे कि है मंजूषा के और है मधुबनी के।
0: ये बहुत बढ़िया प्रश्न छे। मंजूषा कला में मात्र 3 रंग हो छे और मधुबनी पेंटिंग जो छे ओकरा में मल्टी कलर कई कलर हो छे। तो ओकरा में छे कि हरा कलर से मंजूषा बने छे मंजूषा में अगर रेखाचित्र अपने देखबे तो हरा से हो छे और मधुबनी में रेखाचित्र काला रंग से हो छे। और एकरा में मूलतः हमें बिहुला बिसरी के लोग गाथा बनाए छे और अभी वर्तमान समय में सरकारी योजना बना रहे छे मंजूषा में और यहाँ पर वासुपुज जी महाराज रामायण भी और चीज़ बनी रहे छे। और मधुबनी पेंटिंग में राम विवाह से लेकर के शैलेश भगत गोदना पेंटिंग से लेकर के और सब कला पर बनी रहे छे और अलग अलग कलर हो छे एकरा में

0: तीन रंग होचे
1: मतलब मूल रूप से रंग के अंतर ये दोनों पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग और
0: बनावटी के ये अंग क्षेत्र के छे तिसिल अंगिका भी पेंटिंग कहलाए छे वो मिथिला से छे
1: तो मिथिला पेंटिंग कहलाए
0: बिहार के दोनों प्रमुख कला छे और दोनों में यही अंतर छे
1: जी। अपने हमरा स्टूडियो में एलिए और एत बढ़िया बढ़िया जानकारी दिलिए निश्चित रूप से सरकार के भी योजना के संबंध में अपने जानकारी दिलिए एक बहुत बहुत अपने का धन्यवाद।
0: और आकाशवाणी के प्रसारण में मंजूषा के लिए हमरा बुलौले गले ओकरा लिए हमें आकाशवाणी परिवार के बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल अकलू भाई हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार पंडित जी को जिन्होंने मंजूषा कला पे इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी दी।
3: और देख लो ना बीचों में गीतों गाबिक सुनिल खो
2: बिल्कुल
3: कहना कि मंजूषा कला जी छे ओकरा में गीत के भी महत्ता छे
2: बिल्कुल।
3: और चूंकि खास करके है अंग प्रदेश से संबंधित छे यहाँ विषहरी पूजा हो छे भीला पूजा होइ छै
2: ना
3: तो ओकरा में मंजूषा कला के बहुत बड़ो योगदान छै और कने कहो जे छाप बने छै ओकरा में भी बनवावे छै ओकरा आरो देखलो यहो बतल के कि मंजूषा कला आरो मधुबनी कला में की अंतर छै केना हम दुनू में अंतर पता लगा पारे छै। खैर इतना अच्छा अच्छा वार्ता हम से लानवे करै छियै आरो लानते रहबै बस सब श्रोता भाई बहन बनलो रह आकाशवाणी भागलपुर के साथ ग्राम जगत खेती गृहस्थी के साथ।
2: और देखिए अकलो भाई जहाँ तक गांव घर की बात आती है तो गांव घर में खेती बाड़ी किसानी तो होती ही रहती है लेकिन गांव घर की महिलाएं भी जो है कि अपने घरों के विकास के लिए गांव के विकास के लिए नित्यदिन कार्यरत रहते हैं। और अपने घर की यदि बात की जाए अपने बच्चों का अपने परिवारजनों का भरण पोषण करने के लिए वो निश्चित रूप से अपने हाथों से बहुत प्रकार के व्यंजन खाने पकाने वाली चीज़ें बनाती रहती है और उसमें ईंधन का भी प्रयोग होता है। तो ईंधन जो है और वह आज समय ऐसा आ गया है कि उसका स्वरूप बदलता जा रहा है तो ईंधन का बदलता स्वरूप और ग्रामीण महिलाएं इस विषय पर एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से आइए वार्ताकार क्रांति सिंह से हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करें।
4: परंपरागत ईंधन एलपीजी और ग्रामीण महिलाएं ये तीनों पदावलियों भारत देश के संदर्भ में एक दूसरे से एकदम जुड़ी हैं या यूं कहें अंतर्गुमित हैं। हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश की बहुसंख्यक आबादी अभी भी गांवों में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कृषि मुख्य रूप से मौसम आधारित ही होती है। ऐसे में कृषक एवं कृषक मजदूरों को सालों भर रोजगार का अभाव रहता है अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था लोगों को खासकर महिलाओं के साल के अधिकांश महीनों में बेरोजगारी परंपरागत ईंधन के उपयोग का सबसे बड़ा कारण तत्व है। परंपरागत ईंधन में मुख्य रूप से पेड़ पौधे और अवशिष्ट कलियों पत्तों डालियों और कभी कभी पूरे पेड़ की ही उपयोग में लाया जाता है। साथ ही कृषि अवशिष्ट यथा भूसा पुआल गोबर से बना हुआ गोईठा आदि का प्रयोग परंपरागत ईंधन में किया जाता है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी ने हमें रसोई ईंधन हेतु नए विकल्प मुहैया कराए हैं जैसे उन्नत चूल्हों का उपयोग एलपीजी गैस विद्युत ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का उपयोग इन नवीन ऊर्जा विकल्पों ने रसोई ईंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों को मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि आखिर परंपरागत ईंधन रसोई हेतु क्यों उपयोगी नहीं रह गया। हाल के शोधों और यूएनओ के सर्वे से यह तथ्य सामने आए हैं कि परंपरागत ईंधन की वजह से पूरी बुनियाद में लगभग 1.5 मिलियन आबादी स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। 2005 के विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित ट्यूमिन से डेवलपमेंट सर्वे में दक्षिणी एशियाई देशों खासकर भारत में रसोई हेतु स्वास्थ्य स्थान ईंधन खास करके चूल्हों की स्थिति आदि पर चर्चा की गई है। अपने देश में भी राष्ट्रीय सैंपल सर्वे से परंपरागत ईंधन को नए विकल्प से स्थान

0: समानांतर करने की रेखांकित किया गया है। यह परिवर्तन बहुत ही धीमा है। 1993 में ग्रामीण क्षेत्र में नए रसोई ईंधन विकल्प को जहां 1.9% आबादी ने अपनाया था, वह 2004 से 5 में बढ़कर 8.6 हो गया है। परंपरागत ईंधन के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने में उपयोग ने मुख्य रूप से 3 प्रकार की समस्याएं पैदा की हैं। पहला तो सर्वविदित है कि परंपरागत ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। दमा, टीबी, कार्डियोवास्कुलर बीमारियां एक बड़ी ही जनसंख्या को अपने चंगुल में ले लेती है। इससे सबसे बड़े होने वाली बात ये है कि परंपरागत रसोई ईंधन उपयोग में हम लोग केवल स्वास्थ्य को एक बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका एक अन्य घातक प्रभाव भी है। ईंधन को जुटाने में महिलाओं और बच्चों का लगभग 1 से 5 घंटे तक की बर्बादी होती है, जिसे आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी प्रकार ईंधन की ऊर्जा का भी मात्र 15% ही उपयोग होता है। ईंधन के उपयोग हेतु चूल्हों की अवैज्ञानिक स्थिति के कारण परंपरागत ईंधन की एक इकाई ऊर्जा उपयोग हेतु लगभग 6 से 7 इकाई ऊर्जा की बर्बादी हो जाती है, जो कार्बन उत्सर्जन की एक बड़ी समस्या के रूप में अपने देश में आया है। इसके अतिरिक्त ईंधन उपार्जन में मानवीय घंटों को बर्बादी अक्षयित तथा वातावरण पर पड़ने वाले घातक प्रभावों का आकलन करने पर यह काफ़ी महंगा रसोई स्तोत्र के रूप में उभरा है। अपने देश में प्रतिवर्ष एकल ऊर्जा उपयोग में परंपरागत रसोई ईंधन का उपयोग मात्र 26% है, जबकि तेल से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग 27 है। इसी प्रकार हम भारतीय लगभग 1.35 मिलियन टन रसोई ईंधन के परंपरागत स्तोत्र का उपयोग करते हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई के सकल उपयोग करते हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई के सकल ऊर्जा उपयोग 1.23 मिलियन टन से काफ़ी ज़्यादा है। WHO ने अपने 2013 की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर भारत में 17 लाख से अधिक मृत्यु का कारण परंपरागत रसोई ईंधन का दुष्प्रभाव है। परंपरागत ईंधन का रसोई में उपयोग से सामाजिक विकास में बाधक के तौर पर भी देखा जाता है। 19वीं सदी के समान शास्त्री हर्बर्ट एसेंसर ने कहा है, समाज का विकास उसी अनुपात में होता है परंपरागत रसोई ईंधन मानवीय श्रम, जो स्वयं कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न होता है, उससे कार्बन ऊर्जा का परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत के विपरीत है। अतः परंपरागत रसोई ईंधन निम्न स्तर की ऊर्जा है और इस कारण भारतीय ग्रामीण समाज का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य रसोई ईंधन जुटाने के लिए महिलाओं की गुणात्मक समय की बर्बादी, पर्यावरण पर प्रभाव, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के साथ साथ सामाजिक विकास को बाधा पहुंचा रही है। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने LPG को 5 करोड़ परिवारों तक उज्ज्वला योजना के तहत पहुंचाने का क्रांतिकारी निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि उज्ज्वला योजना के लिए महिलाओं के नाम से LPG कनेक्शन मिलेगा। LPG का रसोई ईंधन का विकल्प से जुड़ पाएगी यह सुलभ और पर्यावरण है कि के लिए लाभकारी होगा। भारत सरकार की इस नवीन योजना से प्रस्ताव की बाध्यता, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार का LPG का कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना और LPG का रसोई ईंधन के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में लोकप्रिय करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण LPG योजना आदि भी संचालित हो रही है।
1: बिल्कुल, ईंधन के इस बदलते स्वरूप में हमारे घर की ग्रामीण महिलाएं जो हैं किस प्रकार से उनका उपयोग कर रही है
2: तो देखिन रहलो कि पारंपरिक रूप से की होइ छलै ईंधन की हो बगीचा में गेलै वहाँ से पत्ता चुनिक लाने ले लकड़ी चुनिक लाने ले या फिर गोबर जमा करके ओकरा से गोठा बनेल के तो हौसिन जला करी के जैसे खाना बना ले आब ओकरो की बदललै स्वरूप आब आबि गेलै उज्ज्वला योजना में आबि गेलै मतलब कि आब गैस LPG के उपयोग होबे लगलै न तो यही तो बदलता स्वरूप हो छे ईंधन के आरो जैसे जमाना भी बदली रहल छै तो बदलते जमाने के साथ जे छै महिला जे छै ओहो बदली रहल छै ओहो अपनो जे हाथ बड़ा अच्छा से बढ़ा रहल छै काम धाम में आरो अपनो अच्छाई में भी बढ़ा रहल छै कि वह भी आब रोजगार करे लगलो छै घर से निकली करी बाहर भी जा रहल छै आरो जे छै नर हुआ या नारी हुआ दोनों कंधा से कंधा मिला के काम करी के आगे बढ़ी रहल छै अपनो परिवार के आगे बढ़ा रहल छै आरो समाज और देश के भी आगे बढ़ा रहल छै आजकल कोनो भी क्षेत्र एकरा से अछूता नहीं छै इतना अच्छा वार्ता वास्तव वार्ताकार क्रांति सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद दै छै आरो चूंकि अभी जे छै मौसम छौ विवाह के एना में विवाह गीत सुने के मन तो होता होता
1: लखो भाई बिल्कुल
2: चलो सब मिलिक सुने निमन रंग विवाह गीत सुलेखा कुमारी जी से

0: बड़ा है निमन रंग विभागित सुनलिए सभी मिली करी का। और
1: बिल्कुल
0: देखो सब
1: बिल्कुल
0: कुछ तभी बढ़िया रहे छे जबकि मौसम बढ़िया रहता हो ना, कृषि के हाल
1: बिल्कुल
0: चाल भी बढ़िया रहता हो। तो
1: बिल्कुल
0: झट से जो जरा मौसम सूचना और कृषि समसामयिक सलाह भी अपना श्रोता भाई बहन का दे दीजिए।
1: बिल्कुल देखिए अगलो भाई, जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी जिनकी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार हो सकती है चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है।
0: तो थोड़ा संभली जा सब भी।
1: बिल्कुल अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।
0: अब कृषि संबंधित समसामयिक सुझाव भी दिलो जाए।
1: बिल्कुल
0: तो जना धान से संबंधित सुझाव छे कि वर्तमान में मानसून के कमजोर स्थिति का देखता हुआ किसान भाई का है सलाह दिलो जाए छे कि ऊंचा भूमि पर धान की खेती नहीं करो। जो किसान के पास सिंचाई के सुविधा उपलब्ध छे हुनी मध्यम अवधि वाला धान के किस्म के बिचड़ा गिराबो और बीज स्थली में नमी बनैलो रखे के वास्ते आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करना छे। विशेष करके ऊंचा भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल के खेती पर विचार करना करना जिसे वो अधिक उपयुक्त होते।
1: बिल्कुल और वहीं पर मक्का फसलों के लिए सलाह है कि खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें और अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे कि सुवान, देवकी, शक्तिमान 1 और 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 शामिल है, इनकी बुआई आप लोग कर सकते हैं। और वहीं पशुपालन भाइयों के लिए भी सलाह है कि गलघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें।
0: और देखो लखो भाई है छले मौसम सूचना और कृषि संबंधी समसामयिक सुझाव या सलाह जगह कहे छे। और अभी जे मौसम छे वो बाग लगावे वास्ते भी एकदम छे अच्छा।
1: बिल्कुल
0: ना क्योंकि बाग लगे हो तभी तो आम लीची हैसनी खेबो चाहे वो अमरुद के नन रहा। तो समय से अगर एकरा पर ध्यान दिलो जाए तो अच्छा सा बाग लगता है। अब है ओकरो उपयोग जे छे फल खाए में कर लो से फल उगावे करते खेबे।
1: ये किसान भाई बाग लगाना चाहते हैं और नए बाग लगाना चाहते हैं वो अभी का समय उत्तम माना जा रहा है।
0: लेकिन समस्या यहाँ आवे छे लाखो भाई कि बाग लगाबे तो लगेबे कैसा, ओकरा वास्ते की तैयारी करना छे, कौन प्रकार से हमरा बाग लगाना छे, बाग में कितना दूरी रखना छे, केना मिट्टी हमरा ओरा ठीक से रखबे छे कि नहीं, और केना बाड़ बनेबे आरो केना कौन गाछ लगेबे हैसनी समस्या आवे छे। तो समस्या के समाधान करे के वास्ते है तो हम असनी यहाँ छिए।
1: बिल्कुल
0: आरो हमरा सनी के बीच आज खनी छे डॉक्टर उमा शंकर जायसवाल जी, हुनी बताय रहल छे है पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से कि बाग लगाबे के तैयारी केना करना चाहिए। तो चलो सब मिलकर सुनै छे हुनको है बात का।
2: बाग लगाने की तैयारी। किसान भाइयों साधारणतया बाग लगाने की तैयारी का अभिप्राय ऐसे बागों से है जो बहुवर्षीय होते हैं। बागों की सफलता उससे प्राप्त होने वाली अच्छी उपज एवं आय पर निर्भर करती है और इसका सीधा संबंध बाग लगाने की उन्नत विधि एवं उसकी तैयारी से है। बाग लगाने की अच्छी विधि वह होती है जिसमें पौधों की रोपाई करने के पश्चात पौधों को विकसित करने, उसकी वनस्पति वृद्धि के लिए आवश्यक उचित जगह मिल जाए और बागवानी के सभी कृषि कार्य आसानी से की जा सके। अतः बाग लगाने की तैयारी के पूर्व हमें कुछ आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। किसान भाइयों बाग लगाने के लिए स्थान का चुनाव करना आवश्यक है। कारण ये जगह ऐसी जगह हो जहाँ सामान्यतः ऊंची हो, जल का निकास अच्छी तरह हो, मिट्टी बलुई दोमट अच्छी मानी जाती है। जहाँ परिस्थिति अनुकूल नहीं है वहाँ आवश्यक परिस्थिति बनानी पड़ती है। इसके दूसरे कारक जलवायु जो काफ़ी प्रभावी हैं। हमारे प्रदेश में ज़्यादातर आम, लीची, अमरूद, नींबू आदि के बाग लगाए जाते हैं, किंतु इसकी वृद्धि एवं उपज के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छे माने जाते हैं। इसमें 10 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान का उतार चढ़ाव पेड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। यदि अधिक हो जाए तो इसके विपरीत लक्षण एवं पौधों को क्षति पहुंच सकती है। वर्षा के अधिक होने से पेड़ों के फूलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, फफूंद एवं जीवाणुओं से फैलने वाले रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। अन्य प्राकृतिक आपदाएं और मौसम का बदलाव का भी ध्यान आवश्यक होता है। गर्म हवा से फूलों का झड़ना एवं परागण क्रिया प्रभावित होती है। दूसरी बात जो आपके लिए है कि बागों के लगाने के लिए वहाँ की मिट्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए। फल वृक्षों का प्रथम आहार वहाँ की मिट्टी ही है, अतः जिस तरह के फल वृक्षों का बाग लगाना है उसके अनुरूप उसकी मिट्टी है या नहीं अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। मिट्टी के गुणों जैसे अम्लीय एवं क्षारीय या मिट्टी की प्रोफाइल की जानकारी अवश्य करनी चाहिए, ताकि मिट्टी की निचली सतह कंकरीली नहीं हो। बलुई मिट्टी में पोषक तत्वों एवं सिंचाई की अधिक आवश्यकता होगी, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। बाग लगाने के पूर्व मिट्टी जांच करा लेनी चाहिए ताकि फलोत्पादन की लागत कम हो और आय अधिक मिले। किसान भाइयों, जहां पर बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं वहां पर सिंचाई जल एवं संसाधन की उपलब्धता आवश्यक रूप से हो। बागों के लिए कार्य करने वाले कृषि मजदूरों की आवश्यकता वहाँ पर उपलब्ध हो। यातायात की सुविधाएं तथा वहाँ आप बाग लगा रहे हैं और उसकी भी फल वृक्ष के बाग पहले से हों पर ध्यान देना आवश्यक है। अकेला किस्म का बाग वर्जित है। बाग लगाना एक कला है जहाँ आपकी सूझबूझ एवं बाग के लिए रेखांकन विधियों को अपनाना आवश्यक होगा। रेखांकन विधि के लिए किसान भाइयों, सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके लिए जितनी भी प्रकार हैं उनकी विधियों में सबसे पहले वर्गाकार विधि है। इसमें पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी समान होती है। दूसरी विधि है आयताकार विधि, जिसमें इस विधि में पौधों से पौधों की दूरी कतार की दूरी से कम होती है। त्रिभुजाकार विधि, इसमें वर्गाकार विधि की ही तरह पौधे लगाते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि कतार में दो पौधों के बीच में पौधा लगाते हैं जो एक त्रिभुज के आकार में दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है षटभुजाकार विधि, इसमें एक रेखांकन में 6 पौधे लगाते हैं और एक पौधा मध्य में लगाते हैं। जहां पर जमीन की कमी होती है वहां पर ये विधि अपनाना ज़्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि इसमें 15% तक अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके बाद एक और विधि है जिसको कि हम पंचकोण विधि कहते हैं। इसमें पौधे वर्गाकार विधि की ही तरह लगाए जाते हैं एवं एक पौधा वर्ग के मध्य में लगाया जाता है। यह पौधा अस्थायी रूप से लगाया जाता है जिसे बाद में निकाल दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कभी कभी जो पेड़ पौधे मर जाते हैं तो एक ही उम्र के पौधों को पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उस पौधे को स्थानांतरित करने के लिए ये लगाया जाता है। और एक पौधा यदि आपको एक उम्र का मिलता है तो आपका बाग एक जैसा अवस्थित हो जाता है। एक विधि और है कंटूर विधि। यह विधि हमारे यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती है। अब आप अपने बाग के लिए गड्ढे की खुदाई करना चाहेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई 1x1x1 मीटर मतलब 1 घन मीटर के आकार का करेंगे। खुदाई के समय 1 फीट तक के ऊपरी मिट्टी को अलग रखेंगे और भीतरी मिट्टी को अलग रखेंगे। ऊपरी मिट्टी को अलग रखने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि इसमें ही ज़्यादा उर्वरा शक्ति होती है, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं और गड्ढे की खुदाई अप्रैल मई के महीने में कुछ करके कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, ताकि उसमें जो भी कीट, उसके अंडे या लार्वा सभी नष्ट हो जाएं। उस धूप में और गड्ढों की भराई के समय ऊपरी मिट्टी के साथ 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, 1 किलो नीम की खली, 2 मिनट जमीन के लिए 5 किलो बालू, 1 किलो हड्डी का चूर्ण एवं कीटनाशक धूल 250 ग्राम एक साथ मिलाकर गड्ढों की भराई करनी चाहिए। और गड्ढों की भराई करने के समय ध्यान रहे कि वो आपके बंद मुट्ठी की तरह उभरी हुई हो, ताकि एक वर्षा होने पर उसकी मिट्टी की तरह अच्छी तरह से बैठ जाए, ताकि आप जब पौधे लगाएं तो उस पौधों को लगाने के बाद जड़ों को मिट्टी प्राप्त हो सके। इस तरह आप बगैर सिंचाई के पौधे नहीं लगाएंगे। ऐसी संभावनाएं भी हो सकती हैं कि गड्ढों की मिट्टी में से पौधों का संपर्क टूट जाए और पौधों का मरना निश्चित हो जाए। ऐसी कुछ आवश्यक पहलू हैं जहां आप अपनी सूझबूझ से बाग के लगाने की तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बाग के लगाने की तैयारी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप कर क्या करेंगे। पौधे लगाने का उचित समय जुलाई और अगस्त का महीना है, जबकि बरसात होती रहती है, उसमें पौधे आसानी से लग जाते हैं। पौधों के जड़ों का मिट्टी का पिंड कभी भी टूटना नहीं चाहिए। यदि वो पिंड टूटता है तो उस पौधे को लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखें कि जब भी आप पौधा किसी भी नर्सरी से लेके आएँ तो लाने के वक्त उसका मिट्टी उसके जड़ों के साथ जुड़ा रहे, इसका ध्यान देंगे। इसमें बागवान भाइयों के लिए एक आवश्यक बात है कि पौधा लगाने के 3 माह पश्चात से ही संतुलित पोषक तत्वों का उपनिवेशन करना अनिवार्य है। जब तक उसे प्रथम आहार अच्छी तरह से नहीं देंगे तो उसकी वनस्पतिक वृद्धि और उसका विकास रुक जाएगा। इसीलिए प्रथम वर्ष से ही आप उसमें कंपोस्ट 5 किलोग्राम, यूरिया 225 ग्राम, स्फुर जिसको आप फॉस्फोरस कहते हैं 500 ग्राम एवं पोटास 150 ग्राम प्रति पौधा देना आवश्यक है।
1: बिल्कुल, इस प्रकार की जानकारी से निश्चित रूप से हमारे किसान भाई लाभ उठाएंगे। और आज के कार्यक्रम का समय अब यहीं पे संपन्न होता है। सबको लाखों का नमस्कार।
0: सब भाई का अकलों के भी नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समुद्र से लेकर आकाश तक भारत सुरक्षित। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन के लिए जताया आभार। रिम्स की जमीन अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई, आरोपी बिल्डर गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 61 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचेगी दो बूंद जिंदगी की, लोगों से जन भागीदारी की अपील। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में सफलता, चतरा में 912 किलो डोडा बरामद, लोहरदगा से दो तस्कर गिरफ्तार, रांची में भी कार्रवाई। और बोकारो के गोमिया क्षेत्र में 30 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली स्थित आवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का श्रवण किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से समस्त देशवासियों से सीधा संवाद उनके जन जन के प्रति समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा के सदर पश्चिम मंडल टेकरा हातू ग्राम के बूथ संख्या 42 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक रूप से अनुश्रवण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। यह शुभारंभ एनीमिया के विरुद्ध देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी, और आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने रिम्स की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अपार्टमेंट निर्माण और बिक्री से जुड़े मामले में बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कंपनी पर रिम्स की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर फ्लैटों की बिक्री करने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए ACB की टीम छापेमारी कर रही है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सदर अस्पताल से आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र बनाए रखने के लिए जन सहभागिता जरूरी है।
3: पिछले 15 साल से भारत में पोलियो नहीं है, लेकिन अभी भी संभावना हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अभी भी बचा हुआ है पोलियो, और एक देश से दूसरे देश में भी जाने में देरी नहीं लगती है, तो इसलिए ये प्रिकॉशन सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। पोलियो हटने में कोई केवल स्वास्थ्यकर्मी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए सबसे जरूरी हुई जन भागीदारी।
0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत साहिबगंज, पाकुड़ समेत सभी जिलों में बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। चतरा जिले की लावालौंग पुलिस ने आज 912 किलोग्राम अवैध डोडा जब्त किया है। बरामद खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1,36,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार इस खेप को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही तस्कर मौके से फरार हो गए। इधर लोहरदगा जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस को दोहरी कामयाबी मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र के कटियातू से अवैध हथियार के साथ पुलिस ने एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया है। सदर DSP अमन कुमार पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार शूटर पिछले 10 जून को जमीनी विवाद में गोलीकांड में शामिल था। वहीं तैमारा घाटी से रामपुर आ रहे एक बाइक सवार तस्कर को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है।
4: बरामद अफीम के स्रोत के संबंध में जब उससे पूछताछ की गई, उसके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष उसके द्वारा अपने ही खेत में अफीम की अवैध खेती की गई थी। गत वर्ष से वो अपने पास अफीम संग्रहित करके रखा हुआ था। पूछताछ के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि पूर्व में भी वो अफीम की कई खेत की बिक्री कर चुका है। उसके द्वारा कुछ व्यक्तियों के भी नाम बतलाए गए जो कि खरीदार हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया गया तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु भी छापेमारी की जा रही है।
0: बोकारो के गोमिया क्षेत्र में हाथियों के बड़े झुंड ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। करीब 30 हाथियों का दल गांव में आसपास डेरा डाले हुए है। झुंड में 2 से 3 गर्भवती हथिनियां हैं शामिल हैं, जिनके कारण उनके लंबे समय तक इलाके में रुकने और अधिक आक्रामक होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है।
5: इस झुंड में 2 से 3 गर्भवती जो हथनियां हैं, इस वजह से ये झुंड आक्रामक होने की संभावना है। खास तौर पर इसी वजह से एहतियात रखने की कि झुंड के पास ना जाए, सेल सेल्फी लेने पास में ना जाए, और जो रात के समय में भी अपने घर से बाहर ना निकले, आप कोई वन क्षेत्र में कोई गाड़ी या वाहन लेकर लाइट लेकर वहां ना जाए।
0: मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर शेष अधिकांश जिलों में गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने संबंधित जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। SGFI ने उत्कृष्ट आयोजन और खिलाड़ियों के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। विभाग को पहला सम्मान सराहना पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया, वहीं दूसरे सम्मान के रूप में झारखंड को 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल के सर्वश्रेष्ठ आयोजक के लिए द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समुद्र से लेकर आकाश तक भारत सुरक्षित। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन के लिए जताया आभार। रिम्स की जमीन अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई, आरोपी बिल्डर गिरफ्तार, अन्य आरोपितों की तलाश जारी। झारखंड में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 61,00,000 से अधिक बच्चों तक पहुँचेगी 2 बूंद जिंदगी की, लोगों से जन भागीदारी की अपील। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में सफलता, चतरा में 912 किलो डोडा बरामद, लोहरदगा से 2 तस्कर गिरफ्तार, रांची में भी कार्रवाई। और बोकारो के गोमिया क्षेत्र में 30 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: पापा लाइए 3,000।
7: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी। अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
7: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो।
8: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीत, कलाकार हैं नूतन कुमारी। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं देवी गीत।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। कलाकार हैं नूतन कुमारी। इनके आवाज में अब सुनिए शिव भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थी नूतन कुमारी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Ball in the air, one bounce, two bounce, three bounce, but there's a man at deep mid, there's a woman at deep mid wicket, picks it up, throws it back, and batsman has ample time to cover.
1: अभी आपने आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल सुना। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: एक बेटा अदू बेटी के बाप अरुण बाबू
0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में आठवीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आज कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमान क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को तेजी मिल रही है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि भारतीयों के सामूहिक प्रयास से हम विकट स्थितियों में भी हमेशा विजयी रहेंगे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत पीड़ित परिवारों को लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि एक नए अवतार के रूप में ये भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए।
1: जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन की भावनाओं का आधार बन चुका है। नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नवीन ने कहा कि ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है।
2: पूरे देश अलग अलग स्थानों पर जो सकारात्मक प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं ना कहीं पूरे देश के और दुनिया के लोग जान पाते हैं कि भारत के लोग स्वतः कितने सारे प्रयास करते हैं, उन प्रयासों से समाज को कितना बड़ा प्रेरणा मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज जो उन्होंने एक शब्द दिया है कैच द रेन, मैं मानता हूं कि अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से जलवायु संरक्षण और जल संरक्षण को एक बहुत बड़ा एक मैसेज है।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी और प्रेरणादायी कार्यक्रम बन गया है।
3: प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी प्रेरणादायी कार्यक्रम बन चुका है। और आपने देखा होगा इसमें राजनीति की एक बात नहीं कर प्रेरणा की बात करते हैं। देश के विभिन्न भागों में जो स्वस्फूर्त प्रेरणादायी काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं।
0: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए थे। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। हमारे बांका संवाददाता ने बताया कि जिले में 1123 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। अररिया जिले के 19 केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया। अन्य जिलों में भी कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हो गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
6: आज पंचायत विकास दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो पूरी व्यवस्था खड़ा किया है कि साल में 12 बार बैठक होगी। साथियों, अभी तक टाइम फिक्स नहीं होता था, कभी 2 अक्टूबर कभी 26 जनवरी, ये सब हम लोग समय तय करते थे। लेकिन अब पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रत्येक जो अंतिम इतवार होगा उस दिन पंचायत विकास दिवस मनाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिला रोजगार योजना के तहत शेष बचे लाभार्थियों को भी राशि दी जाएगी।
6: इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की चिंता किया है। महिला रोजगार से जोड़कर लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया। अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगले महीने जब कोई हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा, तो हम लोगों ने तय किया है जो महिलाएं छूट गई हैं उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपराध को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी रहेगा।
6: बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया गया। एक रिपोर्ट।
7: महिला हितैषी ग्राम पंचायत विषय को लेकर आज प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाएगा। मधुबनी जिले के महिनातपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री लेशी सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें हमारी लोकतंत्र की आधारशिला है, इनका विकास अत्यंत आवश्यक है।
8: पूरे राज्य में पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि हमारा जो पंचायत है सबसे नीचे की इकाई और सबसे मजबूत इकाई सशक्त हो, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित हो और हमारा पंचायत इकाई मजबूत हो।
7: दरभंगा के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में आयोजित विकास शिविर का उद्घाटन पथ निर्माण सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन एवं पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। मधेपुरा के मानिकपुर पंचायत में जिले की प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शेखपुरा जिले की सभी 49 पंचायतों में पंचायत विकास शिविर आयोजित किया गया। शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और गया समेत विभिन्न जिलों के पंचायतों में विकास दिवस पर शिविर लगाकर पंचायतों में छूटे हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई और पंचायतों के समग्र विकास का संकल्प लिया गया। समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
9: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बक्सर, भोजपुर, भभुआ, पटना, जहानाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पठन पाठन 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इधर भोजपुर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन 30 जून तक स्थगित कर दिया है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। सभी स्कूलों में 4 जुलाई तक वर्ग 8 तक पठन पाठन का कार्य पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही होगा। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊआ कटहरी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। संबंध में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से कई हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण तथा सामग्री बरामद की है। 28 जून से 2 जुलाई तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत आज विभिन्न जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बांका, सुपौल, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में पोलियो मुक्त अभियान के तहत बच्चों को जीवन रक्षक दवा की 2 बूंद पिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज दिघल बैंक प्रखंड के कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिलाधिकारी ने डोडरा पुल का अप्रोच जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। सुपौल जिले के बीरपुर में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी ने जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। बांका जिला कार्यान्वयन समिति की आज बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व और भूमि सुधार मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
11: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
12: जिले में मुहर्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी, जबकि जुलूस मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। राज्य में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जी रामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुंगेर के जिला परिषद सभागार में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय और भागलपुर के 41 प्रतिभागी शामिल हुए। विपाट पटना के मास्टर ट्रेनरों के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और ऑनलाइन मॉड्यूल की जानकारी दी। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर ने कहा कि प्रशिक्षण किसी भी नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन की आधारशिला है और यह अधिनियम ग्रामीण विकास एवं मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विश्ववर्ती श्रावणी मेला और कांवर यात्रा की तैयारियां जिले में तेज हो गई है। मुंगेर से गुजरने वाले 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर पेयजल, स्वच्छता और स्नान संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 295 चापाकलों की मरम्मत शुरू कर दी है। इसके अलावा 30 नए चापाकल लगाए जाएंगे। 150 अस्थायी तथा 20 अस्थायी शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार ने गैर मजरूआ जमीनों की अवैध खरीद बिक्री रोकने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जिले के 18,741 प्लॉटों को रोक की सूची में शामिल किया गया है। जिला अवर निबंधक अश्वनी कुमार ने बताया कि सूची में शामिल किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी और निबंधन से पहले सभी भूखंडों का विभागीय रिकॉर्ड मिलान किया जाएगा। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अब भी बड़ी संख्या में लाभुकों की KYC और आधार सीडिंग लंबित है। जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में 1,49,301 पेंशनधारियों में से 27,167 ने KYC नहीं कराया है, जबकि 1,707 लाभुकों का आधार बैंक के खाते से लिंक नहीं है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक राजीव रंजन ने सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिए हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन इस बार जमालपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। IRCTC के अनुसार 14 जुलाई से शुरू होने वाली 13 दिनों की इस यात्रा में श्रद्धालु तिरुपति बालाजी, रामेश्वर कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मीनाक्षी मंदिर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। राज्य सरकार की पहल पर जिले में LPG आधारित आधुनिक शब्दागृह स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नगर निगम को इसके लिए लगभग 1 एकड़ भूमि की उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने 45 डिसमिल जमीन उपलब्ध करा चुका है, जबकि शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। परियोजना पूरी होने पर लोगों को आधुनिक और सुविधाजनक अंतिम संस्कार व्यवस्था का लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह 3 जुलाई को किला परिसर स्थित परीक्षा गृह में आयोजित किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति सह राज्यपाल सैयद अता हसनैन करेंगे। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान द्वारा हवेली खड़गपुर प्रखंड के बिलिया गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जैविक खाद के उपयोग तथा नियमित मिट्टी जाँच के महत्व की जानकारी दी। बख्तियारपुर में आयोजित बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तारापुर के सिनितिक केसरी ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। DAV बोकारो के छात्र सिनितिक की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एडीआर भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया।
11: अभी आप सुन रहे थे मुंगेर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
13: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। कलाकार हैं श्यामानंद झा। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं दरिया साहब की भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार थे श्यामानंद झा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा।

दोस्तों, रात के इस मखमली चादर पर जब चांद अपनी चांदनी बिखेरता है और हवाओं में रजनीगंधा की भीनी भीनी महक घुलने लगती है, तब मन अनायास ही मधुर गीतों की दुनिया में खो जाना चाहता है। संगीत भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, जो शब्दों से आगे बढ़कर दिल की धड़कनों से बातें करता है, बीती यादों को महका देता है और अनकहे एहसासों को सुरों का नाम देता है। रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनू का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ मुलाकातें मुकद्दर की लिखावट होती हैं, न उन्हें बुलाया जाता है न ही उन्हें भुलाया जाता है। ये बस जिंदगी के किसी मोड़ पर खामोशी से दस्तक देती हैं और फिर पूरी उम्र यादों की तरह दिल में महकती रहती हैं। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत दास्तानें अक्सर अधूरी रहती हैं, मगर उनकी खुशबू कभी अधूरी नहीं होती। वो रजनीगंधा की तरह, उसकी महक की तरह हर सांस में घुल जाती है, हर खामोशी में गुनगुनाती रहती है। कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो मंजिल तक नहीं पहुंचते, मगर उम्र भर दिल की राहों पर चलते रहते हैं।

दोस्तों, दिल की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। यहाँ कुछ ख्वाहिशें लफ्जों में नहीं ढलती, बस धड़कनों की खामोशी में पलती रहती हैं। सच्चा इश्क अक्सर मांगता बहुत कम है, बस एक एहसास, एक अपनापन और उसे एक शख्स का साथ, जिसके नाम से ही दिल की धड़कनें मुस्कुरा उठें। जब मोहब्बत दुआ बन जाए तो उसकी सबसे बड़ी तमन्ना बस यही होती है कि जिस दिल को चाहा है वो हमेशा सलामत रहे और उसकी दुनिया हमेशा आबाद रहे। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का एक बेहद खूबसूरत और एहसास से लबरेज नगमा, जो प्रेम की मासूम आरजू को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। तमन्नाओं का भी अपना अजब दस्तूर होता है, तमन्नाओं का भी अपना एक अजब सा दस्तूर होता है। जो दिल में बस जाए वही सबसे ज्यादा दूर होता है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से जिए जाते हैं। कभी किसी की एक मुस्कान तो कभी उसकी नर्म सी यादें दिल की धड़कनों पर ऐसे दस्तक देती हैं कि हर सांस में बस उसी का नाम सुनाई देता है। जब मोहब्बत अपनी रूहानी खुशबू बिखेरती है तो हवाएं भी किसी के स्पर्श का भ्रम देने लगती हैं, और फिर लगता है जैसे हर धड़कन कोई अनकहा सा नगमा गुनगुना रही हो। तेरे एहसास की खुशबू से महक उठी है जिंदगी ये मेरी, तेरे एहसास की खुशबू से महक उठी है ये जिंदगी मेरी, हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन में तेरी ही बंदगी। आई इन्हीं नाजुक एहसासों, मोहब्बत की मीठी सरगोशियों और दिल की धड़कनों के साथ सुनते हैं ये एक बेहद खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, आधी रात का अपना एक अलग ही जादू होता है। जब चांद अपनी चांदनी को खामोशी से धरती पर बिखेरता है, हवाएं धीमे धीमे कोई अनसुनी धुन गुनगुनाती हैं और रजनीगंधा की भीनी भीनी महक फिजाओं में खुल जाती है, तब जाने क्यों दिल अपने ही एहसासों से बातें करने लगता है। कभी यूं लगता है जैसे रात की खामोशी भी कोई गजल पढ़ रही हो और हर धड़कन

जिसमें आधी रात की मासूम शरारत, चांदनी की नज़ाकत और दिल की अनकही धड़कनों का खूबसूरत संगम है। इस गीत को सिर्फ सुनिए नहीं दोस्तों, अपने पलकों पर उतरती चांदनी की तरह महसूस कीजिए, जहां हर सुर एक दुआ बनकर रूह को छू जाता है। रात ने चांद से धीरे से कहा, आज कुछ तो बात है, यूं ही नहीं महक रही हवाएं, किसी दिल में मोहब्बत की बरसात है।

दोस्तों, रात जब अपनी मखमली चादर ओढ़ लेती है, चांद खामोशी से आसमान की दहलीज पर उतर आता है और उसकी चांदनी धरती को अपनी आगोश में समेट लेती है। तब ऐसा लगता है मानो कुदरत खुद मोहब्बत का कोई अनकहा सा फसाना लिख रही हो। इश्क का सबसे पाक एहसास शायद यही है दोस्तों, जहां दो नाम अलग अलग होते हैं मगर रूह की रोशनी एक हो जाती है। एक चांद बनकर राह दिखाता है तो दूसरी चांदनी बनकर हर अंधेरे को उजाला कर देता है। आइए अब इस हसीन रात में सुरों की चांदनी बिखेरते हैं और सुनते हैं फिल्म रेशमा और शीरा का ये कालजयी नगमा, जिसे लता जी ने अपनी रूहानी आवाज से अमर कर दिया। चांदनी चांदनी से कहा, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। चांदनी चांदनी से कहा, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। चांदनी मुस्कुरा कर बोली, तेरी रोशनी में ही मेरा नूर है।

दोस्तों, कुछ लम्हे वक्त की किताब में नहीं, दिल की तहों में लिखे जाते हैं। एक नज़र, एक मुस्कुराहट और एक मुलाकात, कभी कभी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। चांदनी रातों का भी अपना एक अलग ही जादू होता है। वे उन अनकहों जज्बातों को आवाज़ दे देती हैं जिन्हें दिन की रोशनी अक्सर छिपा ले जाती है। चांद की नर्म किरणें जब दिल पर उतरती हैं तो हर धड़कन किसी मीठे नगमे की तरह गुनगुनाने लगती है। एक नजर ने जो कहानी दिल में लिख दी थी कभी, एक नजर ने जो कहानी दिल में लिख दी थी कभी, चांदनी हर रात आकर आज भी उसे पढ़ती है।

कहते हैं दोस्तों कि मोहब्बत जब मुकम्मल नहीं होती तो वो दुआ बनकर नहीं, एक लंबा इंतज़ार बनकर उम्र भर साथ चलती है। कुछ नाम होठों से उतर जाते हैं मगर दिल की धड़कनों से कभी नहीं उतरते। कुछ लोग बिछड़ तो जाते हैं लेकिन उनकी यादें हर आती जाती हवा से यही सवाल करती है, आखिर वो किस ओर चले गए, किस मोड़ ने उन्हें हमसे जुदा कर दिया। जब तन्हाई रात का आंचल ओढ़ ले, चांद भी खामोश हो जाए और हवाएं अपने किसी अपने की खुशबू लेकर गुजरें, तब दिल की हर धड़कन बस एक ही पुकार बन जाती है, काश ये हवा उन्हें मेरी भी खबर पहुंचा दे। आइए अब खामोशी की इसी तहरीर को सुरों की जुबान देते हैं, एक ऐसा नगमा जिसमें जुदाई की कसक है, इंतजार की बेचैनी है और मोहब्बत की वो सच्चाई जो बिछड़ कर भी कभी खत्म नहीं होती।

दोस्तों, रातें कभी सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये अपने आंचल में अनगिनत यादों के सितारे भी समेटे होती हैं। कोई रात पहले मोहब्बत की खुशबू बनकर महकती है, तो कोई रात बिछड़ने की खामोशी बनकर आंखों में ठहर जाती है। वक्त बदलता रहता है, कैलेंडर के पन्ने पलटते रहते हैं, मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। उनमें किसी की हंसी की गूंज, किसी की बातों की गर्माहट, तो किसी के इंतज़ार की नमी हमेशा जिंदा रहती है। आइए इस खूबसूरत नगमे के साथ यादों के उस वादे में चलते हैं, जहां चांदनी भी गुनगुनाती है, हवाएं भी शेर कहती हैं, और हर धड़कन किसी अनकही मोहब्बत का अफसाना सुनाती है।

तो श्रोताओं, चांदनी से भीगी इस महकती रात में सुरों की जो महफिल हमने साथ साथ सजाई थी, अब उसे यही विराम देने की घड़ी आ पहुंची है। उम्मीद है कि आज के इस मधुर गीतों ने

आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा, किसी पुराने याद को मुस्कुरा दिया होगा और आपके मन में रजनीगंधा की भीनी भीनी खुशबू की तरह अपनी एक मीठी सी छाप छोड़ गए होंगे। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, अपने दिल में संगीत के लिए एक छोटी सी जगह हमेशा बचा कर रखिएगा, क्योंकि संगीत वो दुआ है जो बिना कुछ कहे भी रूह को सुकून दे जाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
2: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर

0: 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके

0: Once again, Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अख्वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत, मालियात, खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में यूपीआई का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशेल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हर्मिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तई अपने अहद का एदा किया। اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہورائزن سے نوازا گیا۔ سیشلز کے صدر نے وزیر اعظم مودی کو یہ پروقار اعزاز دیا۔ وزیر اعظم کو یہ اعزاز ان کی ماحولیات سازگار

0: वज़ीर आज़म मोदी ने सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और सेशेल्स दोनों एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तरक्की मजीद शमूलियाती हो और जहां बैनुल अक्वामी इदारे हम असर हकायक की अक्कासी करते हों। उन्होंने आलम जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के तई अपने अहद का इरादा किया।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी रियालिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत का विजन महासागर के नजरिए में पिन्हा है, जो इस बात को तस्लीम करता है कि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे पर मुनहसिर है।
1: वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है।
0: वजीर आजम ने कहा कि कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम होने की हैसियत से सबके सामने खड़ा होना एक खसूसी एजाज है। इससे कबल दिन में सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजने के लिए उन्होंने सेशेल्स के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी मशरकी अफ्रीका के इस जजीरा नुमा मुल्क के 3 रोजा दौरे पर गुज़िश्ता रोज विक्टोरिया पहुंचे हैं। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह समेत बहुत से मरकजी वज़रा ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के दरमियान बातचीत में बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों का अहाता किया गया। विक्टोरिया में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने सेहत, तालीम, सलाहियत साजी, डिजिटल तब्दीली, पायदार तरक्की, समाजी बुनियादी ढांचे, काबिले तजदीद तवानाई, समंदरी तहफ्फुज और दिफा के शोबों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए, जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में आज मुल्क की तेल कंपनी आरामको का एक हेलीकॉप्टर आबनाए हुरमुज के मगरिब में खलीज के मशरकी साहिल पर रास तनूरा में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। आरामको ने जुमा

0: को खलीज में अपने रास्तनूरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी थी। वाजे रहे कि मगरबी एशिया तनाजे की वजह से यहां खाम तेल की लोडिंग तकरीबन 4 माह से बंद थी। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत के मुताबिक तमाम महलूकीन सऊदी अरब के शहरी थे। वजारत ने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फ्रांस के शुमाली खित्ते में आज एक स्काई ड्राइविंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार 11 अफराद हलाक हो गए। मर्थे मोसिल के नुमाइंदे यवेस सेगुई ने बताया कि तैयारा नैन्सी शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीमें जाए वकूआ पर पहुंच गईं, जबकि हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के सिलसिले में ऐनी शाहिदीन के बयानात जमा करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप को शदीद तरीन गर्मी का सामना है। फ्रांस, जर्मनी और चेक जमहूरिया समेत कई मुल्कों में हफ्ते के आखिर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। फ्रांस के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से बुध से अब तक तकरीबन 1000 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 85% अमवात बुजुर्ग अफराद की दर्ज की गई हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। पेरिस में एफिल टावर और लुरे म्यूजियम भी शदीद गर्मी के बायस जल्द ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जमहूरिया चेक और जर्मनी में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई मूसलाधार बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 रोज के दौरान शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, क्राइकल, तेलंगाना और विदर्भ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में जुज़वी तौर पर मौसम के अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। आसाम के धीमाजी में जिले और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में कई दिन तक शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत का रंग देने में गांवों के मरकजी किरदार को उजागर किया है। ICC खवातीन T20 आलमी कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 171 रन का निशाना दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने हदफ का पीछा करते हुए 7 ओवर्स में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में जारी 2 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रन का निशाना दिया है। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली। अहमदाबाद में आज ABC मर्दों के वॉलीबॉल कप में भारत ने प्लेऑफ में तीसरे मकाम के लिए खेलते हुए बहरेन को 3-1 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 40 बरस बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार तमगा हासिल किया और अपनी सरजमीन पर एक यादगार मुहिम का अख्तिताम किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप में अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। और मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये दिल की धड़कनों का तरन्नुम है, रूह की खामोशियों का अफसाना है, जहां अल्फाज साथ छोड़ देते हैं वहां सुर अपनी उंगली थाम लेते हैं। कभी हंसी बनकर होठों पर उतरते हैं तो कभी आंसू बनकर पलकों से बह जाते हैं। हर राग में एक दुआ छिपी होती है, हर धुन में किसी का इंतजार और हर गीत में किसी अधूरी मोहब्बत की महक। संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, संगीत महसूस होता है, और जो महसूस हो जाए वही तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत नगमा बन जाता है। मोहब्बत जब दिल की चौखट पर दस्तक देती है तो हर धड़कन किसी एक नाम का तराना बन जाती है, फिर हवाओं में भी उसी की खुशबू महसूस होती है, चांदनी भी उसी का पैगाम लेकर उतरती है, और हर दुआ बस उसी तक पहुंचने की राह तलाशती है। इश्क की दुनिया में सनम सिर्फ एक संबोधन नहीं दोस्तों, बल्कि उस शख्स का नाम होता है जिसके बिना हर खुशी अधूरी और हर महफिल बेरंग लगती है। इन्हें मासूम जज्बातों, मीठी चाहतों और दिल की अनकही धड़कनों को सुरों में पिरोता हुआ पेश है एक बेहद प्यारा सा नगमा। सुनिए और इस गीत के हर लफ्ज में छिपी मोहब्बत को अपने दिल की धड़कनों के साथ महसूस कीजिए।

दोस्तों, कभी दो अनजान राहें यूं ही मिल जाती हैं और फिर सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, दिलों का हो जाता है। दो लोग, दो सपने, दो धड़कने और एक छोटा सा आशियाना बनने की तमन्ना। जिंदगी की सबसे खूबसूरत इमारत ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि भरोसे, अपनापन और प्रेम के उन नन्हे नन्हे तिनकों से बनती है, जिन्हें दो दिल मिलकर उम्र भर सहेजते हैं। आज का ये गीत भी उसी एहसास को सुरों में पिरोता है, जहां साथ निभाने का वादा है, सपनों की एक नीड़ भी है और मोहब्बत की मीठी सी खुशबू भी है। आइए सुनते हैं दिल को सुकून देने वाला ये सदाबहार नगमा। दुआ है कि इस गीत की हर पंक्ति आपके दिल में अपने किसी खास की याद बनकर उतर जाए और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाए।

दोस्तों, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रंग शायद वही होता है जहां चाहत पर कोई पहरा नहीं होता, जहां दिल अपने महबूब को बांधना नहीं चाहता बल्कि उसकी हर खुशी के लिए दुआ करता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जताता बल्कि आज़ादी में भी अपनापन तलाश लेता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। उनकी यादें हर मौसम में महकती हैं, उनका जिक्र हर धड़कन में एक मीठी सी कसक बनकर बस जाता है। इन्हीं अनकहे जज्बातों बिछड़ने की खामोश पीड़ा और बेपनाह मोहब्बत को सुरों में ढालता हुआ पेश है एक दिल को छू जाने वाला नगमा। सुनिए और महसूस कीजिए कि कभी कभी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी साथ रहना नहीं बल्कि दूर रहकर भी किसी की सलामती की दुआ करनी होती है।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये सफ़र हम आगे भी जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए। बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास है जो अपनी हदों से गुजर जाता है तो दुआ भी बन जाता है और इम्तिहान भी। मोहब्बत की राह में कभी मुस्कुराहटों के फूल बिखरे होते हैं तो कभी इंतज़ार और तड़प के कांटे, लेकिन सच्चा दिल हर दर्द को भी अपने महबूब की निशानी समझकर मुस्कुरा देता है। जब चाहत रूह तक उतर जाए तब हर धड़कन एक ही नाम पुकारती है और डर बस इतना रह जाता है कि कहीं मोहब्बत को बार बार आजमाने की कोशिश किसी मासूम दिल को टूटने पर मजबूर न कर दे। इन्हें गहरे जज्बातों, बेपनाह मोहब्बत और दिल की सच्ची पुकार को सुरों में ढालता हुआ पेश है एक सदाबहार नगमा। आइए इस गीत को अपने दिल की धड़कनों के साथ महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ नगमे सिर्फ सुनाई नहीं देते, ये बरसों तलक रूह में गूंजते रहते हैं।

दोस्तों, इंतज़ार मोहब्बत का वो मौसम है जो आंखों में उम्मीद के दीप जलाए रखता है। हर आहट पर दिल धड़क उठता है, हर दस्तक पर लगता है शायद आज वही आ गया होगा जिसका नाम हर दुआ में शामिल है। लेकिन कभी कभी शाम ढल जाती है, चांद निकल आता है, रात भी गुजर जाती है और इंतज़ार करने वाली आँखें उसी राह पर टिकी रह जाती है। तब दिल की खामोशी भी एक दर्द भरा गीत बन जाती है। इन्हीं भीगी हुई यादों, अधूरी आस और तड़पते हुए इंतज़ार को शुरू में पिरोता हुआ ये अगला नगमा हर उस दिल की कहानी कहता है जिसने किसी अपने की राह में अनगिनत मौसम गुजार दिए हों। हो सकता है इस गीत की कोई पंक्ति आपको भी किसी अपने की याद दिला दे, क्योंकि कुछ इंतज़ार कभी पुराने नहीं होते, वे हर धड़कन के साथ फिर से जी उठते हैं।

दोस्तों, संगीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं बल्कि इंसानी जज्बातों का सबसे सच्चा आईना है। आज के संगीत में सफर में हर गीत ने जिंदगी के किसी न किसी रंग को छुआ। कहीं पहली मोहब्बत की मासूमियत थी, कहीं बिछड़ने की टीस, कहीं इंतजार की बेचैनी, तो कहीं समर्पण की गहराई। ओ मेरे सनम में चाहत की मिठास थी, दो पंछी दो तिनके में सपनों का आशियाना था। तुम जाओ कहीं तुमको इख्तियार में प्रेम की निस्वार्थ ऊंचाई थी। मैं तेरे इश्क में मना जाऊं कहीं में दिल की बेपनाह तड़प थी। और मेरा परदेसी ना आया में इंतजार की खामोश दास्तान। यही तो फिल्मी संगीत का जादू है कि ये हमारे अपने एहसासों को सुरों का लिबास पहनाकर हमारे सामने रख देता है। इसलिए बरसों बाद भी ये गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल की गहराइयों में उतरकर यादों की महफिल सजा देते हैं। उम्मीद है आज का ये फिल्म संगीत आपके दिल को भी छू गया होगा। अगली मुलाकात तक अपने होठों पर मुस्कान, दिल में प्यार और जिंदगी में संगीत की खुशबू बनाए रखिए।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। Pandit Sudhir Pandey is recognized as one of India's foremost tabla virtuoso. He received his rigorous training from his revered father and guru, late Pandit Arjun Pandey, and his dada guru, Pandit Bhagwat Singh. Inheriting the rich traditions of the Banaras, Delhi and Ajrada gharanas. Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs and music lovers alike.
0: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया। पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
1: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. He is presenting tabla recital in taal, teen taal.

धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे धातुन्न कतेट्टे ध

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, we present लय विन्यासम on मृदंगम।

0: बाय श्री एन एस कल्याण रामन।
1: पारंपरिक संगीत परिवार में जन्मे श्री एन एस कल्याण रामन आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध मृदंग वादक है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही मृदंग वादन पर गहरी रुचि दिखाई और अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री एम के आर प्रसाद से प्राप्त किया। बाद में उन्होंने विख्यात मृदंग विद्वान श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
0: Sri N.S. Kalyanaraman is a renowned mridangam artist from Andhra Pradesh belonging to a traditional musical family. He showed keen interest in mridangam from a very young age and received his initial training under Sri M.K.R. Prasad. He later underwent advanced training under the renowned gurus Sri Dandamodi Ramohan Rao and Sri K. Veerabhadra Rao.
1: Sri N.S. Kalyanaraman ne Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankar Narayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Brothers और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
0: श्री एन एस कल्याण रामन हैज एकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। He has performed in prestigious sabhas across the country, including Madras Music Academy.
1: Sri N.S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani Kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhaag liya. Aap Kanchi Kamakoti Peetham ka aasthan vidwan raha aur आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
0: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetham and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
1: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याणरामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
0: Tonight, Sri N.S. Kalyanaraman begins his laya vinyasam on mridangam with Mishra Jati Jampetalam.

0: एनएस कल्याणरामन अपना मृदंगम लयविन्यासम का समापन संकीर्ण चापुताल से कर रहा है।
1: श्री एनएस कल्याणरामन कंक्लूड्स हिज लयविन्यासम ऑन मृदंगम विद संकीर्ण चापुतालम।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership